मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। इस वक्त सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री

0: मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में देशभक्ति गीत के साथ।

तन में राम, तेरे मन में राम, मुख में राम, वचन में राम, जब भूले तब राम ही राम, बस राम ही राम।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: परिवर्तन जीवन का वास्तविक नियम है। संसार में प्रत्येक वस्तु को प्रतिक्षण परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह सार्वभौमिक तथ्य है। हम इस बात से परिचित हैं कि परिवर्तन आवश्यक है और प्रत्येक क्षण घटित होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य केवल उन्हीं चीजों में परिवर्तन चाहता है जो उसकी अभिलाषाओं इच्छाओं को पूरा कर सके, बल्कि अपनी धारणाओं विचारों और विश्वासों में परिवर्तन लाना नहीं चाहते। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं तथा उनमें प्राप्तियां भौतिक सुख को बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्राप्ति होने के बावजूद भी मानव मन में भय चिंता उत्तेजना व्यग्रता बढ़ती जा रही है। आज मानव के मन में भय चिंता आक्रोश तनाव अनेकानेक विकृतियों ने घेरा हुआ है। आत्मविश्वास का स्थान आत्मनिर्बलता ने ले लिया। परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन में नकारात्मकता आती जा रही है। वर्तमान जीवन मूल्यहीन हो गया है। जितना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का मूल्य विकसित करना चाहता है उतना ही उसका स्तर निम्न होता जा रहा है। हर व्यक्ति में गुणों के साथ साथ दोष भी पाए जाते हैं। जब वह अच्छा व नेक इंसान बनकर अपने दोषों को खत्म करना चाहता है तो उसकी अपनी ही कमजोरियां बाधा बनकर सामने आती हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य न होने पर वह उत्तेजित हो उठता है और परिणाम यह निकलता है। मानसिक अशांति, संबंधों में कड़वाहट और व्यर्थ विचारों की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे ये विचार विकृति का रूप धारण कर और अपने मनुष्य जीवन में दुखी होता रहता है। यह सोचा जा सकता है कि हम जैसे भी चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, समय अनुसार परिस्थितियां बदल ही जाएंगी। लेकिन यदि एक बार व्यक्ति के मन में विकृतियां आ जाती हैं और आदत गहरी हो जाती है तो मानसिक स्थिति और ही खराब हो जाती है और यह एक प्रकार का कुचक्र है। इसलिए आवेश क्रोध उत्तेजना ईर्ष्या आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जब पानी उबलने के लिए रखते हैं और उसका तापमान उबलने वाले बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो वह वाष्प बन जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। दुनिया में भी सभी क्रांतिकारी परिवर्तन तब ही घटित होते हैं जब लोगों की धैर्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, मानसिक रीति से पूरी तरह उत्तेजित हो चुके होते हैं और इसका परिणाम भयावह होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विपरीत परिस्थिति में भी धैर्यता और शांति को कायम रखे। शांति और धैर्यता को धारण करने के लिए वाणी के संयम का अभ्यास जरूरी है। कहा भी गया है, आवत माली एक है उलटत होए अनेक, कहा कबीरा नहीं उलटिए वही एक की एक।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख और स्वर था ब्रह्म कुमारी मंजूषा का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। गायक है सुरेश वाडकर, संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

पक्षीराज गरुड़ काकभुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काकभुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, न ही उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरतवाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। गायक थे सुरेश वाडकर, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
1: राम तिल जुगे करुण मरहान भुई नहाले खाली रतो ठान मन ने कमाएसो। राम तिल जो फसल ने कैक प्रकार जो रोग बले धरे से जे चोले उपजन ने कमी होन जाए से। तो ए रोग मन जो नाम आए पहिल गोटोक हो से सरकोस पोरा पाना जो दाग। राम तिल कमा तो सब फाय ठान मन ने ये रोग फसल जो पैदावार के कम करुन दे से। गरम आरु ओल रतो मौसम ने उपजन जो पैदावार ने आगर नुकसान होए से। ये रोग जो लक्षण असन दखा पड़े से जसन की पाना उपरे नानी नानी गोल भूरा रंग जो दाग धब्बा महा दखा पड़े से। बूटा जो पाना मन सुकून भाती घसरते जाए से। पाछे खंद आरु बीज ने बले दाग होते जाए से। असनीच गोटोक दूसर रोग होए से राम तिल ने धरे से आरु एचो नावाय अल्टरनेरिया पाना चो दाग भीती रोग। ये रोग बूटा के धरलो ने पाना उपरे भूरा रंग चो धब्बा दाग असन दखा पड़े से। ये दाग मन छल्ला असन दखा देसोत। मंजी ने हरा रंग रह से आरु चारो बाटे भूरा रंग चो दखा पड़े से। असन दाग मन गार महा गोल नहले कसनी आकार ने बोले रहुक सके। एके थे बातु काजे बीज उपचार करुन भाती बीज के बुन तो राय। फफून नासी ओखत मेंकोजेब 0.2% नहले कार्बनडाजीम 0.1% चो छिड़काव कर तो राय। बीज ने होतो बीती रोग। तो राम तिल फसल ने ये बीजोड़ रोग कवक मन ले गाजा फूट तो बेरा नहले गाजा फूट तो पाछे होए से। आरु ये रोग नानी बूटा ने भूई भीतर रतो बेरा नहले भूई ले ऊपर निकरतो बेरा होए से। एके थे बातो काजे स्वस्थ आरु सफा बीज के बुन तो राय। असन बेड़ा ले बीज आंतो राय जोन थाने कोनी रोगी बीमारी नी हो। फसल के कार्टून पाछे अच्छा ले सुखाउन भाती बीज के संगातो राय। आरु बुनतोर पहिल बीज मन के 0.3 ग्राम थायरम नहले केप्टान नहले 0.2% कार्बनडाजीम नावचो ओखतले बीज उपचार करतो रहे। असनी गोटोक रोग होए से खंद आरु जड़ मन चो गलतो रोग। ये रोग बले गोटोक प्रकार चो कवक ले होए से। बीज आरु बीज लगे चो माटी ले ये रोग होए से। ये रोग बूटा के धरलो ने बूटा मन चो खंद आरु जड़ मन गलुन जाए से आरु बूटा मन मरुन जासो जे चोले उपजन खूबे कम होन जाए से। एके थे बातो काजे स्वस्थ बीज के बुनतो रहे आरु बीज के बीज उपचार करुन भाती बेड़ा ने बुनतो रहे। बेड़ा ने पानी चो निकासी बले अच्छा रहो ये गोट के बले ध्यान संगातो रहे। असनी गोटक रोग होए से चूर्णेन आसिता रोग बोल सोते के आरु एचो नाव पाउडरी मिल्ड्यू बले होए से। ये रोग इस फिरोथीका नाव चो कवक ले होए से। बूटा मन चो सबले ऊपर चो भाग ने ये रोग दखा पड़े से। ये रोग चो चिन्ह गुंड असन रूप ने दखा पड़े से। पहिल पाना मन उपरे नानी नानी गोल सफेद कपसा महा दाग असन दखा पड़े से। पाछे सब फाय दाग पाना के घेरुन दे से। आरु रोगी पाना पाछे हरदया रंग चो होन घसरते जाए से। रोगी बूटा चो बीज बले नानी नानी सकड़लो महा रहे से आरु बूटा झट के पाकुन भाती नसुन जाए से। ये रोग के थे बातो काजे रोग चो चीना बाना दखा पड़तो खन उनके घुरतो बीती गोटोक उखत हो से वेटेबल सरफल बोल सोते के ये चो 0.2% चो घोल चो छिड़काव करुन देतो रहे। असनी गोटक रोग होए से जीवाणु पाना चो धब्बा रोग। ये रोग जेंथोमोनास कस्पेट्रिस म्यूजोरी नाव चो कवक ले होए से। ये चो चीना बले पाना ने दाग असन दखा पड़े से आरु धीरे धीरे ये दाग धब्बा बाढ़ते बाढ़ते आपस ने मिसुन भाती सब फाय पाना मन के डसातो असन करुन दे से। आगर बाढ़लो ने ये रोग खंद के बले नुकसान करे से आरु फसल चो उपजन घटुन जाए से। ये रोग के थे बातों काजे स्वस्थ बीज के बुनतो रहे आरु रोग जो चीना दखा पड़ते खन उन कापर ऑक्सी क्लोराइड नाव चो उखत चो 0.2% घोल चो छिड़काव करतो रहे। असने राम तिल ने धरतो बीती गोटोक रोग होए से अमर बेल नहले के कसकुटा रोग बले बलुआत। ये चो प्रभाव ले बूटा मन ने बाढ़ती नहीं होए आरु बूटा मन हरदया होन भाती नसुन जाए सोत। कै खार तो पूरा बूटा मन नसुन जाए सोत। राम तिल चो बीज मन संगे कसकुटा चो बीज बले मिसू रह से आरु ये बीज संगे दूसर बेड़ा ने बले जाऊ सके से। ये रोग के थे बातो काजे बुनतोर पहिल नानी काना बीती छल्ली ने चोलुन देतो रहे। रोगी बूटा मन के चिताउन भाती निस्काउन भाती पकाउन देतो रहे। बुनतोर पहिल माटी ने फ्लूक्लोरालिन नाव चो दवाई के 1 किलोग्राम 2.5 एकड़ हिसाब ले लगाउन भाती भूई ने मिसाउन देतो रहे। नहले गाजा पगा तो पहिल माटी ने प्रोनामाइड नाव चो उखत चो 2 किलोग्राम के 2.5 एकड़ हिसाब ले मिसाउन देतो रहे। तो कास्तकार भाई बहन मन इतरहान दखारखा करून भाती तुमन मन रामतिलचो लाभकारी फसलले खुबे उपजन आरु खुबे लाभ धरुक सकासे।
0: आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौकोट। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली में लीजिए सुने लोहजारीन माता पाड़। वादक कलाकार हैं भागीरथी और साथी।

0: हुलहुली में आप सुन रहे थे लोहजारिन मातापाड़। वादक कलाकार थे भागीरथी और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। छत्तीसगढ़ साहित्य पत्रिका मोर भूया सुनेगा सुबह 8:30 पर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर प्रस्तुत करेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर आकर्षण। कथालोक में सुनेगा कहानी सत्य छाया। कहानीकार होंगी जया द्विवेदी और होगी मधुरिमा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT होगा सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म दिल ही तो है के गीत। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में आप सुनेंगे लंबोदर बघेल और साथियों के गाय भात्री लोकगीत सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 एक ही कलाकार में हमारे आज के कलाकार होंगे निर्माता निर्देशक मणिरत्नम। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा बारात पाड़। वादक कलाकार होंगे किशन और साथी। वक्त होगा दिन के 11:30 का। दोपहर 12:00 सुनिएगा रूपक बस्तर का रंगकर्म। लेखक वाचक और प्रस्तुतकर्ता होंगे के परेश। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर होगा कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम कला और कलाकार। विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 100.1 MHz पर जारी रहेंगे दोपहर 3:00 से। हमारी सांध्यकालीन सभा में सुनिएगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर सुनेगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। दुर्वी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। कलाकार होंगे पार्वती और साथी। बसर के स्वर आप सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:21 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी शिक्षकों के लिए। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00। इसमें सुनिएगा वार्ता संगीत शिक्षा का महत्व। वार्ताकार होंगी वीणा श्रीवास्तव। पिलामन काजे गोट में आज आप सुनेंगे पिलावन काजेगोट में आज आप सुनेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। प्रस्तुति होगी तनुश्री मोहंती की। पुरानी फिल्मों से रात 9:15 पर। रात 9:30 पर सुनेगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आज आप सुनेंगे तेल पाड़ और बारात पाड़। वादक कलाकार होंगे सुकरू बघेल और साथी। वक्त होगा रात 10:00 का। श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः सीईपीए इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अवोचत यत् अयम् सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयल अवोचत यत् अयम् सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षा मन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और

नमस्कार श्रोताओं, आज के नमस्कार जगदलपुर के साथ मैं तृप्ति परिडा। उम्मीद है आपका दिन उत्साह, सकारात्मकता और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आपके लिए है कथालोक और मधुरिमा।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। एक सूचना सुनिए, फोन इन किसान वाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक किया जाता है, जिसमें आप फोन करके बात कर सकते हैं। श्रोताओ, जीवन केवल जिम्मेदारियों और कामकाज का नाम नहीं, बल्कि अपनी रुचियों को जीने का अवसर भी है। आइए बात करते हैं हॉबी यानी शौक की, जो हमारे व्यक्तित्व में नए रंग भरते हैं और जीवन को आनंदमय बनाते हैं। जी हाँ, जीवन की भागदौड़ के बीच कोई शौक सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व को संवारने का माध्यम भी बनता है। पढ़ना, संगीत सुनना, चित्र बनाना या बागवानी जैसी रुचियां मन को नई ऊर्जा से भर देती हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। हॉबी आजकल किसी साक्षात्कार और प्रतियोगिता का भी अभिन्न अंग है। साक्षात्कारकर्ता ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं, जो उम्मीदवार के बारे में एक विचार देते हैं और उसके व्यक्तित्व का आकलन भी होता है। लेकिन हॉबी किसी साक्षात्कार के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्व रखता है। रचनात्मक गतिविधियां तनाव को कम कर अपनी क्षमताओं को पहचानने और निखारने का अवसर प्रदान करती हैं और जीवन की चुनौतियों में भी हमें शांत और सशक्त रखते हैं। एक अच्छी हॉबी जीवन भर का दोस्त होता है, क्योंकि एक समय के बाद हम सेवानिवृत्त होते हैं। उस वक्त हमारे पास वक्त ही वक्त होता है, जिसे काटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा शौक यदि जिंदा है तो वो समय भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये भी देखा गया है कि यही रुचियां कई बार करियर या पहचान का आधार भी बन जाती है। निष्कर्ष यही निकलता है कि हॉबी या रुचियां बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल व्यक्तित्व का विकास करते हैं, बल्कि उसे आकार भी देते हैं और हमारे विचारों को धार भी। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी रुचि, अपने सपनों के लिए कुछ पल अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि ये शौक, ये सपने जीवन को अधिक रंगीन और अर्थपूर्ण बनाते हैं।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कथालोक में कहानी सत्य छाया। कहानी सुना रही हैं जया द्विवेदी।
3: आज करीब 10 साल बाद बस्तर आना हुआ। बस्तर जाना है के नाम से ही मन रोमांचित हो जाता है कि दोनों तरफ साल वन से ढका हुआ गुफा जैसा रास्ता, केशकाल की घाटी, घाटी का वह जीता जागता माँ का मंदिर। ऐसा लगता है मानो माँ ने पूरे पहाड़ को अपनी बाहों में लपेट कर रखा हो और शायद इसीलिए कभी इस घाटी पर कोई लांछन नहीं आ पाया। और फिर पहुंच गई मैं अपने गांव नुमा खपरे के उस घर में, जहां का सुख सौंदर्य, हम सब भाई बहनों का खिलखिलाना, एक दूसरे के साथ लड़ाई, फिर प्यार, शायद कई स्वर्ग नछावर हो जाए। आंगन में इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे कि सूरज की किरणें मुझसे मिलने मुझे दूसरी जगह बुलाती थी कि आओ नानीता, हमसे भी तो खेलो। चारों तरफ मोगरा, गुलाब, शेवंती, कौन सा फूल पापा ने नहीं लगाए थे। सब याद करते करते जैसे ही गेट तक पहुंची, पहले की तरह सुबह सुबह सभी लोग एक जगह खड़े पेपर पकड़े गप्पे मार रहे थे। मुझे देखते ही खरे अंकल वर्मा भैया एक साथ पूछ बैठे, अरे वाह बिटिया, कब आना हुआ? इस बार तो बड़े दिनों बाद आना हुआ। अकेले आई हो या दामाद बाबू भी आए हैं? मैंने कहा हाँ हाँ वे भी आए हैं। इतने में ही पांडे भैया भाभी आए और भाभी लिपट कर मुझसे रोने लगी, मीनू छाया के जाने के बाद अब आ रही हूँ, आशीष भी अमेरिका जा रहा है और हम लोगों ने उसकी शादी भी कर दी है। घर आना आशु की बहू को देखने। एक बार छाया की याद का दुख और दूसरी तरफ आशीष की बहू की खुशी समा ही नहीं रही थी। भैया भाभी के साथ गुजरा, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। छोटा सा आशु करीब दूसरी में था, दुबला पतला सांवला सूखा सूखा चेहरा, हम लोग उसे टंटिया टंटिया चढ़ाते थे, पर वह तब भी शांत, कभी कोई प्रतिरोध नहीं करता। और उसकी बहन छाया भी दुबली पतली तीखी सी नाक, लंबे लंबे बाल, उससे भी छोटी, उससे भी शांत, बिल्कुल नीरव आकाश की तरह, घंटों जैसे आकाश को देखते रहो तब भी आकाश की नीरवता कभी खत्म ही नहीं होती, बिल्कुल वैसी ही हमारी छाया। पांडे भैया का भी एक छोटा सा गाड़ी की खरीदी बिक्री का बिजनेस था। जैसे जैसे घर की नैया समुन्दर में हिचकोले खा रही थी और पर भैया का व्यक्तित्व बहुत आकर्षण था। रोबीले, लंबे चौड़े, भाभी भी करीब 5 फुट 9 इंच की थी, अलहटता से भरपूर, न वह पूरे गाँव की बन पड़ी और न कभी शहर की हो पाई। साड़ी इतनी छोटी पड़ती थी कि न सिर ढक पाता था और न पैर ढक पाता था, पर दोनों मियां बीबी हर वक्त सबके दुख सुख में खड़े हो जाते थे। आशु छाया दो बहन, दो बदन एक जान थे। कई बार मैंने देखा एक थाली में दोनों खाते, एक दूसरे को एक ही मिठाई का टुकड़ा बांटना चाहते कि भैया तू खा ले, बहन तू खा ले। भाभी मन की बहुत सुंदर थी, पर घर का काम उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। छाया झाड़ू पोछा करती, आशु खाना वगैरह में हाथ बटाता। दोनों बच्चों को भैया भाभी प्यार तो बहुत करते थे, पर वे हमेशा शांत और सहमे ही रहते। उनकी हंसी हमेशा ही होंठों को जबरन खींचकर दांत दिखाने वाली ही होती। उसके कुछ दिन बाद भाभी को एक और बेटा हो गया, नाम रखा गया राजन। होते समय पेट में ही उसके मुंह से पानी सिर पर चला गया था, जिससे उसका सिर एबनॉर्मल हो गया था। दिन भर मुंह से लार टपकाता रहता था। डॉक्टर ने कहा ना ये कभी बोल पाएगा और ना कुछ समझ पाएगा। बेचारे दोनों ही बहुत दुखी हुए और रोए, पर क्या करते। फिर भाभी का वही अल्हड़पन, कोई जिम्मेदारी नहीं, टेंशन नहीं, पूरे मोहल्ले में उठना बैठना बतियाना बस यही एक उनका काम था। और राजन सत्या छाया के छत्र छाया में, वे दोनों घर का काम धाम निपटाते और फिर मोहल्ले के बच्चों के साथ बैठ जाते। राजन भी नंगा पंगा धूल में दिन भर खेलता रहता, कभी मिट्टी खाता, कभी ईंटा खाता, कभी धूल ही धूल हो जाता। छाया दिन पर दिन कटे हुए चांद की फांक से पूर्णिमा की चांद की तरह बढ़ती जा रही थी। लंबे बाल, सांवली सी, बहुत शांत। पर आशु की हाइट रुक गई थी, 12वीं में था पर मात्र 4 फीट 11 इंच का। जब भी मुझे देखता वही सूखे सूखे उसके होंठ खुल जाते। धीरे धीरे राजन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया और उसने एक दिन पग भरा और छाया को चाया चाया कहने लगा। खुशी के मारे भैया भाभी के आंसू छलक आए और आखिर छाया और आशु का जो काम था, मेहनत था, वो आज सफल हो गई। आशु छाया पहले खाना बनाते, काम निपटाते, राजन को स्कूल छोड़ते और फिर छाया को, और फिर आशु अपने स्कूल चले जाता। छाया पढ़ाई में ठीक ठाक थी पर आशु हमेशा फर्स्ट आता था। और आखिर आशु की रूठी हुई किस्मत को उस पर दया आ गई और आशु को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में सफलता मिल गई। अब आशु के इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से आए, पर भैया ने जोड़ तोड़ करके और अपने सपूत को इंजीनियर की पढ़ाई के लिए बैंगलोर भेज दिया। उसके बाद मैंने पाया कि भैया भाभी का लज्जतदार खाने की आदत में थोड़ी

0: कमी आ गई थी, पर अब उन्होंने एक बर्तन झाड़ू पोछा के लिए एक मेहरारी रख ली थी। एक पैसा ही तो है जो इंसान को हंसना, रोना, हत्या, सहायता सब करवाता है। खैर, भाभी भी बेचारी अपनी हाइट की मारी थी, ना जमीन में बैठ पाती। इतनी ऊंची ऊंची टांगे थी कि कई बार पूजा के समय हम सब छिप कर उनको देखते तो बहुत हंसी आती थी, फिर बेचारी बर्तन बैठ के कैसे मांझ पाती थी। कई बार मैंने देखा कि जब राजन छोटा था और शैतानी करता तो मेरे सामने ही हाथ की बजाय एक पैर उठा के पीठ पर दम से जमाती और खिलखिलाकर हंस देती। हरामखोर लोग इतने पिद्दी पिद्दे हैं कि कौन इतना झुकेगा। हरामखोर तो उनकी पैटर्न गाली थी। राजन भी अब 8-10 साल का हो गया था, लंबा गोरा, बिल्कुल भाभी की तरह मोटे मोटे लाल मिट्टी जैसे होंठ। पर माया दिन पर दिन घुलती जा रही थी, आंखों के नीचे भी गहरा रंग बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो लगा कि जिंदगी भर उसने सिर्फ आशु के खाना पीना रहना सीखा था, शायद इसलिए उसके बिछुओं में इसको बुखार आ रहा है। पर जब लगातार बुखार नहीं छोड़ा तो भैया उसे वाल्टियर दिखाने ले गए। मेरे पापा, मम्मी, आस पड़ोस के अंकल लोग, हम लोग सभी मिलकर एक साथ गए। और जब वाल्टियर में मेरे पापा के हाथ में डॉक्टर ने छाया की रिपोर्ट दी और कमरे में बुलाया तो सबका चेहरा फक पड़ गया। छाया को ब्लड कैंसर था। भाभी को सुनते ही भैया ने भी अपने आप को रोक ना पाए। उनका कठोर चेहरा इतना दयनीय दिख रहा था कि हम सब रोने लगे। फिर क्या था, वही भाभी दिन रात छाया की सेवा करने लगी। कहां गया उनका आलस, अल्हड़ता, पता ही नहीं चला। भैया ने भाभी के सारे गहने, घर की गाड़ी और हम सब ने पैसों से जितना जिससे संभव हुआ, सभी ने, हम मध्यम वर्गीय थे, पर किए। और छाया को लेकर चारों परिवार एक साथ बॉम्बे गए जहां पर उसका इलाज करवाना था। दोनों गांव के सीधे साधे निश्चल माँ बाप पर एक तरफ आशु का इंजीनियरिंग का खर्चा, दूसरी तरफ इकलौती बेटी का अपने सामने तड़पते देखना। भाभी का गेहुआ रंग अपनी रंगत खो बैठा। रोबीला भैया का कठोर चेहरा दिन रात छाया के पैरों के पास बैठे रहते और आंखें उनके चेहरे पर गड़ी होती शांत हो गया था। पर भैया भाभी ने हम सबको आशु की पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करने की हिदायत दे दी थी कि यदि आशु फेल हो जाएगा तो दोबारा फीस का खर्चा वो नहीं उठा पाएंगे। आशु निर्विघ्न लास्ट सेमेस्टर की पढ़ाई में मगन था। चूंकि आशीष, छाया दो बदन एक जान थे। हालांकि राजन से भी हमने कभी नहीं देखा कि झगड़ा हुआ हो, पर राजन बहुत शैतान और अल्हड़ था। उनका सहमापन, अंधेरे अंधेरे कमरे में घंटों चुपचाप बैठे रहना, दोनों ने ना बचपन देखा ना जवानी के आने की दस्तक भी उन्हें सुनते हमने कभी नहीं देखा। और छठवें दिन दोपहर 1:30 बजे छाया ने अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़ा और सूखे होंठ कुछ खुले और फिर सदैव के लिए छाया छाया हो गई, जो कभी किसी का साथ नहीं देती। और भैया का बिलखना, छाया छाया मैं मर जाऊंगा, छाया बिटिया अपने पापा का आदेश तूने कभी नहीं टाला, उठ जा बिटिया, मैं ना जी सकूंगा तेरे बिना। जिस भाभी को ससुर के गुजरने के बाद एक आंसू नहीं टपका पाई थी, तब जिठानी ने हिदायत दी कि रोना ना भी आए तो भी कोई आए तो आंचल में मुंह ढक कर कम से कम रोने की आवाज तो निकाल सकती हो, हमारी नाक कटती है तुम्हारे ना रोने से। वही भाभी ना आज साड़ी का ध्यान, ना सिर पर पल्लू और बिलख रही थी। कभी छाया की छाती पर सिर पटकती, कभी भैया की छाती पर मुक्के मारती। भैया भी बेजान से बिलख रहे थे। काश खुली आंखों से एक बार, बस एक बार जिंदगी में अपने कठोर माँ बाप का ये प्यार देख लेती यदि छाया, तो शायद इस कैंसर को वह हरा देती। उसका सूखा निर्जीव सुंदरता जो जवानी की दहलीज पर कदम रखता और सहम कर झट से अपना कदम पीछे हटा लेता। और रविवार को जब वो आंगन में अपने धुले हुए घने घने कमर तक घुंघराले बाल को झट से तेल लगाकर उसको मही गूंथ लेती। आशु की गाड़ी की व्यवस्था करके खरे अंकल और मेरे पापा के साथ खड़ा हो गया कि जैसे अब बताइए मेरा अगला आदेश क्या होगा, क्योंकि आशु ने भी आज तक सिर्फ अपने माँ बाप का आदेश ही देखा था। न बचपन न जवानी, दोनों सूखा मरुस्थल, न शीतलता, दूर दूर तक कोई जीवन नहीं। उधर राजन दीदी दीदी कहकर बुरी तरह टूट गया। क्यों ना हो, पैदा होने के बाद से माँ का हर कर्तव्य छायाएं ने तो किया था। भाभी के तो जब वह हंसता था और सोता था, बस तभी तक भाभी उसे झेल पाती थी। कभी भाभी ने उसकी न पॉटी धुलाई न कपड़े साफ किए। राजन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। छाया आशु के कारण ही आज वह अस्तित्व की लड़ाई में शामिल था, वरना डॉक्टर तो जवाब ही दे चुके थे। बदहवास आशु के ऊपर बिलख पड़ा। आशु छाया के ऊपर बिलख पड़ा। भैया जी, दीदी को उठाओ, दीदी को उठाओ। मैं आज के बाद दीदी को कभी जिद नहीं करूंगा, रात में जगाकर हलवा भी नहीं मांगूंगा। दीदी उठो, उठो दीदी। और अचानक आशु के दुबले पतले शरीर को वह झिंझोड़ने लगा। भैया जी, दीदी आपका कहना कभी नहीं टालेंगी। भैया भैया प्लीज, मैं तो गैर हूँ। आप तो उसके सगे भाई हो भैया। इतना सुनना था कि हम सबके चेहरे फक पड़ गए। भैया भाभी का बिलखना बीहाबान जंगल के सन्नाटे में बदल गया। भाभी झट से खड़ी हो गई और राजन को तड़ातड़ मारने लगी, पर ये राज अब खुल चुका था। बाद में भैया ने बताया, ये दोनों बहुत गरीब मजदूर माँ बाप के अनाथ बच्चे थे। गांव में जब इनके सामने ही ट्रैक्टर का एक्सीडेंट में दोनों कुचल गए थे, तब कोई इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया था। तब भैया भाभी, जबकि शादी के मात्र 6 महीने ही हुए थे, दोनों बच्चों को अपना नाम दे दिए। धन्य है भैया भाभी जो मात्र थोड़ा सा काम क्या करवाते थे कि पूरा मोहल्ला पीठ पीछे कानाफूसी करता था। पर आज सबकी जबान बंद हो गई थी और सिर नतमस्तक हो गया था। भैया भाभी दोनों पूरे कंगाल हो चुके थे, पर दोनों बच्चों के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं रख छोड़ी थी। और जब आज आशु का अमेरिका जाना सुना तो भाभी के पैर छूने का मन किया। तुरंत भैया भाभी ने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया, कहा, चलो आशु की बहू अंदर है, आओ देख लो। वही गांव की सुंदरता, आंखों में चंचलता, और मैं आशु को निहारने लगी। पर आशु आज उस बेजान निर्जीव हंसी को तोड़कर शर्मा कर हंसते हुए मेरे पैरों की ओर झुका और मेरे मन में कहा, आशु तुम्हारी दुल्हन तुम्हें हर खुशी दे, जिंदगी की जो खुदा ना तुम्हें दे सका।
1: कथालोक में आप सुन रहे थे कहानी सत्य छाया। कहानीकार थी जया द्विवेदी। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओ, हर व्यक्ति की कोई न कोई हॉबी होती है और संगीत सुनना भी ऐसी ही रुचि है जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि मन को सुकून भी देती है। इसी संगीत को घर घर तक पहुंचाने में रेडियो की भूमिका हमेशा विशेष रही है। रेडियो और मौसम का रिश्ता कुछ ऐसा है कि बदलती ऋतुओं के साथ गीतों का चयन और उनका एहसास भी बदल जाता है। गर्मियों की सुबह हो तो ताजगी भरे गीत मन को ऊर्जा देते हैं, वहीं बरसात की रिमझिम फुहारों में प्रेम और यादों से सजे नगमे और भी मधुर लगने लगते हैं। सावन का मौसम सावन के मौसम में झूले, हरियाली और मिलन की भावनाएं गीतों में जीवंत हो उठती है। सर्दियों की गुलाबी ठंड में रोमांस और अपनत्व से भरे गीत श्रोताओं को गर्माहट का एहसास कराते हैं। दशकों से रेडियो इन बदलते मौसमों के अनुरूप फिल्म संगीत के रंग श्रोताओं तक पहुंचाता रहा है। कभी किसी दोपहर का साथी बनकर तो कभी किसी बरसाती शाम की यादों को संजोकर रेडियो ने संगीत और मौसम के इस खूबसूरत मेल को और भी खास बना दिया है। यही वजह है कि बदलते मौसमों के साथ फिल्मी गीतों का आनंद रेडियो पर कुछ अलग ही अनुभव देता है।

आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, वक्त है मधुरिमा का। श्रोताओं, आज की मधुरिमा फिल्म जगत की दो अविस्मरणीय हस्तियों को समर्पित है। एक है हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर, जिनकी पुण्यतिथि हमें उनकी अमर स्मृतियों की याद दिलाती है, और दूसरी ओर है स्वर जगत की सुप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर, जिनके निधन से फिल्म जगत ने एक मधुर और संवेदनशील आवाज खो दी है। आइए गीतों के माध्यम से इन दोनों महान विभूतियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें।

एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।

जिंदगी भी एक सुहाना सफर है, जहां हर मोड़ पर नए अनुभव, नई मुलाकातें और नई मंजिलें हमारा इंतजार करती हैं। रास्तों की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में ही नहीं, बल्कि उस सफर के हर पल में छिपी होती है।

अहंकार में डूबे इंसान जरा खुद को तो टटोल। तू भी बना है माटी का और अंत में जाना भी है माटी के मूल।

आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चलते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है।

0: लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं

0: भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
5: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
3: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the empowerment of women.
6: Over the past 12 years, women empowerment in India has witnessed a transformative shift. driven by sustained government efforts to enhance access to healthcare, education, livelihood opportunities, financial inclusion and leadership roles. The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has enabled millions of women to access collateral-free loans to start and expand their businesses. Under the scheme, loans worth more than 40 lakh crore rupees had been dispersed to beneficiaries by March this year. Of them, around 17 lakh crore rupees were given to women. Talking to Akashwani News, Vanisri from Tirupur, Tamil Nadu, said that the scheme had motivated her to become entrepreneurs.
7: The help of this scheme

0: छत्तीसगढ़ ही समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के पत्रिका में आप मन सुन सकत हो डॉक्टर सियाराम साहू ले वार्ता। विषय हवय छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु फुलवा। ये कहानी आप मन ला सुनाही डॉक्टर दीपशिखा पटेल। और मोर भुइयां के आखिर में डॉक्टर मीता अग्रवाल आप मन ला कविता सुनाही। आज के अंक में सबले पहली आवा आप मन ला सुनवात हन एक वार्ता जेकर विषय हावे छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु। अब वार्ताकार हावे डॉक्टर सियाराम साहू।
1: हमर बाबा हा एक ठन जनौला जनवावे, बता बारह में चार गए तब का बाँची। जनौला तो सीधा और सरल है कि बारह में चार गए तब आठ बाँची। तब हमर सियान हा कहे, अरे बेटा कुछ नहीं बाँचाए, बारह महीना में चार महीना चौमास में पानी नहीं गिरही तब ओ आठ महीना कोनो काम के नहीं होए। ये महत्तम है छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु के। ये हमार लोक जीवन के प्राण आए। छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु सिर्फ मौसम भर नो है, भलुक जिंदगी के उत्सव और जीवन चक्र के सबले महत्वपूर्ण अध्याय हरे। हम एला ऐसा घलो कही सकत हन, वर्षा छत्तीसगढ़िया मन बर खेती के आरम्भ और संस्कृति के पुनर्जन्म आए। हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। हमर ए पहचान है सर्वस वर्षा ऋतु ऊपर आधारित होते। वैसे तो किसानी के नवा साल है अक्ति के दिन ले शुरू होते, जी हाँ गांव के ठाकुर देव माता देवाला या अन्य देवी देवता के पूजा पाठ करके बीज बोए के शुरुआत होते। फिर जेठ महीना के आखिरी अवसाढ़ के लगती माँ जब करिया बादर अगास माँ उमड़त घुमड़त गर्जत चमकत आते तब असली खेती किसानी शुरू होते। आंधी के संग झिमिर झामर टिपिर टापर बरसा होए लगते, तब किसान मेड़ पार मुही के जतन करत खातू कचरा ला बगरावत कांटा खूंटी ला सकेल थे और खेती के बूता माँ लग जाते। तब उखर मधुर कंठ ले ए गीत निकल पर थे, कांटा खूंटी ला सकेला रे लैका और सियान बावत के दिन आगे भैया बोए ला चली धान। अषाढ़ के महीना में अर्तता के बोली ले नांगर जोतत किसान अपन पछीना ले धरती ला सींचते, तन के पछीना के बूंद झरते और हृदय ले गीत के बोल। माटी के दुलरवा बेटा माटी के गीत गावत जब मेहनत करते तब पूरा वातावरण ददरिया के मोहक स्वर ले गूंजे लगते। आघु नगरिया बैला है टिकला डोली में उतर हूँ हो जा ही चिखला हवा ले रे। अषाढ़ आते तब मन झूम जथे धान के बामा शुरू हो जथे, अषाढ़ के बूंद धरती पर अमृत तो आए संगे संग किसान बर घलो। आषाढ़ महीना मा चुक जबे माने जीवन के सुविधा ले चुक जबे, तेखर सिती कहे गे है डार के चुके बेंद्रा और आषाढ़ के चुके किसान। कृषि संस्कृति न केवल हमर लोक जीवन ला प्रभावित करते बल्किन कवि हृदय ला घलो। तभे तो किसानी के बूता ला अपन लेखनी मा लिखते, चल धर ते झुहा टोपली मैं धरत हूँ कुदारी, संगवारी मैं धरत हूँ रापा कुदारी, ठल्हा बैठे में जिंदगी नहीं चलाए, बिन जांगर पेरे पेट नहीं भराए, कमा के खाबो नहीं करन अलाली, संगवारी मैं धरत हूँ रापा कुदारी। अषाढ़ महीना के नाहकत सावन आजत है, सावन सबला सुहात है, सावन महीना फसल के सिंगार करते, तब मन मयूरा खुशी के गीत गाते। सावन महीना खेती के काम जोर होते, बन कचरा के निंदई के संगे संग ब्यासी के बूता घलो आ जाते। सावन महीना के घपटे बादर चमकत बिजली के संग किसान ब्यासी करत गीत के माध्यम ले अपन हृदय के उद्गार ला व्यक्त करते। इस सुघर बेरा मा छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी कवि कुंज बिहारी चौबे जी किसान के उद्गार ला लिखते, चल मोर भैया ब्यासी के नांगर, अरे कैसे मजा ब्यासी के नांगर, बिजली लफा लप चमकत है इंदर देवता तमकत है, जुड़ जुड़ बोहत है पुरवाही, दिखत है लच्छन गजब पानियाही, घपटे है उत्ती डहर करिया बादर, चल मोर भैया ब्यासी के नांगर। खेत के लहलहावत फसल ल देख के किसान के आनंद दुगना हो जाते, निंदई ब्यासी के संग धान चले के काम शुरू हो जाते। खेत में नींदत किसान, श्रमिक के दल ददरिया गा के आनंद विभोर हो जाते। रिमझिम बरसा सावन के ददरिया के स्वर लहरी आत्मा ला तृप्त कर देते। सावन महीना ले किसानी तिहार के शुरुआत हो जाते। हरेली छत्तीसगढ़ और कृषि संस्कृति के प्रमुख त्योहार आए। हरेली सावन महीना के अमावस के दिन मनाए जाते। हरेली लोक जीवन और कृषि संस्कृति के मंगल के पर्व आए। तभे तो लोक कंठ ले किसानी काम के ऐसन उद्गार होते। पानी पसिया पेज पी के पहावत हन जिन गानी, मैं छत्तीसगढ़िया भैया करथौ खेती किसानी, जियत किसानी मरत किसानी, नहीं जानौ कुछु सियानी। लैका मन गेणी बना के चढ़ते, नाचते गाते और उछाह मनाते। सावन महीना के अंजोरी पख नम्मी तिथि के भोजली बोए जाते, जेन पुन्नी तक चलते। राखी तिहार के बिहान भर नदिया तरिया में ठंडा करे जाते। एमा आरती जागरण स्वागत और विसर्जन के गीत गाए जाते, जेन मा भोजली दाई के स्तुति होते। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भीजे आठो अंग। यही भादो महीना में चतुर्थी तिथि के बहुला चौथ मनाए जाते। ओखर दो दिन बाद भादो महीना अंधियारी पाक के छठ तिथि के माता मन अपन संतान के सुख समृद्धि बर कमर छठ के उपास रही थे। एला भगवान बलराम के जन्मदिन घलो माने जाते। कमर छठ के दो दिन बाद आते आठे कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पूरा गांव उछाह मंगल ले मनाते। दूसर दिन दही लूट के आयोजन होते, जेमा गांव के ग्वाल बाल मन मगन होके ये परब ला सुघर बना देते। दही लूटो नंदलाल, दही लूटो नंदलाल, आठे कन्हैया दही लूटो। पोरा तिहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिहार आए। पोरा तिहार भादो अमावस के मनाए जाते। पोरा पोर फूटना यानी धान में पोटरी पान आना। पोरा के दिन कृषि संस्कृति के आधार नंदिया बैला के पूजा करे जाते। नंदिया बैला में ठेठरी खुरमी चढ़ाए जाते, जेन हर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक आए। ये लोक आस्था के चरम हरे। जी हाँ, खान पान और रोटी पीठा में घलो देवत्व के दर्शन होते। नान्हे लैका मन नंदिया बैला के पूजा के बाद ओमा सिली लगा के खेलते दौड़ाते और आनंदित होते। नोनी मन जाता पोरा दिया चुकिया और माटी ले बने खिलौना ले सगा पहुना खेलते। महिला मन पोरा पटके बर जाते, जिहा सुवा नित्य करत अपन अंतस के भाव ला व्यक्त करते। तरिहरी नाना मोर नाना हरे नाना, कदम तरी मोंगरा के झाड़े, ये झाड़े रे सुवना कदम तरी मोंगरा के झाड़े। पोरा के तीन दिन बाद तीजा तिहार। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन मा तीजा तिहार के बड़ महत्तम है। भादो महीना के अंजोरी पाक के तीसर दिन तीजा के तिहार मनाए जाते। पोरा तिहार के रोटी धर के भैया के अगोरा रही थे। माता बहनी मन चाहे कोनो उम्र के होए, मैके के दुलार पाए बर कुलकत रही थे। औ रही काबर नहीं, साल भर में एक बेर तो ये पावन अवसर आते। करु भात खा के तिजहारी मन उपास रही थे। पति के सुख समृद्धि और दीर्घायु जीवन बर कठिन निर्जला उपास रही थे। ये उपास ला कुमारी कन्या मन घलो रही थे। माता पार्वती हर मनचाहा बर पाए बर भगवान शिव की कठिन तपस्या करे रहीस, ऐसे वेद पुराण में वर्णन और लोक मान्यता है। तीजा के बिहान भर गणेश चतुर्थी ले शुरू हो जाते विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना। 11 दिन चलते। गणेश विसर्जन के बाद शुरू हो जाते पितर पाक। पितर पाक में हम अपन पुरखा मन के सुरता करत उखर प्रति अपन कृतज्ञता व्यक्त करथन। तोरई के साग संग बरा सोहारी और खीर के भोग लगावत पुरखा मन ला अर्पण तर्पण देथन। ए बीच खेती मा आखरी निंदई करगा छटई के काम और फसल ला खातू माटी के बरोबर मात्रा देवत पानी आदि के बने देखभाल करे बर लगथे। पितर मोक्ष के संगे संग देवी दुर्गा के आराधना के पर्व कुमार नवरात्रि के पर्व शुरू हो जाते। देवी दुर्गा के भक्तिमय वातावरण ले गांव गूंजे लग जाते। माता देवाला में जमारा बुआ थे, मनोकामना के ज्योति जल थे, देवी के मूर्ति की स्थापना होते और अपन मनोती मनाते। माता की स्थापना के सुमरनी सिंगार ले लेके विसर्जन तक अलग अलग प्रकार के गीत गा के माता के सेवा करे जाते। माता और जमारा विसर्जन के बाद दशहरा के पर्व मनाए जाते। ओखर 5 दिन बाद शरद पूर्णिमा मनाए जाते। फिर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाते। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु सिर्फ पानी नहीं लावाए, यहाँ के लोक जीवन के खान पान रहन सहन सबो में परिवर्तन लाते। किसान मन बर ये चौमास आशा और संस्कृति के उत्सव होते। वर्षा ऋतु छत्तीसगढ़िया लोक जीवन बर ऋतु भर नो है, ये श्रम संगीत स्वाद और संबंध के मौसम आए। खेती में पानी भरत ही छत्तीसगढ़ के लोक जीवन आशा और विश्वास ले भर जथे। ये सबो बात ला जाने के बाद हमर बाबा के बात है सिरतोन लगते कि 12 महीना में 4 महीना गीस ता का बाँचीस।
0: डॉक्टर सियाराम साहू ले अभी आप मन वार्ता सुनत रहे हो, जेकर विषय रहिस छत्तीसगढ़िया लोक जीवन मा बरखा ऋतु। अब कार्यक्रम में आगू बढ़त हवन और आप मन ला एक कहानी सुनवात हन जेकर शीर्षक हावे फुलवा। अब कहानी सुनात हैं डॉक्टर दीपशिखा पटेल।
2: गजब दिन के गोठ है, एक गांव है जंगल के तीर में रहिस। गांव में सब हंसी खुशी के साथ जीवन बितावत रहे। गांव में ककरो घर में सुख दुख आवे तो गांव में सबो जन मिल के निपटारा करे। गांव के तीर में किम रिकिम के रूख राई, आमा जाम तेंदू महुआ बिही केरा अमली आनी बानी के रूख रहिस। गजब सुघर लगे संझा बिहनिया चिरई चिरगुन के मीठ बोली। उही गांव में डोकरा डोकरी रहे, तेखर 2 जन बेटा और 1 जन बेटी रहे। बेटा मन के बिहाव हो गए है, नोनी के बर बिहाव नहीं हुए है। नोनी अपन दाई दादा के संग में रहे। डोकरा डोकरी मन अपन बेटी के फुलवा नाम रखे रहिन। सही में फुलवा हा फूल असन सुघर रहे। रोज बिहनिया उठ के अपन दाई के संग में रन्नी कुरिया में जाके घर लिप के पानी भर के खेत चल देवे। भाई भौजी मन फुलवा के काम देख के ईर्षा करे। फुलवा अपन दाई दादा संग खेत में जावे और चिरे चिरगुन ला देख के गजब कुलक कुलक के खेले। इसने इसने में फुलवा चिरे चिरगुन के भाका ला समझे लगे। ए डहर ओखर भाई भौजी मन फुलवा ला गजब ठिटोली लगा के ताना मारे। फुलवा ला देखे तहा ओखर भाई भौजी मन उला दुरिया ले चिल्लावे, वही दे आवते करिया चिरई कहके। फुलवा रोवत अपन दाई के गोदी में बैठ जावे। इसने दिन बीतत जाते। अब डोकरा डोकरी के बेटा बहु मन अलग खाए कमायला धर लीन। फुलवा अपन सियान दाई दादा के संग रहे गए। फुलवा के भाई भौजी मन जंगल में रोज डाही मारे बर जावे। फुलवा घलो अपन सियान दाई दादा संग में डाही मारे बर जावे तो ओखर भाई भौजी मन फुलवा ल देख के और ताना मार के हंसे। फुलवा चुपचाप काम करत रहे और अपन भाई भौजी ले पहले काम खत्म करके आमा के रूप में चढ़ के अपन सियान दाई दादा और भाई भौजी मन बर पके पके आमा ला भुइया में गिरावे। फिर वाह रे निर्दयी भाई भौजी रूख ले उतार के ओखर भाई मन चटकन में मार देवे। बिचारी फुलवा रोवत सुस्कत अपन दाई के लुगरा के छोर में आंखी के आंसू पोछत अपन दाई ला पोटार लेवे। ए डहर ओखर भाई मन नागर जोते और डाही मारे रहे तउन खेत में धान बोए है। बिचारी फुलवा का करे, रात के अपन सियान दाई दादा मन ला खवा पिया के सोवा दिस और जंगल निकल गए। फुलवा तो पिंगला विद्या जानते रहे, चिरे चिरगुन और सब जीव जानवर के बोली भाखा जाने समझे। फुलवा जम्मू जंगल के सिंग वाले बरहा मन ला गुहार लगाते। रात भर में बरहा मन फुलवा के खेत ला सिंग में कोट डरते। फुलवा अपन घर में चुपचाप आके सो जाते। इति बिहनिया ले उखर भाई मन नागर धर के जोते पर जावे ता देखते खेत के जुताई हो गए है। फुलवा के भौजी मन आंखें मटकावत ईर्षा के मारे कहते, तोरे करिया चिरई बहनी के खेत ताए बिकट कमैलिन बने हैं। फुलवा रात के बियारी करे के बाद अपन दाई ला कहते, दाई जान अब भाई मन करा ले खेत में बोए बर धान मांग के लान लेते। फुलवा के बात मान के दाई हर अपन बेटा मन जगह जाके कहते, बेटा हो खेत में फुलवा हा घलो धान बोही धान दे देते हो। भाई मन आकी तरेरत कहते, दाई तोला चिटको लाज नहीं आवे, अब फुलवा टूरिया धान बोही, हमर गांव में नाक कटवाओ। भौजी मन घलो अपन सास ला नंगत फुहरे फुहर गारी देते, दाई बिचारी कले चुप आगे, फुलवा अपन दाई

0: डबडबाया अकेला, देख के जान डरीस। फुलवा कही थे, दाई पुजारी बाबा घर जाके कुटकी मांग के लाबे। फुलवा की दाई दादा दोनों जन पुजारी घर जाके कुटकी मांग के लाते। फुलवा कुटकेला धर के खेत में जाके हुम दे के जंगल के जम्मो देवता धामी मन के सुमरन करत कही थे, हे मोर पुरखा के देवता हो, कुटकी बोवत हो, सब जन मोर रक्षा करहु। कुछ दिन बीते के बाद फुलवा के खेत में कुटकी रगबग ले जाम गे। फुलवा के भाई के खेत में धान में सावा बदौरी उपज गे। धान के एक बोझा नहीं होइस, फुलवा के गाड़ा भर भर कुटकी होए है। फुलवा जम्मो अनाज ला अपन घर के कोठी में भरवा देस। एक दिन रात के बेरा मा फुलवा के भाई मन ईर्ष्या के मारे फुलवा के घर में आगे लगा देन। फुलवा के घर और कोठी में रखे कुटकी भुंजा के राख हो गए। फुलवा अपन सियान दाई दादा के कैसनो करके जीव बचाते। फुलवा गजब चेतलक बेटी हरे, घर के राख हा जुड़ाते। तब जम्मो राख ला बोरा में भर के भैंसा गाड़ी में शहर बेचे बर जाते। उही रद्दा में एक जन व्यापारी अपन सियान दाई ला धर के रेंगत अपन गांव जात रहे से। संग में दुधारू गाय बछरू घलो धरे रहे। फुलवा की गाड़ी ला देख के व्यापारी कहते, नोनी मोर सियान दाई ला तुर गाड़ी में बैठा लेते, रेंगत रेंगत थक गए है। फुलवा कहते, मोर गाड़ी में सोना चांदी भरे है, कोनो मनखे के पांव पर जही त सब राख हो जही। व्यापारी कहते, तुर गाड़ी भराए सोना चांदी कहूं राख हो जही तो बदला में सोना चांदी और ये गाय बछरू ला दे देहूं। मोर दाई ले बढ़के कोनो चीज नो है। व्यापारी के दाई ला फुलवा अपन गाड़ी में बैठा लेते। व्यापारी के गांव में पहुंच के ओकर दाई ला घर में उतार के फुलवा अपन गाड़ी में भराए बोरा ला देख के कहते, एकरे सेती कह रहे हूं नहीं बैठा रहूं, देख जम्मो सोना चांदी हा राख हो गए। व्यापारी देखते सिरतुन गाड़ी के बोरा में राख भरा है, का करे बेचारा, अपन बात में हार गे रही से। जैसे कह रही से वैसने सोना चांदी और दुधारू गाय बछरूला दे दीस। फुलवा गाड़ी में सोना चांदी और गाय बछरूला धर के घर आ गए। फुलवा के भाई भौजी मन देख के अचरिच में पड़ गए। ओखर भाई आके पूछते, कस नोनी गाड़ी में राख भर के ले गए रहे और कैसे सोना चांदी गाय बछरू धर के लाए हस। फुलवा हा अपन बड़े भाई ला नोनी कह के पूछत सुनी तब भाई के अंतस के कपट ला समझ गए। फुलवा कहते, राख बेच के लाए हूँ, जाके बड़े भाई घर माँ बताते। लालच में आके दोनों भाई मन रात के अपनों घर में आगे लगा देते। घर कुरिया धान कोदो सब भुंजा गए। बिहनिया ले उठ के घर भुंजाए है तेखर राख ला सकेल। फुलवा के भाई भौजी मन बोरा में भर के गाड़ी में लाद के शहर शहर घूमे। राख ले लो हो राख ले लो, फिर सांझ के होत ले कोई राख नहीं लेन, का करे थके हरे थोतना उतारे गांव पहुंचीन। घर द्वार तो आगे में भुंजा गे रहा है, भाई भौजी के सब गर्व टूट जाते। मुड़ी ला धरे दोनों भाई रोवत बैठे रहा है। उतके बेरा पाछू डहाल ले उखर दाई दादा मन अपन बेटा मन के पीठ में हाथ रखते। फुलवा घलो अपन दाई के लुगरा के छोर ला धर के खड़े रहते। ओखर भाई मन मुड़ी उठा के देखते और घोक पार के रो डरते। भाई भौजी मन फुलवा ला बांह भर पुटार के कहते, हमला छिमा कर दे नोनी, ते हमर घर हमर गांव की देवी असनोनी, हमन तोला बेटी समझ के तोर इज्जत नहीं कर सकें, ते हमर बेटी नो अस बेटा अवस, हमर आंखी उघर गे। फुलवा ला बांह भर पोटारा देख के डोकरा डोकरी मन के आंखी ले आंसू बोहावत है। अपन लेका मल्ला एक होवत देख फुलवा के दाई कहते, जैसे मोर लेका मन एक हो गए वैसने जम्मू के घर में खुशहाली रहे, सब जोर मिल के रहे और बेटी बेटा में कोनो भेद मत रखे। नार भात चुर गे मोर कहानी पुर गे।
1: फुलवा ये कहानी अभी आप मन सुनत रहे हो डॉक्टर दीपशिखा पटेल ले। और कार्यक्रम के आखिर में अब आप मन ला सुनवा थन एक छत्तीसगढ़ी कविता पाठ सुना था डॉक्टर मिता अग्रवाल।
2: मोर कविता के जो शीर्षक है वो है नदिया कस जिंदगी धारा। रावी सतुलज सिंधु ब्रह्मपुत्र सात न

अभी गर्मी बहुत तपत है, तो हम मनखे मन के तो हाल बेहाल है। नदिया तरिया तको जौन प्रकृति के उपादान है, ओकर एक चित्र खींचे के प्रयास करत हूँ। पानी की किल्लत बहुत होवत है, तो पानी जीवन जगत हवे जी, पानी जीवन जगत हवे जी, एकर कर अमोल, अबूंद बूंद पानी ला जतनो, जीव द्वार खोल, जलहा बाचे जिंदगी बाचे, जलहा बाचे जिंदगी बाचे, बाचे सरी साज, और चेत लगा के संकट टालो, बूंद बनाए काज, पंच तत्व मा एक हरे जल, पंच तत्व मा एक हरे जल, बड़का दाम मान, सागर नदिया झरना तरिया, सागर नदिया झरना तरिया, कतको रूप जान, सब गुलना अपना ले थे जी, सब गुलना अपना ले थे जी, रंग अपन मिटाए, अब बर्फ भाप बन उड़ जावे जी, धुंगिया रूप भाए, धुंगिया रूप भाए, पानी बिन सब सून होए जी, पानी बिन सब सून होए जी, सबले बड़े शाप, और नीर पवन हा बदे मितानी, संगवारी माप, संगवारी माप, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बचे सासा जान, और जिंदगी दाता प्राण विधाता, जीव जिंदगी मान, जीव जिंदगी मान, पानी जिंदगी जगत हवे जी, एकर कर अमोल, अब बूंद बूंद पानी ला जतनो, जीव द्वार खोल, जीव द्वार खोल। मोर अगला रचना जौन है वो नारी सिंगार ऊपर है, हमारे छत्तीसगढ़ के।

0: अभी आप मन डॉक्टर मीता अग्रवाल ले कविता पाठ सुनत रहो और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले यह विदा देवा। जय जोहार महेंद्र साहू कोतिले।
1: अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया, संपादन और प्रस्तुत
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
3: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
2: जी,
3: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
2: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
3: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
2: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं, कि जहां पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
3: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
2: जी,
3: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
2: अजी जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के

0: की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं, तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है, जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव

0: डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पास्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
0: लुई पास्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पास्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पास्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पास्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
3: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पास्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पास्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
0: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो
5: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
6: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर,
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
9: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
8: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
10: सर सर ये टेलीग्राम।
8: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
10: क्या हुआ सर?
8: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
10: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
8: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
10: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
8: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
11: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
8: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
11: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
8: देखिए आप,
11: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
8: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
11: मेरा
8: अच्छा,
11: बेटा।
8: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
9: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
12: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
13: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
12: नमस्कार।
14: उमंग उमंग उमंग उमंग।
15: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
16: सुनो ना।
17: हाँ?
16: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
17: तो रोका किसने है? हाँ?
16: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
17: मुझसे।
16: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
17: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
16: पर उससे मेरा क्या फायदा?
17: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
16: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
17: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
16: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
15: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1963 में प्रदर्शित फिल्म दिल ही तो है के गीत। इस फिल्म का निर्माण बीएल रावल ने किया और निर्देशन किया है सीएल रावल और पीएल संतोषी ने। ये फिल्म प्रेम, संगीत और पारिवारिक भावनाओं का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है। उस दौर में इसकी कहानी और मधुर गीतों ने दर्शकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया।

दिल ही तो है फिल्म में राज कपूर ने यूसुफ की भूमिका निभाई, जबकि नूतन जमीला बानो के रूप में दिखाई दी। इनके अलावा प्राण, आगा, नासिर हुसैन और मनोरमा जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। राज कपूर का सहज अभिनय और नूतन की संजीदा अदाकारी फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में गिनी जाती है।

फिल्म दिल ही तो है का संगीत दिया है सुप्रसिद्ध संगीतकार रोशन ने और गीत लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने। ये जोड़ी फिल्म की आत्मा बन गई। लागा चुनरी में दाग तुम अगर मुझको न चाहो और निगाहें मिलाने का जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित लागा चुनरी में दाग के विशेष रूप में अमर गीतों में चुना जाता है।

दिल ही तो है फिल्म के गीतों को मन्ना डे, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर ने अपनी आवाज दी। फिल्म की खास बात ये रही कि इसके अधिकांश गीत लोकप्रिय हुए। संगीत में शास्त्रीयता, उर्दू शायरी और फिल्मी मधुरता का सुंदर मेल देखने को मिलता है।

फिल्म दिल ही तो है को आज भी उसके संगीत और गीतों के कारण याद किया जाता है। फिल्म ने साबित किया कि मजबूत कहानी के साथ उत्कृष्ट संगीत किसी भी फिल्म को लंबे समय तक जीवित रख सकता है। 6 दशक से अधिक समय बाद भी इसके गीत रेडियो, मंचों और संगीत प्रेमियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र में अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल पर ही कराई गई, जिसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नारायणपुर जिले के अभूजमाड़ क्षेत्र के गारपा और कोंडा गांव जिले के बड़े कनेरा पहुंचे। गारपा में आयोजित जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा तथा सुरक्षा से जुड़े कई विकास कार्यों की घोषणा की। वहीं बड़े कनेरा में आयोजित समाधान शिविर में उन्होंने कोंडा गांव जिले के लिए 152 करोड़ रूपये से अधिक लागत के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सुकमा में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की 10 पैक्स समितियों में यह सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन तकनीक से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय और कम लागत में किया जा सकेगा। इससे किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर के पास सारंग में स्थित मिवान स्टील प्लांट में ब्रायलर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए एक वीडियो भी जारी किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव एफ एम्बेंट पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: भारत में सूचना क्रांति अपने सर्वोच्च शिखर पर है। जन संचार के माध्यम हो या सोशल नेटवर्क की दुनिया, जनमानस को अत्यंत प्रभावित किया है आधुनिक सूचना तंत्र ने। विज्ञान के नित नए आविष्कारों ने न सिर्फ समाज को विकसित किया है बल्कि सामाजिक विघटन को दूर करने में भी मदद की है। पहले कितने ही ऐसे क्षेत्र थे जहां संचार व्यवस्था की बहाली दुष्कर मानी जाती थी, खास तौर पर प्राकृतिक आपदाओं और आतंकी घटनाओं के वक्त त्वरित सहायता और बचाव कार्य की गति बहुत धीमी होती थी। लेकिन अब ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक डायल 112 के आ जाने से, यानी एक के नंबर सबोबर, और वो है नेक्स्ट जेन 112। इस आपात सेवा का विस्तार कर सुरक्षा व्यवस्था को अब और भी दमदार बना दिया गया है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने डायल 112 के प्रतिक्रिया समय और समस्या समाधान को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही है।
1: तो पहले खाली 16 जिला में था ये सेवा डायल 112, लेकिन अभी पूरे 33 जिला में ये सेवा हम लोग उपलब्ध करा दी है। पूरे 33 के 33 जिला में जितना ज्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकती है वो हम सब लोग

0: सरकार की मंशा अब सभी 33 जिलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डायल 112 आपात सेवा लागू करने की है। इसके लिए 400 नए आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन तैनात किए गए हैं। ये सभी वाहन अति आधुनिक संचार उपकरणों से लैस है। डायल 112 के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा,
1: माननीय गृहमंत्री जी की उपस्थिति, मुख्यमंत्री जी, विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहे और गृहमंत्री जी पुरिंदर जी, हमारे क्षेत्र के विधायक और अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें 112 और 112 नंबर पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक स्थानों पे एक दिन में आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, मोबाइल फोरेंसिक वैन, जो अपराध होते हैं और अपराध के साक्ष्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं, और ये वैन सभी जिलों में 32 दिया जा रहा है, ये वहां पे फोरेंसिक जो एविडेंस होते हैं, जैसे हाथ के निशान है, कपड़े के निशान है, उनके ब्लड के सैंपल है, जो एक घंटे के बाद भीड़ आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये एक एविडेंस इसी का कोर्ट में चलता है।

0: छत्तीसगढ़ में पहले से कार्यरत डायल 112 दरअसल भारत का एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह के संकट की स्थिति में चाहे पुलिस की जरूरत हो, एम्बुलेंस की या फायर ब्रिगेड की, ये सेवा सातों दिन 2400 घंटे मुफ्त उपलब्ध रहती है। अब उच्चतम तकनीक के विकास के कारण इसके कार्य क्षेत्र का दायरा भी बढ़ गया है और राहत की समय सीमा भी घट गई है। गंभीर अपराध, चोरी, दुर्घटना, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध की स्थिति में डायल 112 एक विश्वसनीय कॉल नंबर है।
1: मैं राजेश भागड़े, उप पुलिस अधीक्षक बालोद से बोल रहा हूँ। डायल 112 यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने जगदलपुर मार्केट का उद्घाटन किया था। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कई जिलों में इसका उद्घाटन, 112 का जो संचालन है वो नहीं हो रहा था, किंतु 19 तारीख को उन्होंने विधिवत उद्घाटन करके उसका शुभारंभ किया, जिसके तहत बालोद जिले में भी 112 का वो शुभारंभ हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि भारत में डायल 112 एक एकीकृत आपातकालीन सेवा नंबर है, जिसे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह सेवा पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को एक ही नंबर पर उपलब्ध कराती है। डायल 112 की मुख्य विशेषताएं लगभग किसी भी आप मोबाइल या लैंडलाइन या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। SMS के द्वारा भी आप उसको सूचित कर सकते हैं। यह सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है, जो मुख्यतः महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु उपयोगी होती है। आपात स्थिति में लोकेशन ट्रैकिंग और त्वरित सहायता की सुविधा भी डायल 112 के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई राज्यों में मोबाइल ऐप और अन्य फीचर्स के माध्यम में भी यह सुविधा उपलब्ध है, जो आने वाले दिनों में जिले में भी लागू किया जाएगा। और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकते हैं ये मैं बताना चाहूंगा। अपराध या कोई चोरी की सूचना हो, कोई सड़क दुर्घटना हो, आग लगना हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, महिला सुरक्षा संबंधी कोई सहायता चाहिए या किसी भी प्रकार की तत्काल सहायता चाहिए, तो डायल 112 तत्काल वो सेवा में हाजिर रहेगा। शहरों में ये जो इनका जो करने का टाइमिंग 10 मिनट का रहता है, किंतु देहात में आधा घंटे का टाइम उसको फाइनल किया गया है कि जब भी आप 112 को फोन करेंगे तत्काल आधे घंटे के अंदर सेवा आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। और डायल 112 का उद्देश्य अलग अलग आपातकालीन नंबरों को एक साथ, जैसे 100 नंबर है, 101 नंबर है, 108 आदि को एकीकृत कर नागरिकों को तेज और सरल सहायता उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है डायल 112 का।

0: छत्तीसगढ़ में डायल 112 केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर है। भारत सरकार के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के ढांचे के तहत डायल 112 के अंतर्गत कई सेवाओं को एकीकृत किया गया है, जिनमें पुलिस आपातकालीन सेवा, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन, रेल हेल्पलाइन और बाल हेल्पलाइन शामिल है। इस पहल से अपराध कम करने में मदद मिल रही है। डायल 112 अपनी मुख्य तकनीकी संरचना और प्राथमिक प्रतिक्रिया वाहनों के माध्यम से संवेदनशील समूहों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता ने बताया,
1: जहां पर ऐसी जनसंख्या है जहां पर हमारा डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जा सकती है और वहां पर कॉलर को सुविधा ज्यादा है अपनी खुद की भाषा में बात करने के लिए, तो ऐसे में वो अपनी खुद की भाषा में भी शिकायत और सहायता मांग सकता है और हमारा प्रयास रहेगा कि उस भाषा को समझने वाला व्यक्ति उससे वार्तालाप करे और उसकी पूरी बात समझ के तदनुसार हम वहां पर उसको सहायता पहुंचाएं। डायल 112 की जो सुविधा है पूरे देश में और वैसी ही छत्तीसगढ़ में है, वो सुविधा जो है वो उसमें लोकेशन बेस्ड सर्विस आती है, तो लोकेशन बेस्ड सर्विस में जो कॉलर है वो उस कॉलर की लोकेशन अपने आप जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 112 को उपलब्ध करा देते हैं, तो इनके लोकेशन के आने से हम बड़े आसानी से तय कर सकते हैं कि जो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है उसको कहां पहुंचना है और लोकेशन को फर्दर रिफाइन करने के लिए उनसे हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में पुलिस पर्सनल है वो फर्दर उनसे बात कर लेते हैं। 112 केवल पुलिस की अकेली सेवा नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सेवा है, तो किसी को भी अगर पुलिस, मेडिकल या फायर के कोई आपदा में एक रिस्पांस चाहिए तो वो 112 डायल करके हमारे कमांड सेंटर तक पहुंच सकता है। कमांड सेंटर पे उसकी पूरी बात नोट की जाएगी और पुलिस का अगर सेवा चाहिए तो हम उसको खुद डिस्पैच कर देंगे, अगर उसको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो हम उसके इवेंट को तत्काल जो 108 का कमांड सेंटर है उनको अग्रेषित करते हैं जिससे वो लोग एम्बुलेंस भेजते हैं, और अगर कोई फायर का इंसिडेंट है तो हम उसको फायर सर्विसेज को तुरंत नोटिफाई कराते हैं तो वो लोग आते हैं। इसके अलावा और भी वेमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन की भी जरूरत अगर परिलक्षित होती है तो उन हेल्पलाइंस में बैठे हुए जो कमांड सेंटर के पर्सनल हैं उनको भी ये सूचना दी जाती है तुरंत, चाहे रेल मदद की हो, वेमेन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, आपदा प्रबंधन हो, तो ये सब का इंटीग्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि अगर उसको मल्टीपल कॉल्स नहीं करने पड़ेंगे हर चीज के लिए। आने वाले दिनों में डायल 112 की सेवा यूनिवर्सल हो जाए ये उद्देश्य रहेगा और जैसे जैसे हमारे वनाच्छादित क्षेत्र जो हैं उनमें विकास पहुंचेगा, उनमें से जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, हम चाहेंगे कि डायल 112 वहां पर और ज्यादा विस्तार में जाए। साथ ही साथ इसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, तो उस रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए हम जितने अधिकाधिक पर्सनल को इसमें लगाना चाहेंगे और अधिकाधिक इसमें इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स इसमें डिप्लॉय करना चाहेंगे, तो ये सब संसाधन से जुड़ी बातें हैं और भविष्य में हम लोग इन सब में बढ़त करना चाहेंगे क्योंकि हमारा जो आईटी सॉल्यूशन है वो लगभग परिपूर्ण है, तो अब जो उसमें इम्प्रूवमेंट मिलना है वो इन संसाधनों के अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट से मिलेगा। डायल 112 की जो सेवा है उसका उपयोग करें, कहीं पर भी आपको यदि स्वयं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है या आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा नागरिक संकटापन्न है तो आप 112 को जरूर कॉल करें और उसको संपूर्ण जानकारी दें। यदि आप लोकेशन को जितना ज्यादा बारीकी से प्रिसाइज और एक्यूरेट बताएंगे हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को वहां जल्द से जल्द पहुंचने में उतनी सुविधा मिलेगी, तो ये सेवा पूरी तरह से जनता के लिए है, तो जनता को इसको एक तरह से अपना एसेट मान के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।

0: ये नारा अब छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। गांव हो या शहर, एक के नंबर यानी डायल 112 अब उपलब्ध है सब बोबर यानी सबके लिए, सभी जगह और वो भी 24 घंटे। डायल 112 की कार्यप्रणाली जन अपेक्षाओं के अनुरूप है, तभी तो इसके प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है। लोग खुश हैं अपनी समस्या का समाधान तत्काल पाकर। ऐसे कई मामले रोजमर्रा पेश आते हैं जिनमें जरूरत होती है तुरंत सहायता की, और वहां अगर आसानी से मदद मिल जाए तो फिर ऐसे में जनता जनार्दन के चेहरे आखिर क्यों न खिले। आप हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अनिल सोनी।
1: पूरे छत्तीसगढ़ में फेज 2 नेक्स्ट जेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में डायल 112 जो कि एक एकीकृत इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है उसका संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत रायगढ़ जिले में 16 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल प्रदाय किए गए हैं जो कि 24/7 सेवा सुनिश्चित कर संचालित हो रही है, और 24/7 सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें पुलिस, फायर, मेडिकल इमरजेंसी, इसके साथ साथ महिला चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, आपदा सहायता और हाईवे इमरजेंसी जैसी सेवाओं को एक ही नंबर 112 से जोड़ा गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो इमरजेंसी में हो, पुलिस से संबंधित या फायर से संबंधित या मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे महिलाओं और बच्चों या अन्य प्रकार से आपदा हो, तो उसमें केवल एक नंबर ही डायल करके या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से, वेब रिक्वेस्ट से, चैटबॉट से, किसी भी माध्यम से सूचना देकर मदद प्राप्त कर सकता है।

0: आपातकालीन परिस्थितियों में बेहद जरूरी होती है तुरंत राहत। इसके लिए डायल 112 का प्रतिक्रिया समय जितना कम होगा उतनी ही जल्दी होगा समस्या समाधान। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में डायल 112 की पहुंच को विस्तार देने के लिए यहां चार पहिया वाहनों के अलावा दो पहिया वाहनों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। इस तरह ये अभियान अब राज्य के कोने कोने में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री दीपक कुमार झा।
1: जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस है इसमें डायल 112 की शुरुआत वैसे तो काफी समय पहले से है, 2018 से है, लेकिन उस समय कुछ जिलों में ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये सेवा अभी पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। जैसे उदाहरण से मैं हमारे रेंज में केवल सरगुजा जिले में गाड़ियां थी इसमें। अभी सरगुजा जिले में पुरानी गाड़ियां थी, चूंकि इतनी पुरानी हो गई तो कंडेम्ड हो गई, उसको बदल के नई गाड़ियां तो आई गई हैं और अन्य जिलों में भी आ गई हैं। जैसे 12 गाड़ियां सरगुजा जिले में है। कोरिया जिले की बात करें तो वहां भी 5 गाड़ियां हैं। हर एक जिले में अभी वाहन है। ये सेवा एक तरह से हम कह सकते हैं जो ये आम नागरिक हैं उनको तत्काल त्वरित रूप से सहायता मिल सके उसी के लिए एक अच्छी व्यवस्था है ये। और जैसे कोई आपातकालीन हो गई, कहीं पे मान लीजिए कोई रोड पे कोई देखता है किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें पुलिस को तत्काल आना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोगों को पता नहीं रहता है किस थाने में किसको फोन करें, कहाँ करें। ये एक नंबर है मात्र पूरे प्रदेश में, मात्र एक नंबर 112। इसमें आप जैसे ही कोई आदमी फोन करेगा और बता के जानकारी देगा, लोकेशन देगा, तो पुलिस वहां पे सभी गाड़ियां जीके से लेते हैं। जो नियरेस्ट वाहन अवेलेबल होगी वो गाड़ी को सूचना चली जाएगी कंट्रोल रूम से और वो वाहन वहां पर तत्काल पहुंच जाएगी। कई बार अगर पुलिस तत्काल नहीं पहुंचे तो बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों का जिनकी जान का नुकसान भी हो जाता है अगर समय पर राहत नहीं पहुंचे। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेवा है। और इसमें जो है इसमें हमारे पास जो है जैसे 112 में इस बार 4-व्हीलर के अलावा कुछ 2-व्हीलर वाहनों भी दी गई है। 18 से जैसे चल रहा है तब से लगातार इसके माध्यम से जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी घटाने का काम किया गया। पहले जैसे कि ये शहरी क्षेत्र में 10 मिनट था और ग्रामीण एरिया में 30 मिनट का समय रहता था, तो उसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को, माननीय सीएम महोदय का जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें इसको रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करना चाहिए ताकि पुलिस डायल 112 के वाहन त्वरित रूप से जल्दी पहुंच सके और लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। और इससे जो है पुलिस के प्रति लोगों को जो विश्वास है निश्चित रूप से बढ़ा है। क्या होता है देखिए, जैसे थाने में कोई गाड़ी रहती है कई जगह गई हुई रहती है और हमको उस वक्त आवश्यकता है, थाने गाड़ी उपलब्ध नहीं है, तो फिर अब पुलिस पहुंच नहीं पाती है। पहले तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे हो जाते कितने स्पॉट पे जाने में। अभी क्या है 112 के वाहन जो नियरेस्ट है वो मिलेगी, अगर कोई एक वाहन कहीं और गई है तो उसके दूर वाली जो वाहन रहेगी वो आ जाएगी। इस प्रकार से कोई ना कोई वाहन जल्दी से जल्दी वहां जरूर मौके पहुंच जाएगी। तो ये काफी अच्छी व्यवस्था है और इससे निश्चित रूप से लोगों की मदद, आम लोगों की मदद होगी। लोग उसमें काम करते हैं उनके लिए भी अनुशासन का पालन करना आवश्यक है और किस प्रकार से सर्विस के लिए है उसके लिए किस प्रकार से आवश्यक है वो उस बात को भी समझे। इसमें मुख्य रूप से महिला की सुरक्षा के जुड़ा हुआ मामला भी है, वरिष्ठ लोगों की जो वरिष्ठ नागरिक है जो विशेषकर जैसा अकेले रहते हैं उनको भी आपात स्थिति में सहायता मिल सकती है। महिलाओं के संबंध जैसे मैंने बताया उनके उनको भी कोई इस तरह घटनाएं आती है, कोई छेड़छाड़ संबंधी कोई शिकायत करनी है, कोई कुछ और है उसके बारे में कर सकती है। आपातकालीन जैसे चिकित्सा की विजय ने बताने बताया दुर्घटना हो जाती है उसके वजह से जो बच्चे हो जाते हैं लापता हो जाते हैं केवल उनके संबंध में भी, तो हर प्रकार से आपदा प्रबंधन में भी इसकी जो है महत्वपूर्ण वो है। और ये नंबर जो है 112 अभी 108 102 इस प्रकार के जो नंबर होते थे उन सब से भी जुड़ा हुआ है। आपको अलग अलग नंबरों पर फोन करने की जरूरत नहीं है, 112 फोन करें, इसलिए इसका टैगलाइन ही यही है एक के नंबर से भोगा। सभी काम के लिए यही एक नंबर है। निश्चित रूप से लोगों को, आम जनता को इससे काफी मदद मिलेगी 112 की इस

0: डायल 112 छत्तीसगढ़ सरकार का आम नागरिकों के लिए एक त्वरित पारदर्शी और प्रभावी कदम है। इस आधुनिक तकनीक से पुलिस व्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। एक नंबर अनेक माध्यम और त्वरित सहायता की सोच पर आधारित डायल 112 सेवा प्रदेश वासियों को किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और मदद उपलब्ध कराने का सबसे सशक्त माध्यम बन रही है। इन नए हाईटेक वाहनों के सड़क पर उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी।
1: दिलीप ध्रुव बोल रहा हूँ, धमतरी जिले से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा में कार्यरत हूँ। जो 112 की सेवा है बिल्कुल निःशुल्क है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसके 112 डायल करने पे आप आपदा प्रबंधन हो गया, अपराध नियंत्रण हो गया, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, महिला और फायर ब्रिगेड प्रकार की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। 112 कॉल करने के बाद आप लाइव लोकेशन आपका ट्रैक किया जाता है। उसके करने के बाद वहाँ के इमरजेंसी व्हीकल को और नजदीकी व्हीकल को आपके पास भेजा जाता है। 112 सीधा आप कहीं भी डायल कर सकते हैं। दुर्घटना, चिकित्सा, अग्निशामन सब प्रकार की सुविधा के लिए आप 112 कॉल कर सकते हैं। तो डायल करने से आप चिकित्सा सुविधा मिल सकता है, पुलिस सुविधा मिल सकता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए

इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क पर उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी बल्कि आम नागरिकों को भी तेज सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी। एक नंबर सबोबर यानी डायल 112 को लेकर आम नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास की जो लहर जागी है वो उनके उत्साह से साफ जाहिर होती है। जनता अब निर्भीक है, उत्साहित है और सम्मान के साथ बढ़ रही है उजाले की ओर।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में लीजिए सुनिए लंबोदर बघेल और साथियों के का गाया भत्री लोकगीत, पर पहले ये संदेश।
1: बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: गुर्दों में लीजिए सुनिए लंबोदर बघेल और साथियों का गाया भत्री लोकगीत।

ಚಿಕ್ಕ ಪುತ್ರ ಜೀವೋ ನಾನು ಬಾಬು ನಾರಾಯಣ ಬಾಜಿ ಕಾಯಲಾರೋ ಪುತ್ರ ಜೀವೋ.

दुष्ट तत्व बाजी खाई कई रूपये जीव तान तू पलै जा हे दुष्ट पुत्र को छाड़ दे सुंदरी हे दुष्ट पुत्र को छाड़ दे प्राणनाथ कहीं छाड़ी देख मुते कष्ट मो पुत्र पाई प्राणनाथ नमारो नमारो राजा।

0: गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे भतरी लोकगीत। कलाकार थे लंबोदर बघेल और साथी। मीडियम वेव 396.82 मीटर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे?
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, फोन इन किसान वाणी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक की जाती है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं फोन इन किसान वाणी की रिकॉर्डिंग के लिए प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। ये आकाशवाणी जगदलपुर है, पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, ये धुन सुनकर शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज के हमारे कलाकार हैं भारतीय सिनेमा के प्रभावशाली फिल्म निर्देशकों में से एक मणिरत्नम, जिनका पूरा नाम गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम है। आज ही के दिन यानी 2 जून को वे अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक ऐसे दिग्गज फिल्मकार जिन्होंने तमिल और हिंदी सिनेमा जगत में कई कालजयी फिल्मों से पूरे देश में अमिट छाप छोड़ी है। आज उनके जन्मदिवस पर आज का हमारा ये कार्यक्रम उनको समर्पित है।

श्रोताओं, मणिरत्नम एक निर्देशक ही नहीं बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक भी हैं। वे अपने अलग सिनेमाई अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अपनी बेहतरीन बैकलाइटिंग, काव्यात्मक कहानी के ढंग और शानदार संगीत के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों का संगीत इतना कर्णप्रिय होता है कि हमेशा सुनना पसंद किया जाता है। उन्हें स्टोरी टेलिंग का मास्टर कहा जाता है। अपनी रचनात्मकता के चलते वे हमेशा कुछ नया करते हैं और फिल्में हमेशा उनकी विषय वस्तु की प्रधानता लिए होती है। कहानी से रूबरू कराने का उनका अंदाज और भावनाओं को जितनी खूबसूरती से वो प्रस्तुत करते हैं, जो उन्हें एक अलग ही निर्देशक बताता है। भारतीय माइथोलॉजी, रूमानी, सत्य घटना, वास्तविकता के निकट और आतंकवाद जैसे विषयों पर बनी उनकी फिल्में मिसाल है। तो आइए सुनते हैं मणिरत्नम निर्देशित फिल्म बॉम्बे का ये गीत रेमो फर्नांडिस और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, मणिरत्नम का जन्म तमिलनाडु मदुरई में 2 जून 1956 को हुआ था। उनके पिता एक फिल्म निर्माता थे। उनकी शिक्षा चेन्नई में हुई। फिल्मी परिवार से होते हुए भी आरंभ में उनका रुझान फिल्मों में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने MBA करके मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम भी किया। फिर फिल्म में सहायक के रूप में काम करने के बाद 1983 में कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उन्हें असली पहचान तमिल फिल्म मौन रागम से मिली, जिसने बड़ी सफलता उन्हें दिलाई और पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्में बनाई, जैसे नायकन, अंजलि, थलपति, पोन्नी सेल्वम 1-2, गीतांजलि और इरुवर। इनमें से कई तमिल फिल्मों का हिंदी में रूपांतरण भी किया गया था। हिंदी सिनेमा जगत में भी उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई सभी लगभग सफल रहीं, जैसे रोजा, बॉम्बे, दिल से, साथिया, युवा, रावण, ओके जानू और गुरु का ये

श्रोताओं, मणिरत्नम की कहानियां अक्सर प्रेम, मानवीय भावनाओं, राजनीतिक उथल पुथल और यथार्थवाद के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी फिल्मों में बेहतरीन रंगों का इस्तेमाल और आकर्षक संगीत होता है। इलैयाराजा और एआर रहमान के साथ उनकी जुगलबंदी बेहतरीन रही है। इलैयाराजा के साथ उन्होंने कई तमिल फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इलैयाराजा का जन्मदिन भी आज ही के दिन यानी 2 जून को रहता है। उनका साथ तमिल सिनेमा के लिए एक वरदान जैसा था। उनकी निर्देशन शैली अनूठी है। उनका तकनीकी ज्ञान, बेहतरीन निर्देशन, रिश्तों को अच्छे से फिल्मों में दर्शाना, कैमरा फ्रेम में कलात्मकता, प्राकृतिक सौंदर्य को खूबसूरती से दिखाना उनकी निर्देशन शैली को बेहतरीन बनाता है। इलैयाराजा के बाद एआर रहमान के साथ उन्होंने काफ़ी जुगलबंदी की है और हिंदी फिल्म सिनेमा जगत में एआर रहमान के साथ उनकी जोड़ी हमेशा हिट रही है और उनका संगीत बेहद पसंद किया गया। आइए सुनते हैं एआर रहमान और मणिरत्नम की जुगलबंदी वाले फिल्म साथिया का ये गीत केके और शान के स्वरों में।

मणिरत्नम ने 6 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने हिंदी और तमिल फिल्मों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिनमें से 4 फिल्म फेयर पुरस्कार हिंदी के लिए और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार तमिल शामिल हैं। साथ ही 6 राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके अलावा दुनिया भर के विभिन्न फिल्म समारोहों में उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। 2002 में भारत सरकार ने उन्हें फिल्मों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनकी कहानियां अक्सर प्रेम मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करती है। भारतीय सिनेमा का परिदृश्य बदलने वाला दूरदर्शी निर्देशक उन्हें माना जाता है। आइए सुनते हैं उनकी एक ऐसे ही सफल फिल्म दिल से का ये गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी के स्वरों में।

श्रोताओं, मणिरत्नम ऐसे निर्देशक हैं जिनकी फिल्मों में काम करके कलाकार अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। उनकी फिल्मों में काम करना हर बड़े स्टार का सपना होता है। ऐसे निर्देशक जिन्होंने अपनी उम्दा फिल्मों के चलते भारतीय फिल्म उद्योग को विश्व में पहचान दिलाई। मणिरत्नम की फिल्मों का इंतजार दर्शक बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा में यथार्थवाद और तकनीकी उत्कृष्टता लाने का श्रेय दिया जाता है। जिन्हें सिनेमा की अच्छी समझ है, उन्हें मणिरत्नम की फिल्में जरूर पसंद आती हैं। बदलते समय के साथ नए सिनेमा वे हमेशा देते रहते हैं। आज भी उनकी पकड़ समय से आगे की है और ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें आगे का निर्देशन दिखता है। वो सिनेमा जगत में सक्रिय हैं और आशा है हमें आगे भी उनकी बेहतरीन फिल्में देखने को मिलती रहेंगी। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं युवा फिल्म का ये गीत मधुश्री के स्वर में।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक मणिरत्नम पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना स्थल पर ही मतगणना कराई गई, जिसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के 10 पैक्स समितियों में यह सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों

0: सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। रायपुर के पास आरंग में स्थित मिवान स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इसके लिए जानकारी के लिए वीडियो भी जारी किया है। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में अस्थिबाधित बौने कम सुनने तथा देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से आज उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए रूपक बस्तर का रंग कर्म। लेखक, वाचक और प्रस्तुति है के परेश की।

0: मुझे मेरा बचपन याद आता है, बचपन का जगदलपुर याद आता है जहां मनोरंजन के साधन नहीं थे, नितांत अभाव था मनोरंजन के साधनों का। ऐसी स्थिति में उस बस्ती में केवल नाटक हुआ करते थे, नौटंकी भी हुआ करती थी और रामलीला तो सन 1914 से ही होती रही है। जगदलपुर में सन 1914 में राजा रुद्र प्रताप देव रामलीला पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके तहत सिरासार में तथा राजमहलों में समय समय पर, खासकर जब जब त्योहार आते थे तब तब मंचन हुआ करता था रामलीला का, खासकर सिरासार में और राजमहल के अंदर में। तो धीरे धीरे इस रामलीला का प्रभाव, साथ साथ नाटक भी हुआ करते थे जगदलपुर में उन दिनों, कई नाट्य मंडलियां सक्रिय रहा करती थीं जगदलपुर में, जिसे मैं जानता हूं आर्य बांधव थिएटिकल सोसाइटी काम कर रही थी, श्री राम पार्टी नाटक मंडली भी सक्रिय थी, प्रेम मंडली छोटेलाल जैन छुट्टन की सक्रिय थी, नौटंकी का संचालन कर रहे थे पहलवान छदम्मी लाल जी। इस तरह से बहुत सी नाट्य संस्थाएं उन दिनों सक्रिय थीं। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारे अंदर इस नाट्य कर्म का प्रभाव होता चला गया, तो हमें प्रेरणा मिलती गई मंचन की, रंग कर्म की। मुझ पर तो प्रभाव पड़ता ही रहा है रंग कर्म का, साथ साथ मेरे साथी, मेरे इर्द गिर्द जो साथी थे उन पर भी रंग कर्म का प्रभाव पड़ता ही रहा है, और हम सब लोगों ने मिलकर एक नाट्य संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था बाल समाज। और फिर बाल समाज ने सिरासार में कई प्रदर्शन किए, जब उनमें से सीता वनवास बहुत ही सफल रहा था।
1: बस्तर की संस्कृति में रंगकर्म की भूमिका और परंपरा को याद करते हुए आप थे वरिष्ठ साहित्यकार श्री लाला जगदलपुरी। संस्कृति का एक अभिन्न अंग नाट्य विधा बस्तर में मनोरंजन का साधन होने के साथ ही साथ सांस्कृतिक चेतना का विकास भी करती रही है। बस्तर के रंगकर्म ने एक समाना देखा है, समय के बदलते अंदाज देखे हैं। वक्त के साथ साथ बस्तर में रंगकर्म ने नए नए आयाम तय किए। सन 1957 से 1963 तक का दौर ऐतिहासिक नाटकों का दौर था। इन नाटकों ने कुछ ऐसे कलाकार दिए जो आगे चलकर बस्तर के रंगकर्म के सबसे सशक्त स्तंभ साबित हुए। इस दौर में जहां श्री कृष्ण कुमार झा जैसे प्रतिष्ठित लेखक और निर्देशक उभरे, वहीं आज के वरिष्ठ और ख्यातनाम रंगकर्मी एम ए रहीम ने भी रंगमंच पर अपने अभिनय की शुरुआत की।
2: बस्तर के रंगकर्म की जहां तक मुझे जानकारी है कि सन 30 के दशक में श्रद्धेय लाला जगदलपुरी और उनके समकालीन कलाधर्मियों ने बस्तर के रंगकर्म को राजे रजवाड़ों और राजमहल की चहार दीवारी से बाहर लाया और एक नई रंग परंपरा का सृजन किया। फिर जाने क्यों 40 के दशक में 4-6 वर्ष एक चुप्पी एक खामोशी रही। मैं सोचता हूं कि शायद देश में स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला के विकिरण का प्रभाव था जो लोगों का ध्यान रंगकर्म से हट गया, ऐसा मैं सोचता हूं। फिर 50 के दशक में शांतिनिकेतन से शिक्षा प्राप्त सुकमा के देव बंधु और स्वतः स्फूर्त झा बंधु, मेरा मतलब डॉक्टर कृष्ण कुमार झा और उनके भाई साहब सक्रिय हुए। जाहिर है देश स्वतंत्र हुआ तो नाटकों में देश का, देश के इतिहास का गौरवगान हुआ। झा साहब ने कुछ अच्छे, बहुत अच्छे देश प्रेम और ऐतिहासिक नाटक लिखे और मंचित भी किए, और यहीं से मंच पर मेरा एक कलाकार की तरह जन्म हुआ। मैं तब महिला चरित्र निभाने लगा झा साहब के निर्देशन में, तब यहां कॉलेज नहीं था, और सन 61-62 में जब

0: संकर्म का कोई अर्थ तो होता नहीं और कोई जीवन भी नहीं होता। बेमकसद थिएटर ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह सकता। तो मुझे गर्व है कि भाई असगर अली, श्री नरेंद्र वर्मा जैसे अभिनेता और निर्देशकों के साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा उनके सानिध्य से, अच्छे नाटक किए। और हमारे बाद या कहें हमारे साथ साथ ही आए रईस भाई, जो अच्छे अभिनेता हैं और उनकी निर्देश की पकड़ भी अच्छी है। और हाँ, मेरी पत्नी मेरी रंग यात्रा में हमेशा साथ रहीं, आज भी हैं। फिर भाई मनोहर, ज्ञान, खलील भारती आए। मैं कह नहीं सकता कि हम कहाँ तक सफल हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं या कितने समर्पित हैं। और यूं भी देश में स्वस्थ अव्यावसायिक रंगकर्म का जो संघर्ष हुआ है या हो रहा है वो तो आप सब जानते हैं, और वो बस्तर में भी हुआ है और हो रहा है। और आज मैं कह सकता हूं कि बस्तर का रंगकर्म अच्छी बल्कि बहुत अच्छी हालत में है। हमारे नए साथी मनमोहन, खुर्शीद, बापी, विजय सिंह अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेरा सोचना है कि यहाँ के रंगकर्मी बामकसद स्वस्थ रंगकर्म करते रहें तो यकीनन बस्तर की एक अलग पहचान होगी थिएटर में।
1: बस्तर के रंगकर्म को बंगला नाटकों ने भी अनूठा योगदान दिया है। सन 1960 के आसपास बस्तर में बंगला और हिंदी नाटक समानांतर रूप से खेले जा रहे थे। बंगला रंगमंच से प्रेरित थिएटर को जरूरत समझने वाले युवा रंगकर्मी श्री सत्यजीत भट्टाचार्य अपनी बात कुछ यूं कहते हैं।
2: मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब मैं बहुत ही छोटा था तभी से हमारे बिल्कुल आसपास ऐसा परिवेश मिला थिएटर के लिए जिससे मैं थिएटर में बहुत शिद्दत से जुड़ गया। हमारे यहाँ जो पुराने रंगकर्मी थे जो उस समय उत्सव के तौर पर नाटक किया करते थे, और बंगाल से बहुत से ऐसे लोग जो थिएटर के अच्छे नाम थे जैसे विजय कुंडू, सुजीत कुंडू, निषाद कुमार दास गुप्ता, इनके जो थिएटर करने के स्टाइल था और जिस तरह लोग इनको देख कर इम्प्रेस होते थे, तो हम सभी लोग जो उसके आसपास उस माहौल में थे थिएटर को एक ज़रूरत समझकर उसके साथ जुड़ते चले गए। हमारे यहाँ नाटक बस्तर पे ऐसे तो उत्सव में हुआ करता था, पर अब बहुत दिनों से तकरीबन 15-20 सालों से यहाँ पर थिएटर अब अपने आप में एक उत्सव है। बस्तर रंगकर्म में जो काम अब हो रहा है ये इसमें यूथ लोग तो जुड़ रहे हैं, साथ में जो पुराने रंगकर्मी हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं। हम लोगों ने जो नाटक अब तक खेला, ऐसे तो लोग रियलिस्टिक प्ले करते हैं उसके बाद फिजिकल प्ले में आते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है फिजिकल प्ले करने से हमको ज़्यादा तामझाम या मंच व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सीधे सीधे फिजिकल प्ले में आया और उसका निर्देशन शुरू किया, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि फिजिकल थिएटर से, सिंबॉलिक प्ले से हम अपने बातों को बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंचा सकते हैं।
1: रंगमंच कला का वो प्रकार है जो विश्व को सौंदर्य बोधी दृष्टि से अभिनेताओं द्वारा दर्शकों के समक्ष नाटकीय क्रियाकलापों के द्वारा प्रदर्शित करता है। रंगमंच अपने आप में अकेली चीज नहीं है, उसमें कई बातें हैं जो अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसी ही कुछ बातों पर अपनी नजर डालते हैं युवा रंग निर्देशक श्री जी एस मनमोहन।
3: अभी जब तक सैटेलाइट मीडिया आया है, विजुअल मीडिया आया है, लोग ये कहते हैं कि रंगमंच मर रहा है, रंगमंच पर अटैक हो रहा है विजुअल मीडिया का। लेकिन मैंने देखा है कि बस्तर में इस चीज का कोई प्रभाव अभी तक मैंने महसूस नहीं किया। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि बस्तर में आज भी जब नाटक खेले जाते हैं कहीं पर भी, चाहे वो गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, यहां पर दर्शकों की कभी कमी महसूस नहीं हुई। और मैंने तो यहां पर कुछ जगह पर 2-2, 3-3 हजार दर्शक नाटक देखते हुए मैंने देखा है। और यह बहुत अच्छी बात है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में नाटकों के प्रति इतना लगाव दर्शकों में है। मेरा जो झुकाव है अभी फिलहाल, तो अभी वैसे तो काफी नाटक खेले हैं,

0: अभिनेता के रूप में भी और रंग निर्देशक के रूप में भी काफी नाटकों का निर्देशन किया है, लेकिन अभी फिलहाल कि भतरा नाट को हम हिंदी में उसका नाट्य रूपांतरण करके हम उसके मंचन यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र जो है, इसकी भौगोलिक स्थिति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य अपने आप में बहुत उन्नत है, और हम इस पूरी कला को, इस लोक कला को हम आधुनिक कला से जोड़ के दोनों में सामंजस्य बनाकर हम नाटकों का यहाँ पर मंचन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और एक बात जो मुझे प्रभावित करती है, मैंने बाहर का रंगमंच भी देखा है, लेकिन मुझे जो बात बस्तर में प्रभावित की, यहाँ के रंगकर्म के क्षेत्र में जिस बात ने प्रभावित की, वो है महिला पात्र। हम अक्सर सुनते हैं और भुगतते भी हैं कई रंग संस्थाएं, रंग निर्देशक, कि महिला पात्रों की कमी की वजह से कई नाटकों का मंचन नहीं हो पाता और महिला पात्र नाटक के नाम से मंच पर नहीं आ पाती या किसी भी रूप में कई कठिनाइयां आती हैं महिला पात्र को लेकर। लेकिन मैंने यह महसूस किया है पिछले कई सालों से कि बस्तर के रंगमंच में महिला पात्र की कमी कभी महसूस किसी रंग निर्देशक ने, रंग संस्था ने, रंग कर्मी ने नहीं की।
1: रंगमंच पर नाटकों की एक बड़ी जरूरत है महिला पात्र। इतिहास गवाह है कि चाहे सिनेमा में हो या नाटकों में, शुरुआती दौर में पुरुषों ने महिला पात्रों की भूमिका अदा की है। बस्तर का रंगमंच भी इससे अछूता नहीं रहा, परंतु यदि बाद के दौर में महिलाओं ने नाटकों में सक्रियता से भाग लिया या वर्तमान में ले रही हैं, तो इसके पीछे एक पूरे संघर्ष की कहानी है। वरिष्ठ महिला रंगकर्मी श्रीमती नसरीन मद्रवी याद करती हैं।
2: मैं याद करती हूँ उन दिनों जगदलपुर एक छोटा सा शहर ही था, बल्कि शहर तो बहुत बड़ा होता है, उससे भी छोटा एक कस्बा। बात सन 52-53 की होगी। उन दिनों बंगला रंगमंच पर मेरे पिता श्री सुकुमार चौधरी बंगला नाटकों में महिला चरित्र निभाते थे। इधर हिंदी रंगमंच पर मेरे पति श्री एम ए रहीम, श्री भीमराज दुग्गड़, श्री गौरी शंकर सोनी और भाई रईस हिंदी नाटकों में फीमेल रोल किया करते थे। तब मैं शायद मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। मुझे अपने पिता का और इन सभी कलाकारों का मंच पर अभिनय करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कहीं मुझे खीज होती भी थी कि ये हमारे रंगमंच पर महिला पात्र पुरुष कलाकार क्यों अभिनीत करता है। मुझे लगता था जैसे हम लड़कियों का अधिकार छीना जा रहा है, तो मुझे लगता था कि हम बस्तर की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, बस्तर एक पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा, फिर भी हम लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। दरअसल यहाँ पर उस वक्त नाटक में लड़कियों का आना, काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। वैसे मैं मंच पर नृत्य करती थी, बाद में मैंने विधिवत भरतनाट्यम सीखा और रंगमंच से जुड़ी रही, लेकिन मुझे कहीं लगता था कि मुझे नाटक में भी अभिनय करना चाहिए और उन नाटकों में जिसमें महिला और पुरुष एक साथ काम करते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बस्तर की लड़कियां आगे आईं और बंगला नाटकों में मीरा चौधरी सक्रिय हुई और मैंने हिंदी नाटकों में भाग लेना शुरू किया। पहली बार जब मैं नाटक में आई, मेरा ख्याल है 60 के दशक में, 64-65 में, तो बहुत विरोध हुआ समाज से, दोस्तों से, लेकिन मेरे पिता ने मुझे खूब प्रोत्साहन दिया और रंग कर्म का रंग मुझ पर इतना गहराता गया कि अब तक फीका नहीं हुआ। मैं आज भी मंच पर जाने की वही ललक और अभिनय करने का वही नशा, वही रोमांच महसूस करती हूँ।
1: बस्तर में रंगकर्म पूरी सक्रियता से जारी है। रंगकर्म से जुड़े युवा कलाकार, युवा निर्देशक सभी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कुछ नया देने की कोशिश में हैं। इनकी अपनी सोच है, विचारधारा है। बच्चों को रंगकर्म से जोड़ने और रंगमंच के क्षेत्र में अध्ययन की गंभीरता पर दृष्टि डालते हैं अंचल के युवा रंग निर्देशक श्री विजय सिंह।
3: थिएटर जो है एक पूरा टोटल वर्क है, बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत फलक है थिएटर का। इस मामले में, इस दृष्टि में मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो रंगकर्मी हैं, बस्तर के जो रंगकर्मी हैं, उनके पास अध्ययन की बहुत ज्यादा कमी है। लोग काम बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, इतना काम मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमको जो थिएटर में जो काम करना है वो कई बार हम नहीं कर पाते। हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जैसे यहाँ 2-3 संस्थाएं हैं, मैत्री संघ है और जनरंग है, सृजना है, इप्टा खुद हम लोग की है, सूत्र है, हम सारे तो कर रहे हैं। और इस लिहाज से मध्य प्रदेश के अंदर बस्तर काफी अच्छा है, समृद्ध है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ नाटक लगातार खेले जा रहे हैं। नाटक कोई भी जन समुदाय से जोड़ना है तो उसके लिए निरंतर या सक्रियता बहुत जरूरी है, वो बस्तर के अंदर है। एक शुरुआत यहाँ अच्छी हुई है जगदलपुर के अंदर, वह कि बच्चों को नाटक से जोड़ा जा रहा है। तो इससे लगता है कि जो आने वाले जो दिन है हमारे नगर के लिए या बस्तर अंचल के लिए, वो समृद्ध होगा।
1: बस्तर में मुख्यालय जगदलपुर के साथ साथ रंगमंच में पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय हैं कांकेर, कोंडागांव, बैलाडीला वगैरह। कोंडागांव में रंगकर्म से गहरे जुड़े और नुक्कड़ नाटकों में अपनी दिलचस्पी रखने वाले श्री मनीष श्रीवास्तव कहते हैं,
4: मैं नाटक के क्षेत्र में कांकेर से जुड़ा। कांकेर में फर्स्ट ईयर पढ़ता था, उस समय वहाँ नुक्कड़ नाटक गिली गिली फू से शुरू किया। उसमें मैं एक छोटा सा रोल मेरे को मिला था, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट हुआ मेरा नुक्कड़ नाटक में। मतलब एक खुलने के लिए आदमी को डायरेक्ट पब्लिक फेस करना बहुत जरूरी होता है, तो मैं पहले नाटक से ही खुल गया था। उसके बाद कोंडागांव आया, कोंडागांव में इप्टा का गठन किया। यहाँ आके हमने बरगद बरगद कुत्ता से स्टार्ट किया, वो भी नुक्कड़ नाटक किए। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते नुक्कड़ नाटक पे। और इसी बीच हम लोग नाट्य उत्सव करवाए, नाट्य उत्सव बस्तर जिला नाट्य उत्सव 2 बार करवाए, तो उसमें बस्तर जिले की जितनी संस्था है सब आई थी और सब ने सराहा उनके नाटकों को भी, हमारे नाटकों को भी सराहा। और कोंडागांव में ये इस टाइप का कार्यक्रम पहली बार हुआ था, तो पब्लिक अब ऐसा पब्लिक के दिमाग में बन गया कि नाटक के प्रति पब्लिक के मन में उत्सुकता पैदा हो गई है।
1: बस्तर में लोक नाट्य की एक समृद्धशाली परंपरा रही है। लोक नाट्यों में भतरीनाट ने अपनी कला से हर देखने वाले को, सुनने वाले को प्रभावित किया है। वरिष्ठ साहित्यकार श्री लाला जगदलपुरी भतरीनाट से अभिभूत होकर कहते हैं,
5: जहां तक बस्तर के लोक नाट्य का सवाल है, शुरू से ही ये लोक नाट मुझे प्रभावित करता रहा है। इसका कारण खास ये है कि इसमें 3 प्रमुख आकर्षण है। पहला आकर्षण तो उसकी कथा वस्तु का है ही, जो पुराणों से ली जाती है, लेकिन लोकनाट का प्रमुख आकर्षण ये है कि इसमें संगीत की प्रमुखता तो होती ही है, साथ साथ नृत्यात्मकता भी होती है और अभिनय प्रभावित करता ही है। इस तरह से इसमें आकर्षण की त्रिवेणी होने की वजह से लोकनाट बहुत प्रभावित करता है। वैसे लोकनाट तो और भी हो सकते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन सर्वप्रिय लोकनाट अगर बस्तर का कोई है तो भतरानाट ही है। यहाँ का जनमानस तो मनोरंजन धर्मी जनमानस है, उसको मनोरंजन चाहिए हाँ, भद्रा लोक नाट से रात रात भर

0: जनमानस का वो मनोरंजन मिलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहां भी जिस गांव में भी लोकनाट चलता है, लोकनाट का आयोजन होता है, उसके आसपास के जितने गांव हैं लगभग खाली हो जाते हैं रात में, और इस प्रकार खाली हो जाते हैं कि चोरों को कभी कभी मौका लग जाता है चोरी करने का।
1: रंगमंच को लेकर रंगमंच से जुड़ा हर आदमी अपनी तरह से सोचता है। एक कलाकार अपने ढंग से अनुभव करता है, एक निर्देशक का विश्लेषण कुछ दूसरा होता है, दर्शक के जेहन में जुदा बातें होती हैं, तो लेखक की अपनी सोच होती है। नाटकों में लेखक एक बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को निभाता है। एक कलाकार की हैसियत से हल्बी नाटकों से जुड़े और बाद में नाट्य लेखन में आने वाले व्यंग्यकार सुभाष पांडे कहते हैं,
2: मुझे लगा कि मुझे नाटक करना चाहिए, मैं अभिनय से भी जुड़ा। तब मैं हल्बी रंगमंच से बहुत प्रभावित हो चला था और हल्बी प्रस्तुतियाँ जो होती थी उसमें मैं भाग भी लेता था। मैंने कई बार कलापथक के कलाकारों के साथ अभिनय किया। हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं हल्बी के, मोहम्मद अयूब खान, वो उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। हल्बी रंगमंच में जुड़ने के साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, और सौभाग्य से जब जगदलपुर में आकाशवाणी की स्थापना हुई तो मुझे अवसर मिला, मैंने आकाशवाणी के लिए भी नाटक लिखे। तब ये बातें होने लगी कि क्या यहाँ की कथा वस्तु जो मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे हिंदी रंगमंच के समकक्ष प्रस्तुत किया जा सके नाट्य प्रस्तुति के जरिए। दोस्तों के कहने पर और जहाँ तक हमारे जो सीनियर्स हैं जैसे एम ए रहीम साहब, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आप कुछ लिखें इस संबंध में। मैंने एक जो नाटक लिखा अभी हाल में, मैंने मुंद्रा माझी, यद्यपि ये मुंद्रा माझी आंचलिक लोक नाट्य है, इसका मैंने केवल हिंदी रूपांतर ही प्रस्तुत किया है, ये सराहा गया, यद्यपि इसमें अनेक कमियां हैं।
1: बस्तर में रंगकर्म का अपना अलग अंदाज रहा है। मनोरंजन के साधन के रूप में बस्तर में रंगकर्म की भूमिका बहुत पुरानी है। बस्तर के रंगकर्मियों ने अपनी साधना, निष्ठा और सृजनशीलता से बस्तर के रंगकर्म को ऐसा रूप दिया जो और कहीं मुश्किल से ही दिखता है। इसी रूप का जिक्र करते हैं रचनाधर्मी श्री हिमांशु शेखर झा।
3: मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो रंगमंच किया जा रहा है वो एक विशेष किस्म का रंगमंच है। ये न तो व्यावसायिक है और न ही शौकिया किस्म का रंगमंच है। यह अव्यावसायिक श्रेणी में लाया जा सकता है। अव्यावसायिक रंगमंच के बारे में अगर हम कहें, खासतौर से बस्तर के संदर्भ में, तो यहाँ के नाटकों को हम अगर सिलसिलेवार देखते हैं, पिछले 30-32 सालों या 40 सालों के अंतराल को लगातार हम महसूस करते हैं, तो लगता है कि यहाँ का रंगमंच एक लोक धर्मिता और आधुनिकता के बीच का रंगमंच है। इसमें जहाँ लोक रंजक तत्व भी हैं, वहीं आधुनिक रंगमंच के सारे उपकरणों उपस्करों का एक विदोहन भी किया गया है। इसी प्रकार जहाँ साफ गोई है वहीं मनोरंजन भी है, लोकरंजन भी है। अगर हम इसे और भी कहें साफ तौर से, तो मुखरता और नफासत का एक अद्भुत संगम इसमें मिलता है। इसी तरह सहज सादगी और कलात्मक सौंदर्य यानी रंग बिरंगापन भी इसमें हम देखते हैं, इसका अद्भुत मेल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर का रंगमंच एक नए प्रकार की रचनाशीलता को जन्म दे रहा है। यदि इसका सही मूल्यांकन और रेखांकन किया जाए तो संभवतः देश में एक अलग ही इसकी जगह बन सकती है।
1: बस्तर के रंगकर्म ने अपने अब तक के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। क्या कुछ हुआ, हो रहा है, होना चाहिए, ये निसंदेह समीक्षा का विषय है। कवि और समीक्षक श्री मदन आचार्य एक दर्शक की हैसियत से महसूस करते हैं,
4: क्योंकि बस्तर एक आदिवासी और पिछड़ा इलाका है,

0: यहाँ हमारे जो नाटककार हैं उनके सामने विशेष दायित्व है। बड़े शहर का दर्शक अपेक्षाकृत कुछ जागरूक होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो वो जिस मानसिकता में नाटक लिखे गए हैं उन्हें वो समझता है और उसे प्रभावित होता है। लेकिन हम एक छोटे से कस्बे के लोग और साथ ही साथ ऐसे परिवेश से संपृक्त लोग हैं जो यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति और इस तरह के जो भोले जनमानस से संबद्ध हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, तो क्या वो जो नाटक हम करते आ रहे हैं ये नाटक क्या इन लोगों को प्रभावित कर सकता है? ये हमारे सामने विचार का एक मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है कि नाटक तो हमारे यहाँ बहुत खेले गए और अच्छे नाटक खेले गए हैं। गिनी पिग है, थैंक यू मिस्टर ग्लाड है और शुतुरमुर्ख है, इस तरह के कई बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन ये सारे नाटक मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे आदिवासी जनमानस को वो संवेदित कर सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ नाटक लिखने की कोई परंपरा विकसित नहीं हुई। पिछले 30 सालों में बमुश्किल जो नाटक लिखे भी गए हैं या तो इतिहास से कुछ एक नाटक उठाए गए हैं या कुछ कहना चाहिए व्यंग्यात्मक शैली में कुछ नाटक लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ के जो जनमानस है, यहाँ की जो प्रासदिक स्थितियां हैं, उन चीजों को लेकर, जो सामान्य सुख दुख हैं, उन चीजों को लेकर कोई विशेष नाटक नहीं लिखे गए।
1: रंगमंच सृजन क्रिया का आईना है। सृजन क्रिया रंगमंच को निरंतर प्रभावी बनाए रखती है। बस्तर के रंगकर्मियों की सृजन धर्मिता ने एक नई राह चुनी है जिसका प्रसार बहुत जरूरी है ताकि बाढ़ जोहते गांव और जंगल भी रंग दर्शन कर सकें।

अभी आप सुन रहे थे रूपक बस्तर का रंगकर्म। लेखन, वाचन और प्रस्तुति थी के परेश की। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

0: घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब फाय गांव करी बहन मन के दीदी मन के जहरिया संगवारी मन के मैं मैनमती करें से जुहार और फिर रेडियो कटा कटा बसलो नन नानी पीला मन के मोचे बाटले खूबे खूबे मया। तो देखा बहन मन आजकल तो घाम दिन चले से ने और फिर हम जो बहन मन घरे रहून का एक ठन बूता मन के बोले करस होत मंतर के भी कभी घाम ने बोले जाऊ पड़ू ची आए बूता रले ने। तो असन समय खिंडी का आप लोग जोन परिवार जो देखा रखा बोले कर तो रहा है हन मन जो स्वास्थ्य जो बोले देखा रखा कर तो रहा है और फिर संगे संगे घर ने जो नाम जो रतो बसतो गोड बात बोलो ने हम जो जोन घर जो माहौल है हुन बोले खूबे अच्छा संगा तो कोशिश करते रहे बोलो ने जसन की कोनी कोनी घरे नानी नानी गोट का जे खूबे झगड़ा डंड लड़ाई हो जासत नहीं तो असन गोट के आम के धुरिया संगा तो रहे बोलो ने घर ने सफा लोग मिलून मिसुन मया ने रतो वाट करते रहे और फिर सब बोलो ने एक दूसर जो मदद कर तो हिसाब ने गोट बात कर तो और फिर सहयोग कर जो भाव रख संगा तोर और पीला मन संगे मया ने रतोर सपा लोग मन मया ने रतोर ये असन गोट मन के हम जो घर परिवार ने रले हम जो जोन पीला मन ऊपर बोले अच्छा प्रभाव पड़े से और हुन मन मले हरिक ने रह सत। तो ये चो काजे हमें नानी नानी गोट के हमें ध्यान संगाऊँ कि पीला मन जो पूरे बड़े लोग के भय बोले झगड़ा लड़ाई नहीं करो ये सब ले पहल गोट है जैके पीला मन हुन जाने अनजाने सीखुआत ने हम जो मन ने हुन बस उन जाए से कि हम जो बड़े लोग मन असन लड़ाई झगड़ा हो सत जाले हमें बोले तो करुक सकूँ असन हुन मन विचार कर सत। तो ये काजे पीला मन जो पूरे के भय बोले झगड़ा लड़ाई नहीं होतो रहे हुन मन के अच्छा अच्छा गोट सिखातो रहे बोलो ने आज हम जो जोन बस्तर राज ने जोन कहानी चो जोन रह से कहानी सांगतोर तो असन पीला मन के कहानी बोले अच्छा अच्छा बीती जोन लोक कथा मन रह से हुन के सांगतो रहे जोन थाने ज्ञान ध्यान जो गोट रहो और फिर संगे संगे हम के नानी नानी वाट करून हम जो घर जो वातावरण के हमी सकारात्मक और अच्छा बना सकू जसन की रोजे दिन हुन एक हार बोले सफाए परिवार चो लोग मन मिलून मिसुन संगे बसुन खातोर मन बोलो ने खातोर आए एक के संगे बसुन बाती गोड बात करुन करुन आ फिर संगे संगे जोन गोड बात करतोर बले जरूरी आए सफाए लोग एक दूसर संगे आप लोग जोन दिन भर चो जोन बले काम बूता करला उनके घरे ये उन भाती घर चो परिवार चो लोग मन के सांग तो रहे ये चले भया बले मया बाढ़े से और फिर मंजी मंजी ने आम चो तिहार बाहर होए से जाले हुन बेरा बले आमी पीला झीला मन का जे अच्छा अच्छा दिनिस मन के हुन खाओ तो जिनिस मन के बनाउन हुन मन के खुआ तो रहे और फिर संगे संगे हम लोग आम चो जोन परिवार चो जोन सगा मन हेथा उथा रह सोत हुन मन के बले हाक देउन घर ने गोटोक मया चो और गोटोक हरिक चो माहौल आमी बनाउ सकूँ और फिर संगे संगे हम जो परिवार ने कोनी डंड ने आसे जाले हुन जो सेवा करतोर बले जरूरी आए और एक देखुन बाती हम जो पीला मन बले सीख दे कि हम के बड़े लोग मन के सेवा बले करतो रहे जो डंड ने आसे उनके मदद करतो रहे ये गोट मन का है कि पीला मन देखुन देखुन सीखुआत बले। तो यही काजे हम के घर ने परिवार ने रहुन भाती कहीं बोले जो गोट है उनके मया ने उनचो उपाय करतो और उनचो समाधान करतो कोशिश करतो रहे जे चले पीला मन बले अच्छा संस्कार के सीख दे और फिर जैसा नामी कहे बोले जाऊँ से तो बड़े लोग मन चो पाए पड़ू से ने तो उनके देखुन पीला मन बोले पाए पड़ सोत और ये गोट जो है ना है उनके सीखा तो सब ले मूर जो ना है हम चो बहन मन चो रहे से उन बहन मन जैसन आप लोग पीला मन की सीख दे दे संस्कार दे दे उन मन उसने सीख हुआ। तो यही काजे परिवार चो जितरो हरिक ने माहौल रहे से उन घर परिवार चो लोग मन चो गोट बात और मया ने रहो कारण ने हो से। तो देखा ये गोट बात तो मैं सांगते रहे दे मंतर यदि गोट गोट मन और से आले गोट मन के सुनन देखो
1: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तले दुरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तले खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दुरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ, तो बहन मन ये तो रहे गोट मन, और फिर देखा मैं गोट संगे संगे गीत बले आन ले से, और फिर संगे संगे ज्ञान चो गोट मन बले हेता सांगते रहें दे मंजी मंजी ने। मंतर देखा हम चो जुन मूर आए बोलो ने हरिक अमी होलू, घर ने सफाई माहौल अच्छा आसे, सफाई लोग मया ने आसो, तिहार बहार आए हरिक ने आसू, या लिखा है कि हम के गीत सुनुक भाव आए, और गीत बोले गाऊक बोले भाव आए ने। तो असनी काजी मैं बोलते रहे कि तुमन मन काजी बोले मैं गोटो गीत आन ले से, तो आले गीत के सुनु और ये गीत के गाव लासोत गेल मनी देवी और हूं जो संगवारी मन, आले सुनू ये गीत की।

0: हाँ, तो बहिन मन का सुंदरी गीत रहे, और ये गीत के गावते रहत गेलमणि देवी और हुंचो संगवारी मन। तो देखा है गीत गोविंद बले होली मानतर माई जसन बलते रहे कि हम जो बहिन मन घरे रहून बाती भले कई ठन जोन गोठ मन के और काम बुता मन के करुआत, तो असनी ची हम चो लगे गोटक भेंटवार्ता से जोन थाने स्वभाव बघेल संगे भेंटवार्ता से, और ये मन जो ना ये मन संगे गोट बात करे सोत बलबीर सिंह कच। तो वाले सुनून दखू ये मन काय कला ने काय बुता ने पारंगता सोत, और काय काय सीख जो गोट मने था गोठिया दे, वाले सुनून दखू।
1: घर द्वार सुन तो बहिन मन आज आमतान फिर गोटुक बहिन इला से ये मन बोले स्व सहायता समूह चलाए सोत, तो सब ले आगे तुझ नाव और गाँव चो नाव सांग।
2: मुझे नाम शोभा वगैला है।
1: अच्छा,
2: मुझे गांव का नाम है परचन पाल।
1: अच्छा,
2: शिल्प ग्राम परचन पाल निरुआ।
1: हाँ हाँ, बोले तुम चू समूह आसे।
2: हाँ, समूह आसे।
1: काय नाम है स्व सहायता समूह?
2: समूह नाम जय माँ सरस्वती आए, हुताचो अध्यक्ष आए मैं, और ग्राम संगठन परचन पाल भीतर आए तो हुताचो कोषा अध्यक्ष आए।
1: अच्छा, हाँ हाँ, कितलो बरक कसन हो जाल तुम चो समूह बना लो?
2: समूह हम चो 7 साल हो से।
1: अच्छा, समूह ने कितलो लोग आसास?
2: हम जो समूह ने 12 लोग आसू।
1: 12 लोग?
2: हाँ।
1: अच्छा, बोले समूह ने बोले तुम सपाई मिलून बाती अभी काय काम चले से जाल तुम जो?
2: समूह ने सब नहीं करूं काम, कुछ लोग करूं से।
1: अच्छा,
2: जैसे ना हम ही मैं पहले ले सीखू रहे जो हाथ सिल बीती काम आए।
1: अच्छा,
2: हाँ, समूह जुड़ तो पहले ले सीख ले से उनके मैं करते रहे पहले, उनसे बाद में समूह जुड़ ले। समूह जुड़ तो बाद में फिर मुझे समूह लोग कुछ लोग के मैं सिखा ले।
1: अच्छा,
2: उताले उन मन संगे काम करूं से हमें।
1: अच्छा, हस्तशिल्प भले ने काय जिनिस बनाते बीती काम
2: है जो आए रान बांस बुलवात हूं जो रस्सी आए उनके चोटी गुतवाऊ बेनी, उनके बेनी गुतुन बाती हम अलग अलग सामान तैयार करवाऊ। जसन डाइनिंग टेबल ने संगत बीती मेट आए, टी कोस्टर आए, और जसन मंदिर जातो का जे पूजा टुकना अगरा बनवाऊ, और घर सजा तो सब सामान बनवाए।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: हाँ, तो जैसन की रान बांस बल्ले से कहाँ मेरे से आसे तुम चो बाटे?
2: रान बांस बल्ले हम चो परचन पार लगे गांव आसे कोलचूर।
1: अच्छा,
2: भर नहीं बोलून भाती।
1: हाँ,
2: हुता फॉरेस्ट डिपार्ट बाटले पौधा लगा ला सोत।
1: अच्छा,
2: हुता चो जेंट्स मन का तो समूह बना ला से हुन मन रेसा निकरवात।
1: अच्छा,
2: हुन थान ले हम ही गेनून बाती आनुआ।
1: अच्छा,
2: और हम ही बनावा।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: बोले रेसा तुम घेनुन माथे आंसा।
2: हाँ,
1: कसन हिसाब ने आंसा जलू था?
2: आजकल पहले तो रेट कम रही, मच बनात बेरा 17 रुपया 20 रुपया रहे, एबे तो 200 रुपया होली हुन।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: 1 किलो?
2: 1 किलो।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: हाँ।
1: तो बोले ने ये चुका जो बोले हाथे से बनावा कि कहीं ऐसा
2: नहीं, हाथे से बनावा।
1: अच्छा,
2: हाथे बेनी गातु।
1: हाँ हाँ,
2: उनके बाद ने सुई धागा ने जसन हमके डिजाइन देते रहे उसन डिजाइन दे।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: बल्ले डिजाइन वगैरह बल्ले तुम ही खुद हिसाब ने बनाए सास कि कोनी असन मांग बल कर सो तसन?
2: डिजाइन तो हम खुद ले बनावा, और उनके कोनी दूसरा डिजाइन जरूरत रहे से तो हुनमन सांग सो तो हम हुनमन को उन बीतबल बनाउन भाती दे।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: हाँ हाँ, तो ये जो जसन की बना लो बीती जो सामान है बोले भे।
2: हाँ,
1: बल्ले तुम बिक्री भांजरी चो कसन हो ऐसे?
2: बिक्री भांजरी तो हम चो हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने जुड़ ले से हुताले बाहर बाहर परदेश ने अगर जाते रहूं।
1: अच्छा,
2: जसन कोरोना स्टार्ट होली उदल दायल बाहर नहीं जाऊं। एबे जसन तीरथगढ़ आए चित्रकोट ने बाहर ले लोग ऐसोत होता हम ची असन समूह लोग आसोत तो हुनमन हम चान ले घेनुन भाती हुनमन दुकान लगाउन बिकसोत।
1: अच्छा,
2: तो हुता सप्लाई करूं से हमी।
1: अच्छा,
2: और कोनी कोनी जान लो लोग का है घूमते घूमते रोत जगह नहीं हुआ तो बनात बेरा दुकवात तो हुनमन बल घेनुन नहीं हुआ।
1: अच्छा,
2: और उनसे पहले तो जाते रहू दिल्ली बॉम्बे सब जगह बिकतो का जाते रहू।
1: अच्छा,
2: एबे नहीं जाऊं।
1: बल्ले हस्तशिल्प विकास बोर्ड बाटले?
2: हाँ,
1: अच्छा,
2: बाटले जाते।
1: हाँ, बल्ले कहाँ कौन कौन ठान ने मतलब अब तक बिकुक नहीं ला जाले माटे?
2: रायपुर तो जसन हम जो राजोत्सव आए और जगार बोलून भाती गोटक मेला लगवाए साल ने 2000 हम चिट्ठी पाट बाटले जाऊं। और समूह बाटले सरस मेला अगर लगवाए दुरुग बिलाई ने हुता हुता जाऊं।
1: अच्छा,
2: और जसन दिल्ली आए भोपाल सूरज कुंड मेला काय काय हुआ है हुता हुता बोले गेलू से।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: हाँ, पहले जसन की ये ताल जातो का जे उतार तोर फिर तुम चो पूरा खान पान सब चो जोन व्यवस्था कोन बाटले होते रहे
2: उन शासन बाटले देवात उन हॉस्पिटल विकास बोर्ड बाटले ने उरुवात उन मन देवात
1: अच्छा
2: हमके गाड़ी किराया देवात खातो काज देवात और हम चो ज्यादा सामान हम जितरो हम जो भाई बहन मन जाऊ हम चो बस्तर चो कलाकार मन उन सब लोग काजे ज्यादा सामान हलो ने ट्रक बुक कराउ देवात
1: अच्छा
2: होता डालून देतरा यार हम ही बस ने ट्रेन ने जाऊ
1: अच्छा
2: फिर उता गेलो दुकान बनाऊ देवरुआत डिपार्ट बाटले हम दुकान ने हम दुकान लगाऊ और 8 दिन 10 दिन 15 दिन चो रुआ तो होता बिकुआ और हम चो पैसा धरून हम ये हुआ
1: अच्छा बोले ने बिकलो बीती जोन पूरा पैसा तुम ची हो
2: हम ची आए
1: अच्छा हाँ। बाकी पूरा जोन खर्चा बोले वे हुन विकास बोर्ड बाटले
2: विकास बोर्ड बाटले हाँ।
1: बोले तुम चो बाटले कहीं खर्चा करू
2: नहीं पड़ नहीं
1: तो दक इतलो अच्छा बोले काम आए बोले वे ये भी बोले ने जसन बोले स्थित गढ़ दर्शनीय स्थल मन ने दक तो था टान हाँ, मन ने आसे ये भी बोले तुम चो काम चालू आसे
2: हाँ चालू आसे ये भी बोले मौके सामान छाड़ तो काम आसे जाऊन अच्छा, भाती
1: अच्छा
2: हाँ हाँ हम 12 महीना चलू आए होता
1: अच्छा हाँ, बोले कहीं साधन आसे उन मन के छाण तो मतलब उन बट काय ने ऐसा जसन चित्रकूट नेत्र ले तीरथ गोड़ नेत्र लेने
2: हम से सामान ज्यादा तो हो न आए मतलब मोटरसाइकिल ने बोले हुआ हम चो घर लोग आसत ने उन दीवार
1: अच्छा
2: रसनी बारिश दिन दिने गाड़ी बल नहीं हुआ
1: अच्छा
2: हाँ नहीं भीजो बोलते
1: बोले ज्यादा बड़े भारी वजन बल नहीं रहे से अच्छा
2: कसन बोला हम सामान 10-20 हजार चो सामान दुई ठन झोलान बोले हुआ है
1: अच्छा
2: सुना
1: तो दक ये सांग जोन जूट है बोलू रानबाव से जोन चीज बनाए साथ आजकल तो पूरा कलर वगैरह बोल कर हुआ तो ये सब चीज बोल करा
2: हाँ, कलर करूँ
1: अच्छा
2: हाँ जैसन बोरा थान मार का और कलर हुआ तो उन बीती डोबा ने मिरुआ कलर उनके घेन उन्नी हुआ उनके गर्म पानी करूँ आऊँ थोड़े नमक डालू आऊँ और उन रसी के उता चोबड़ून भाती निचड़ून भाती सुखाऊ
1: अच्छा
2: सुखलो पाचे फिर हम ही उनके बेनी गातू आऊँ
1: अच्छा
2: और बीच बीच ने डिजाइन मन दे
1: अच्छा सब अलग अलग रंग बनाए
2: हाँ अलग अलग रंग बनाऊ
1: तू मतलब उखड़े नहीं नी करे रंग
2: असन थोड़ा थोड़ा पानी भीज लन तो नी निसके थोड़ा ज्यादा होलो ने निकरू है उतरो पक्का रंग नो है
1: अच्छा
2: और ज्यादा घाम ने संगालो ने धीरे धीरे कलर पाचे उगड़ुआ है
1: उगड़े से अच्छा तो ये चो जोन सामान मंचो अलग अलग जोन सामान मंचो है ये चो रेट कीमत बोले न कसन हो से जाने
2: रेट बोले हम 20 रुपया तक ने बनाओ से 20 रुपया ने गुड़िया ये हुआ है उनके 20 रुपया ने बनाओ से फिर 50 रुपया ने हुआ है उनके बाद ने 100 रुपया है 150-200-300-500 तक बनाऊ हम जसन हम चो मांग के मांग चो
1: हिसाब ने अच्छा
2: 500 तक चो बनाऊ
1: अच्छा तो ये जसन की महिला पूरा समूह लोग जसन क्यों बना साज तो बोले तुम घरे बनावा कि कहीं ठान आसे सरकार बाट से दिला से
2: सरकार बाट ले तो ये बे बने से नहीं बन ली से मैं कलेक्टर ऑफिस ने मीटिंग गे रहे अब मांग कर ले तो ये बे गोटो घर बने से
1: अच्छा।
2: नाजुन बने तो ये घरे घरे करूं से
1: अच्छा ये घर घर कर
2: हाँ
1: बोले ने ये तुम चो का सुविधा मेरे दसन लागे से
2: सुविधा मिरली से मतलब पूरा नाजुन होए
1: अच्छा तो ये सांग शोभा बहन जैसन की ये चुकाज कहीं पूंजी वगैरह बोले कहीं सरकार बाटले बैंक बाटले कहीं पैसा कोड़ी बोले
2: हाँ पूंजी तो पहले हम ही खूबे पहले अकला करते रहे तो मैं इधर ये बाटे खादी बोर्ड बाटले लोन धर रहे थोड़े माँ हम चल पूंजी बनाऊ मैं करते रहे तो पाचे समूह जुड़ ले समूह जुड़ तो के हम के आम ची जमा कर लो पैसा बोले जरूरत हलो ने उठाते रहू उठाऊ और बैंक लिंकेज बोले मिरली और हम जो काम के दकुन बाती और योजना मन नहीं कर ली हम समूह बांट ले
1: अच्छा।
2: जैसन SVP NRTP बोलसोत उन योजना बांटले बांटले पैसा मन हम ही धरते जाऊं से
1: अच्छा
2: हाँ
1: तो ये पूरा पैसा जैसन की पटक पड़े की
2: नहीं पटाऊ का
1: पटक
2: हाँ
1: तो कहीं छूट
2: कम ब्याज ने मिरवाए
1: अच्छा कहीं छूट बोले मिरे की पूरा पटक पड़े जाल
2: होता तो छूट नहीं मिरे लेकिन कम ब्याज आए
1: अच्छा ब्याज कम है बोले ने ज्यादा भार नहीं पड़े
2: नहीं पड़े
1: तो ये और काय बोले से एक ठन ग्राम सभा काय ग्राम संगठन चो होता काय पद है
2: बोले होता चो कोषाध्यक्ष है
1: कोषाध्यक्ष अच्छा ये ग्राम संगठन ने काय होए से
2: ग्राम संगठन बोलो ने हम चो जसन दस दस समूह बनालू से उता दस समूह एक ग्राम संगठन हुआ है।
1: अच्छा, दस समूह चो गोटक
2: ग्राम संगठन हुआ है। हुता हम चो महीना नेखार मीटिंग हुआ है, जितरो बोले हम चो पैसा धरलू से उता किस्त ब्याज आपसी हुआ है, फिर उता कुछ कुछ जानकारी और दीदी मने वात हुता समझावात योजना चो बारे ने, तो हुन मन जानकारी देवात, तो हुताले हमी काकी ऋण चबल जरूरत रहे से तो हुता मांग कर रुक सकू।
1: अच्छा,
2: उनका जूता बैठक हुआ है।
1: अच्छा, ग्राम संगठन,
2: ग्राम संगठन ने।
1: हाँ, तो बोले गोट की पंचायत चो रहे से कि अलग अलग पंचायत चो समूह?
2: गोट की पंचायत चो आए।
1: अच्छा,
2: ग्राम संगठन।
1: अच्छा, एक पंचायत ने कम से कम दस समूह।
2: हाँ,
1: तो ये समूह ने बोले जैसे की मीटिंग बोल हुए से प्रशिक्षण बोल हुए से। अच्छा, बोले तु कोनी ताने असन कहीं प्रशिक्षण वगैरह तु गेल से? नहीं तो धर ले से?
2: नहीं, मोचो काम चो बारे में धर ले से, बाकी हाँ। दूसरा चीज बाटे मैं नहीं भीड़ ले से।
1: अच्छा,
2: हाँ। हाँ। मैं जोन काम करवाए नहीं।
1: हाँ।
2: जूट बीती हुता मैं पहले 2004 ने ट्रेनिंग धर ले से।
1: अच्छा,
2: यहाँ सिल बाट ले।
1: कितलो महीना चुरली जाले
2: छ? उदल दाय 6 महीना चुरली, एबे 3 महीना होली से हुनी बीती ट्रेनिंग, एबे मैं खुद सिखाए से दूसरा के।
1: अच्छा, बल्ले तु मास्टर ट्रेनर दूसर लोग के सिखा?
2: हाँ।
1: अच्छा, तो सिखात का जे बोलू बे कुन सरकार बाटले ची होय से होती तू?
2: हाँ, हासिल विकास बोर्ड बाटले बोल हुआ है।
1: हाँ।
2: और हम चे भारत सरकार बाटले, वस्त्र मंत्रालय बोल सत हुन ऑफिस बाटले बोले मिरुआ है
1: मेरे से।
2: हाँ।
1: अच्छा, तो ये तो तान तू कहीं मेहनत वगैरह मेरे से होती?
2: मिरुआ है।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: मेरे से
2: मिरुआ है और सिख लोग के बोले होता मिरुआ है
1: मेरे से। अच्छा, बोले देते कितलो दिन चु ट्रेनिंग देते रहे से?
2: होता 2 महीना चर हुआ है।
1: अच्छा, 2 महीना जो
2: 2 महीना चर हुआ है। हाँ। और उन जे के राजस्त्री राष्ट्रपति पुरस्कार मिरली से तो हुन शिल्पी के 30,000 रुपया महीना ने देवात।
1: हाँ।
2: और नहीं मिर लो के 15,000 रुपया देवात।
1: अच्छा,
2: सिका तो काजी।
1: अच्छा, तो ये अच्छा सुरता करा लिस बोले तुम जो समूह के नाल तू की कहीं असन पुरस्कार वगैरह बोले मिरली से?
2: नहीं, अब तक तो नहीं मिरली से, एक 2 असन पोटा ले शायद मोचन को मिरली शायद नहीं होली से।
1: अच्छा।
2: हाँ,
1: तो
2: लेकिन आशा आशे के भी बोले मेरे दे
1: मेरे दे बोले। हाँ हाँ, बोले ने काम अच्छा करूँ दका लेने तो मतलब उनचो फल मेरे दे छी। हाँ हाँ, तो दक शोभा भाई ने सांग बोले ने ये जो काम आगे तो सन नहीं करते लेस कहीं नहीं करते लेस, तो पढ़ा लिखा बोल कित लो सन पढ़ लिस साले?
2: पढ़ा लिखा तो मैं नहीं पढ़े, छोटे बेरा पहले दूसरी जित्र बोल पढ़ ले और उनसे बाद में नहीं पढ़े, जैसे गाँव च कुली भूति जोन बोल आए कर ले।
1: अच्छा,
2: पहले तो 16-17 साल ने शादी कर देते रहा, फिर पीला झीला मन वाला दुई जान, तो फिर उनके बाद ने फिर इस काम के सीख ले।
1: अच्छा, ठीक है, तेबले बल गोटो एक गोट अच्छा हुनर के तू सीख ले बोलू भी। तो बोले ने जसन की तू सीख तो के बोले ने पैसा कोड़ी हिसाब ने घर परिवार काज कसन लागे जाले?
2: मके तो खूब अच्छा लागे से अबे एक काम के सीख ले, समूह ने बल जुड़ ले तो मचे घर परिवार ने जोन बोले जरूरत है बाल बच्चा काजे जब चाहे तब मिले से बोले, और घर खर्च काज बल जोन बले आए मग जरूरत पूरा होए से, मैं काम करे से तो बेफिक्र आसे।
1: हाँ हाँ,
2: मतलब को की मांगो के नहीं पड़े,
1: नहीं पड़े। हाँ।
2: बेटा कमाउन आनलन दे दे, नौला आदमी कमाउन आनलन दे दे, ये सब नहीं पड़े।
1: हाँ।
2: मैं काम करे से तो मके अपने आपके खूबे भरोसा लागे से।
1: अच्छा, हाँ, बले ने खुद चुपाए ने उबा हो लो सन लागे से बोलोगे? हाँ हाँ, तो इतलो अच्छा गोट के सांगली से। तो आगे तुम चो जोन समूह नहीं आए ना, तू चो खुद चो जोन धंधा है बोलू भी कहीं आगे बड़ा तो काजे कहीं मन ने विचार आ सके कि बड़े रूप ने बनाए दे कि निकसन कहीं
2: हुन तो आसे
1: आसे। हाँ,
2: हाँ।
1: मन ने सोच ली से?
2: मन ने सोच ली से।
1: हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये भी पूरा समूह चो लोग सब अलग अलग आपलान का और दूसर जो बहन मनाद बोलू भी हुन मन बोले यही काम कर सो कि दूसर काम कर सो?
2: हुन मन कुछ लोग दुकान मन खोल ला सो, कुछ लोग खिनिक सियानी मनात हम चो संग चो उनमन नहीं करोत, उसने खेती बाड़ी कही कही कर सोत घर घर ने।
1: अच्छा।
2: हाँ
1: हाँ, तो अच्छा ये सांग की सबले पहले तुम कौन सांगला ये जोन समूह बना तो काज बोलू भी?
2: समूह बना तो काज तो पहले ले सुनते रहूं, लेकिन समूह आए बोल लो ने फिर पीछे हटते रहूं, ता झगड़ा हो खो आए उता समूह चलाव नहीं होए बोलते पीछे हटते रहूं।
1: अच्छा,
2: तो पाचे उसने उन्हें ये बात गांव भीतर ने आसो दीदी मन ए बी आर पी दीदी मन सीआरपी दीदी मन बोलवा तो उन एवं एवं समझाला हम के समूह जुड़ा अच्छा आए तो मित्र अच्छा काम कर सास और कोनी समूह ने नहीं जुड़ा बोलू नाम के समझाला।
1: अच्छा, तो जसन के आगे तुई बोलते सुसन सोचते रहला सुसन नहीं लागे दाए
2: नहीं ओसन नहीं लागे अबे खुदे हम चलाऊं से तो काई परेशानी नहीं लागे।
1: हाँ अच्छा तो आले शोभा बघेल दीदी तु इतलो अच्छा बोले तुम चो जो स्व सहायता समूह आरु खुद चो जो रान बाँस चो जो डोरी निकरान बाती कई कलाकृति बनान बिकसास बोले ने गोटोक परिवार का जे उधिम हुए से संग संग तो खेती बाड़ी बल कर सास होती
2: हाँ,
1: है कि नहीं। हाँ हाँ तो इतलो अच्छा गोट के सांगले सार खूब खूब जुआर
2: जुआर।
0: हाँ तो देखा भाई बहन मन इतरो सुंदर ये दीदी रहे श्रीमती शोभा बघेल ये मन

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये

0: जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: राम तिल जुगे करुण मरहान भुई नहाले खाली रतो ठान मन ने कमाएसो। राम तिल जो फसल ने कई प्रकार जो रोग बले धरे से जे चोले उपजन ने कमी होम जाए से। तो ए रोग मन जो नाम आए पहिल गोटोक हो से सरकोसपोरा पाना जो दाग। राम तिल कमा तो सफाई ठान मन ने ये रोग फसल जो पैदावार के कम करुन दे से। गरम आरु ओल रतो मौसम ने उपजन जो पैदावार ने आगर नुकसान हो से। ये रोग जो लक्षण असन दखा पड़े से जसन की पाना उपरे नानी नानी गोल भूरा रंग जो दाग धब्बा महा दखा पड़े से। बूटा जो पाना मन सुकून भाती घसरते जाए से। पाछे खंद आरु बीज ने बले दाग होते जाए से। असनीच गोटोक दूसर रोग हो से राम तिल ने धरे से आरु एचो नावाय अल्टरनेरिया पाना चो दाग भीती रोग। ये रोग बूटा के धरलो ने पाना उपरे भूरा रंग चो धब्बा दाग असन दखा पड़े से। ये दाग मन छल्ला असन दखा देसोत। मंजी ने हरा रंग रह से आरु चारो बाटे भूरा रंग चो दखा पड़े से। असन दाग मन गार महा गोल नहले कसनी आकार ने बले रहुक सके। एके थे बातु काजे बीज उपचार करुन भाती बीज के बुन तोराए। फफून नासी ओखत मैंकोजेब 0.2% नहले कार्बनडाजिम 0.1% चो छिड़काव कर तोराए। बीज ने होतो बीती रोग। तो राम तिल फसल ने ये बीजोड़ रोग कवक मन ले गाजा फूट तो बेरा नहले गाजा फूट तो पाछे होए से। आरु ये रोग नानी बूटा ने भूई भीतर रतो बेरा नहले भूई ले ऊपर निकरतो बेरा होए से। एके थे बातों काजे स्वस्थ आरु सफा बीज के बुन तोराए। असन बेड़ा ले बीज आंतोराए जोन थाने कोनी रोगी बीमारी नी हो। फसल के कार्टून पाछे अच्छा ले सुखाउन भाती बीज के संगा तोराए। आरु बुनतोर पहिल बीज मन के 0.3 ग्राम थायरम नहले केप्टान नहले 0.2% कार्बनडाजिम नावचो ओखतले बीज उपचार करतो रहे। असनी गोटोक रोग होय से खंद आरु जड़ मन चो गलतो रोग। ये रोग बले गोटोक प्रकार चो कवक ले होय से। बीज आरु बीज लगे चो माटी ले ये रोग होय से। ये रोग बूटा के धरलो ने बूटा मन चो खंद आरु जड़ मन गलुन जाए से आरु बूटा मन मरुन जासो जे चोले उपजन खूबे कम होन जाए से। एके थे बातों काजे स्वस्थ बीज के बुनतो रहे आरु बीज के बीज उपचार करुन भाती बेड़ा ने बुनतो रहे। बेड़ा ने पानी चो निकासी बले अच्छा रहो ये गोट के बले ध्यान संगातो रहे। असनी गोटक रोग होय से चूर्णेन आसिता रोग बोल सोते के आरु एचो नाव पाउडरी मिल्ड्यू बले होय से। ये रोग स्फीरोथीका नाव चो कवक ले होय से। बूटा मन चो सबले ऊपर चो भाग ने ये रोग दखा पड़े से। ये रोग चो चिन्ह गुंड असन रूप ने दखा पड़े से। पहिल पाना मन उपरे नानी नानी गोल सफेद कपसा महा दाग असन दखा पड़े से। पाछे सफाए दाग पाना के घेरुन दे से। आरु रोगी पाना पाछे हरदया रंग चो होन।

0: क्लोराइड आरु रोग जो चीना देखा पड़ते खन हुनका पर ऑक्सी क्लोराइड नाव जो उखत जो 0.2% घोल जो छिड़काव करतो रहे। असने रामतिल ने धरतो बीती गोटोक रोग होय से अमर बेल नाले के कसकुटा रोग बले बलुआत। ये जो प्रभाव ले बूटा मन ने बाढ़ती नहीं होय आरु बूटा मन हृदय होन भांति न सुन जाए सोत। कै खार तो पूरा बूटा मन न सुन जाए सोत। रामतिल चो बीज मन संगे कसकुटा चो बीज बले मिसू रह से आरु ये बीज संगे दूसर बेड़ा ने बले जाग सके से। ये रोग के थे बातों का जे बुनतोर पहिल नानी काना बीती छल्ली ने चोलून देतो रहे। रोगी बूटा मन के चिताउन भांति निस्काउन भांति पकाउन देतो रहे। बुनतोर पहिल माटी ने फ्लूक्लोरालिन नाचो दवाई के 1 किलोग्राम 2.5 एकड़ हिसाब ले लगाउन भांति भूई ने मिसाउन देतो रहे। नहले गाजा पगा तो पहिल माटी ने प्रोनामाइड नाचो उखत चो 2 किलोग्राम के 2.5 एकड़ हिसाब ले मिसाउन देतो रहे। तो कास्तकार भाई बहन मन इतरहान दखा रखा करुण भांति तुमन मन राम तिल चो लाभकारी फसल ले खूबे उपजन आरु खूबे लाभ धरुक सकासे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चगोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

श्रोता सुमन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को निशा नायर का नमस्कार। स्वागत है आपका आज के श्रोता सुमन में। श्रोताओं, आज की पहली फरमाइश आपने लिख भेजी है फिल्म हम साथ साथ हैं के इस गीत के लिए, जिसे अपनी आवाज दी है हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने। बोल आर किरण के हैं और धुन तैयार की है राम लक्ष्मण ने। और इस फिल्म के गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। बिरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। मोरटक्का माफी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से के किसान श्रोता आप सब हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से अभिजीत सिंह गवहाणकर, राही श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता और अर्जुन गवहाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से आप सब हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राम, बुल्की फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार और चिलना झा। जतुका किशनपुर से आप सब हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हीना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, बेबी अनिष्का, राधिका गजभिये। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अवान अब्बासी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप सब हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। साथ ही खट्टी मकासमुंद से हैं आप सब सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी शर्मा, ओंकार शर्मा, भीषण दास मानिकपुरी और गोवर्धन यादव। महामायापारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलौरी साहू, कामेश्वरी साहू, प्रीतम कुमार साहू। ग्राम दरचुरा से ही है ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी बेमेतरा से। और मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़।

श्रोता सुमन के अगले गीत की फरमाइश आई है फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत के लिए, जिसे अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यन ने। असद भोपाली के लिखे शब्दों को संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने। मैंने प्यार किया के इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। तीन महुआ खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती ममता और गोमती साहू। कोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। सुंदरपारा रोहासी से डगेश्वर राम साहू, घनश्याम साहू, नूतन साहू और गौरव साहू। बेरड़ी से आप सभी हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्वा सेरे। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े। ग्राम छहगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झावर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। तड़वी बारे परिवार ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारे, विलास, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारे। भोकरी तालुका रावेर से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से आप सब हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया। छत्तीसगढ़ रिंगनी से आप हैं करुणा वर्मा और प्रियंका बंछोर। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: श्रोताओं, आपको एक सूचना दे दें, फोन इन किसान वाणी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच होती है, तो आप हमें इस कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। श्रोताओं, आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

श्रोता सुमन कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है फिल्म चांदनी के इस गीत के लिए, जिसे गाया है बाबला और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने। और चांदनी फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम बंगला मटिया बालो से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की मानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदेव, मीनाक्षी चरपे, रजनी रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि शनि रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमहर चांटी डीह से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, घनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरनगर जबलपुर से आप सब हैं जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन और सतेंद्र जैन। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। श्री रोकड़ेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप सब हैं टेलर रामचंद्र, थोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजुषा गौतम इंगोले, रामदेवराव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े। अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित, सोनू और मोनू ठोके। झुमरी तलैया से छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले और महेंद्र चौरसिया। ग्राम परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचिनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारिणी मसिया। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ही है रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। नागचूर रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। गणेशपेठ महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल, अमृत और सुवर्णा। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से आप सब हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट और श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव भिड़वे, श्रावण और अनीता भिड़वे। दतरेंगी से आप सब हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु और लालपुर से लुकेश यदु और समीर यदु। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

वारिस। अगली फरमाइश आई है इस फिल्म के गीत के लिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। बोल वर्मा मलिक के हैं और धुन तैयार की है उत्तम जगदीश ने। वारिस फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। मोहम्मद हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजा परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। मेड टाउन करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, सुनीता जैन, संदीप गगलानी और सुनीता शर्मा। अनारकली बाजार जगराओं से हैं आप सब सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या मल्होत्रा और भाई सच्चा पाठक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। बक्सर बिहार से आप सब हैं शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एसरी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राय आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। आदर्श नगर मोलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झामेंद्र कुमार वर्मा। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य श्रीमाली, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत फिल्म वारिस से।

लेकिन इस फिल्म के गीत को सुनना चाहते हैं पहरा अहिरवारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, गांव रतनपुर तहसील झिरजिया जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र नायक, शिवानी अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य गुनगुन और पूरा परिवार, बुराला धरण मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल, बोरखेड़ा पिपामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूणत, चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप सब हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, असमा सालिया, शोएब खान, सायमा खान, पोतरा मुश्ताबा खान, पोतरी अफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सब हैं आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत फिल्म लेकिन से, जिसे गाया है लता मंगेशकर, बोल गुलजार के हैं और धुन तैयार की है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप आनंद ले रहे हैं फरमाइशी फिल्मी के गीतों के कार्यक्रम श्रोता सुमन का। श्रोता सुमन के अगले गीत की फरमाइश आई है फिल्म क्रिमिनल के इस गीत के लिए, जिसे गाया है कुमार सानू ने। गीतकार इंदिवर और संगीतकार है MM करीम। क्रिमिनल फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते हैं भाटापारा से बचकरम, मोतीलाल यादव, बसंत, विनय ठाकुर, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक्ष और आरू साहू। मुकाम हिप्परसोगा तालुका औसा जिला लातून हुन से है उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनवी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम अबी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शकील पठान, बिस्मिल्लाबी शेख, गदर शेख, आणी नीलोफर शेख और हिप्परसोगा तालुका बिलोली जिला नांदेड़ हुन से चांदनी अयूब सैयद, आणी बाल राजे, अमन सैयद और माहिरा सैयद। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दरियापुर भामली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला दादी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से सुभाष चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, पटेल नगर मरोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया, जालौन पंजोनिया से सुरेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश आई है फिल्म रूप तेरा मस्ताना के इस गीत के लिए, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। शब्द असद भोपाली के हैं और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बेलसपुरिया, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन, वार्ड क्रमांक 9 नगर पंचायत रोहांसी से डगेश्वर साहू, नूतन साहू, गौरव साहू, घनश्याम साहू, अलका और जाह्नवी साहू, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया साहब, रिंकू सन्नी और कोमल यादव, खंडवा से आप सब हैं शिव कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले, अंजलि खंडाले, संदीप कुमार खंडाले, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार खंडाले और जयश्री खंडाले, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव, तेजल यादव, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर और बुलंदशहर से बदरू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं लुहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर से संतोष खड़से, विनोद खड़से। मोरबा भिलाईगढ़ से देवलाल कर्श, कामनी कर्श और यश कर्श। जेल रोड यारागढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी।

0: Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West, Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटीले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटीले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले दो से तीन दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार। दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा।

0: तो कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब भाई भाई बहन मन के मैं मैनामती करें से जुहार और फिर रेडियो कर कटा कटा बसलो नान नान पीला मन के बोलो ने पीला कलाकार मन के बोले मोचो बाटले खूबे खूबे माया। तो देखा भाई बहन मन कला और कलाकार गोठ गोठिया तेखन खिंडिक हरिक बोले लागे से और फिर खिंडिक कलाकार मन चे ऊपर मान बोले हो से आम के ने। तो जैसन कि आमी कला और हुनर जो ना असंती जाए जे के सीखून कोनी बोले कलाकार बन सो और कलाकार जो मान गुण समाज ने खिंडिक अलगे रहे से काय काजे कि हुन मन खूबे मेहनत मसागत अभ्यास करून आरु धीर संगाउन काई बले हुनर के कला के सिखुआत और फिर हुन मन जो व्यवहार बले धीर होन जाए से बोले ने खूबे धीर ले खूबे मया ले हुन मन काचे संगे गोठियावात आरु व्यवहार करुआत। तो हुन मन सफाय लोक संगे मया ले गोठियावात। तो आमी असन बलुक सकूं कि कलाकार आरु समाज चो जोन संबंध वाले खूबे मान बीती रहे से बल्लो ने कलाकार मन जित्रो मेहनत मसागत और धीरज ले अभ्यास करून जोन बले कला के हुन मन सीखला सोत उनमें पारंगत हो रहोत ने। तो पारंगत रसोत और फिर हुन जो जोन कला है हुन गांव हो कि समाज हो सफाई के प्रभाव करे से बोलो ने जैसन बाजा बजा तो लोग मनासोत जाले बिहा हो बर्पन हो कहीं हरिक चो उदिम चो कार्यक्रम हो हुता हुन मन बजाय सोत और जैसन गीत गाओ तो कलाकार मनासोत जाले हुन अलगे अलगे रुसुम चो गीत मन के गाउन बिहा हो उन छठी हो नाले कहीं तिहार बहार हो हुन बेरा गासोत बोलो ने गातुर बजातुर कला चो भले घुटो अलगे मान रहे से और हुन पूरा समाज के मयाले जोड़े से। तो असने ही कहीं और दूसरती जसन कहीं मूर्ति बनातो रहे कहीं शिल्प बनातो रहे और नाले कहीं भले और चीज बाना रंग रंग जो बनातोर कला हो हुन भले बनाउन भाती हुन लोग मन के प्रभाव कर से करे से बोलो ने कि कहीं भले तीज अच्छा चीज रहे से उनके दखुन भाती आमी हरी खोऊ से और उनके घेन तो काजे हूँ से ने। तो असने घेनुन भाती हुन चोले मया बले बाढ़े से उन कला के आमी प्रोत्साहित बले करूँ से। तो असने जोन कलाकार जो समाज संगे जैसन जोन बले संबंध रह से उन खूबे मया चो रह से और हुन आम चो समाज ने मया बगरा तो काम कर सो बोलो ने इतरो सुंदर हुन मन चो मान बले रहे से आम जो समाज ने और कोनी बले हुनर जाने से गीत कुरिया से कि कहीं बजाए से कि कहीं शिल्प बनाए से जाले हुन चो मान समाज ने बले खिंडिक ऊपरे होन जाए से। तो यही काजे हमी कलाकार भाई बहन मन के खिंडिक आगे आंतो पूरे आंतो काम के करूँ से और करतोर बले आए और हुन मन के ठान ठान ले बेरा बेरा ने मंच बले देतो रहे जोन थाने बले हुन कलाकार मन चो जोन हुनर चो पहचान हो असन असन ठान मन ने हुन मन के जातो काजे प्रोत्साहित बले करते रहतो रहे। तो हुन मन चो कला चो जोन प्रोत्साहन बले मिरे रे और देश दुनिया ने लोग मन हम चो कला के चीन दे बले जान दे बले। तो असन हो से हम चो कलाकार और समाज चो संबंध। तो देखा ये गोट तो मैं गोठियाते रहने मानतर और बले गोट मना से आले जहला मन के सुनुन देखू।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
8: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होय दे।
0: हाँ तो भाई बहन मन ये तो रहे गोठ मन अरु जसन की कला और कलाकार जो गोठ मन के अमी गोठियाओं से तो उसने आज ही बोले अमी गोटोक कलाकार जो जानकारी के था धरूं दे हुन कलाकार जो नाव आए हाकुसा मंतर हुन जो गोट के मूर कर तो पहल हुन मन जो मान काजे ये था ले गोटोक गीत ले अमी मूर करूं अरु ये गीत के गावला सोत शत्रुघ्न सिन्हा अरु हुन जो संगवारी मन तो वाले सुनो सबले पहल ये गीत के।

हाँ तो भाई बहन मन, ये तो रहे खूब सुंदर गीत। आरो ये गीत के गावते रहत शत्रुघ्न सिन्हा आरो हुंचो संगवारी मन। तो देखा मैं जैसन की बलू रहे ही आजी चो कलाकार ने फिर गोटक नुआ कलाकार चो हुंचो जीवना चो गोठ मन के था गोठिया उन्दे। आरो हुन कलाकार चो नाव आए हाकू शाह, जेके हाकू वजू भाई साह बल्ले बलते रला। और ये मन लोक और आदिवासी कला के बढ़ातों का जे खूबे काम बल्ले करला। ये मन रहोत गोटोक भारतीय चित्रकार रहोत गांधीवादी सांस्कृतिक मनोविज्ञानी और लोक अरु आदिवासी कला अरु संस्कृति ऊपरे लिखते बले लेखक बले रहोत। हुंचो कला बड़ौदा समूह ले संबंधित रहे अरु हुंचो जोन कृति मन रहे कला मन रहे हुन कलाकार मन जो श्रेणी ने एते रहे जोन लोक अरु आदिवासी कला चो विषय ने भारतीय कला ने एते रहे। कला ने हुंचो योगदान काजे हुनके कई ठन सम्मान और पुरस्कार बले मिलली। हुनके पद्मश्री 1989 ने जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप और कला रत्न असन कई ठन पुरस्कार मन हुन मन के मिलू रहे। और ये मन चो पहिल चो जीवना जोन रहे हुन मन चो जन्म हो रहे 26 मार्च 1934 के वलोद जोन एबे गुजरात ने आसे बजू भाई और बदन बेन जो घर ने हो रहे। हुन जो माय महात्मा गांधी ले खूबे प्रभावित रहे आरु एचो प्रभाव हुन जो ऊपर बले पड़ू रहे। हुन मन आप लो पहिल जो प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के बलोद ने पूरा करला आरु छात्र संघ ने सक्रिय सदस्य बले रहोत। हुन जो हुन मन 1955 ने महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा ले ललित कला में स्नातक जो उपाधि धरला। जे जो पाछे हुन मन के हुनी विश्वविद्यालय ने ललित कला ने स्नातकोत्तर जो उपाधि बले मिरली। हुन मन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में प्रमुख रूप ले नृवंश विज्ञानी जो रूप ने काम बले करते रला। हुन मन और एबरहार्ड फिशर कला इतिहासकार जन रहोत हुन संगे कएक ठन शिल्प प्रलेखन और नृवंश विज्ञान अनुसंधान असन अध्ययन मन ने सहयोग बले करला। 1970 ने और फिर फिशर और शाह ये गोटोक NID ने ग्रामीण शिल्पकार और हुन जो काम नाव जो गोटोक पुस्तक बले प्रकाशित होली। तो ये मन जो और बटे और बले जीवना जो जानकारी के धरू ने मंतर ये संगे संगे ये मन जो मान का जे फिर गोटोक गीत सुनु। आरो ये गीत के गावला सोत अमल साय बघेल और हुंचो संगवारी मन आले सुनो ये गीत के।

हाँ तो भाई बहन मन, कितरो सुंदर ये गीत रहे, और ये गीत के गावते रहोत अमल साय बघेल और हुंचो संगवारी मन। तो आमी गोठियाऊ से आजी चो कलाकार ने हाकू साह कलाकार चो गोठ, जोन आपलो हमचो आदिवासी कला और शिल्प परंपरा मन के आगे बढ़ा तो काम करू रहो। हुन मन ग्रामीण और आदिवासी कला और शिल्प परंपरा और लोक कथा मन उपरे खूबे अनुसंधान और प्रलेखन करू रहोत। हुन मंचो दक्षिण गुजरात ने गोटोक गांधीवादी आश्रम ने कएक बरख तक हुन मन पढ़ालो बले, और फिर अहमदाबाद गुजरात ने गुजरात विद्यापीठ ने गोटोक आदिवासी संग्रहालय चो स्थापना बले होली, जे चो स्थापना महात्मा गांधी करू रहोत। हाकू साह कएक बरख तक संग्रहालय चो संरक्षण चो काम बले करू रहोत, जोन हुंचो आखरी विरासत बले बनली। हुन मंचो रचना ने रचना मन ने आदिवासी कला और संस्कृति चो खूबे प्रभाव रहे, जे चो विषय उपरे हुन मन आपलो रचना लिखलो हुन रहोत भक्ति आंदोलन और जुगे करुण निर्गुण कविता गांधीवादी दर्शन असन कएक ठन पुस्तक मन ने हुन मंचो रचना बले रहे। और ये मन के जोन पुरस्कार मन मिलू रहोत हुन रहोत 1968 ने जान डी रॉकफेलर तृतीय फेलो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका बाटले हुन मन के मिरु रहे। उसने 1971 ने नेहरू फेलोशिप पुरस्कार नई दिल्ली ने हुन मन के मिरु रहे, और 1973 ने नागरिक पुरस्कार अहमदाबाद नगर निगम बाटले मिरली, और फिर 1975 ने जान डी रॉकफेलर पुरस्कार हुन मन के मिरु रहोत, और 1989 ने भारत चो राष्ट्रपति बाटले पद्मश्री पुरस्कार मिरली। रिजेंट प्रोफेसर कैलिफोर्निया बाटले 1991 ने 1997 ने कला रत्न, और 1998 ने कला शिरोमणि ललित अकादमी अहमदाबाद बाटले, और फिर 2006 ने गगन अवनी पुरस्कार शांति निकेतन ने मिरू रहे। और ये मंचो गोटोक एकल प्रदर्शनी मन बले खूबे रहोत, जोन थाने हुन मंचो चित्रकला के प्रदर्शित करते रहोत। अशोक गैलरी कोलकाता ने 1961 ने, अशोक गैलरी कोलकाता ने 1962 ने, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई ने 1963 ने, 1964 ने जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई एकेडमी आर्ट्स कोलकाता ने, और 1967 ने चेमोल गैलरी ने मुंबई ने, और फिर 1968 ने इंटरनेशनल हाउस फिलोडेल्फिया ने बले ये मंचो प्रदर्शनी चित्रकला चो लगू रहे। इतरो महान जोन कलाकार रहोत ये मंचो जोन मरना होली हुन रहे 2019 ने 21 मार्च दिने अहमदाबाद ने हुन जो हृदय गति रुक तो कारण ने हुन मंचो मरना हो रहे। तो इतरो बड़े कलाकार के हमें आज यथा सुरता करूँ हुन जो मान करूँ से उनके श्रद्धांजलि देऊँ से। तो आले हुन मंचो मान का जे फिर गोटो गीत सुनू, और ये गीत के गावला सोत मेघनाथ पटनायक और हुन मंचो संगवारी मन।

0: ओहो, इन दो आज के समय तो आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्यों है ना? जैसे तुम्हारी गाड़ी खराब ना होती तो तुम टाइम पर पहुंच जाती, क्यों है ना?
1: हाँ रंभा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर आप आत्मनिर्भर हो तो सब कुछ अच्छा होता है।
0: हाँ इंदु, तुमने सही कहा। और आत्मनिर्भर होने से हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं।
1: हाँ रंभा, आज के युवाओं में बढ़ती आत्मनिर्भरता अधिक महत्वपूर्ण है। युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनके विचार, ऊर्जा और कार्य क्षमता ही देश के भविष्य का निर्माण करते हैं।
0: और भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में युवा निवास करते हैं। और वर्तमान समय में भारतीय युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना तेजी से बढ़ रही है।
1: हाँ बिल्कुल, युवा रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रयासों के प्रयोग के अवसर प्रयोगों से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मविश्वासी, सक्षम और जिम्मेदार बनाती है। आज का युवा अपने कौशल, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
1: हाँ रंभा बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का अर्थ अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान स्वयं करने की क्षमता विकसित करना होता है।
0: आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के दूसरों पर अत्यधिक निर्भर भी नहीं रहता। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से मजबूत होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनने का भी प्रतीक है।
1: हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भरता व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष करने की शक्ति विकसित करती है।
0: और आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। बदलती तकनीक, वैश्वीकरण और आधुनिक जीवन शैली में युवाओं के सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक होता है।
1: हाँ, और युवा ये समझने लगे हैं कि केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। वे नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं और अपने कौशल के आधार पर स्वयं स्वयं को व्यवस्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
0: हाँ इंदु, और आत्मनिर्भरता युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का साहस देती है। ये जीवन को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है।
1: हाँ दोस्तों, यही कारण है कि आज के युवा शिक्षा, व्यवसाय, तकनीकी और उद्यमिता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं।
0: युवाओं में बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख कारण शिक्षा और कौशल विकास है। आज केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: हाँ, और साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवा नए नए तकनीकी सीख रहे हैं।
0: हाँ, और कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वयं के लिए नए अवसर बना रहे हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, कौशल आधारित शिक्षा ने युवाओं को रोजगार पाने के साथ साथ स्वरोजगार स्थापित करने के योग्य भी बनाया है।
0: युवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, फिर भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जो बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और आर्थिक कठिनाइयों कई युवाओं के मार्ग में बाधा

आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, फिर भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जो बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और आर्थिक कठिनाइयों कई युवाओं के मार्ग में बाधा कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और आर्थिक कठिनाइयों कई युवाओं के मार्ग में बाधा

0: बातें और वार्ता।
1: लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: दोस्तों, आज की हमारी पहली फरमाइश आई है भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से। राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कृतिक राउत और युवराज राउत की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइन शर्मा और निवान शर्मा की। नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय की। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए का ये गीत, जिसे लिखा है राजेश मलिक ने, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने और अपनी मधुर आवाज दिया है कुमार शानू और अलका याग्निक की जोड़ी ने। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों कुछ पल के लिए हम आपको ले चलते हैं ज्ञान के सागर में, जहां आप अब सुनेंगे सामान्य ज्ञान की कुछ बातें। आज हम आपको सुनवाएंगे भारत के कुछ आविष्कारों के बारे में।
1: दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान में हम बात करेंगे भारत के कुछ आविष्कारों को। शून्य का आविष्कार। भारत का सबसे महत्वपूर्ण गणितज्ञ योगदान शून्य है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और बाद में ब्रह्मगुप्त ने शून्य की अवधारणा को विकसित किया। आज गणित विज्ञान और कंप्यूटर तकनीकी में शून्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
0: दशमलव संख्या पद्धति का आविष्कार भारत में हुआ। शून्य से लेकर 9 तक के अंकों का उपयोग भारतीय विद्वानों ने किया, जिसे बाद में अरब देशों और फिर यूरोप ने अपनाया। आधुनिक गणना प्रणाली पर इसी पर आधारित है।
1: आयुर्वेद। आयुर्वेद विश्व की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में से एक है। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक भी कहा जाता है।
0: शतरंज विश्व प्रसिद्ध खेल। शतरंज का प्रारंभ भारत में हुआ था। प्राचीन काल में इसे चतुरंग कहा जाता था। बाद में यह खेल फारस और यूरोप पहुंचा तथा आधुनिक शतरंज के रूप में विकसित हुआ। आज यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय बौद्धिक खेलों में से एक है।
1: योग की उत्पत्ति भारत में हुई। ये शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास का माध्यम माना जाता है। पतंजलि ने योग के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया। आज योग का अभाव पूरे दुनिया में किया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर।
0: दोस्तों अगली फरमाइश आई है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, सीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतु वैद की। साथ ही है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन की। बागबहरा बत्रय से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन की। यवतमाल विदभ्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से के। गौरपाल भिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामिनी कर्ष और यश कर्ष की। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। चार मीनार चौर गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश और मुकेश मोटवानी की। गांधी बाग नागपुर से अशोक कुमार शालवानी की। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी की। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत, जिसे लिखा है शमीर ने, संगीत से पिरोया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है आशा भोसले और कुमार शानू ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अब हम आपको सुनवाएंगे वार्ता। विषय होगा युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। वार्ताकार हैं विमल साहू। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं वार्ता।

0: साहू, और आज मैं आप सभी को एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, हमें अपना जीवन एक अच्छा और निरोगी जीवन जीने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपना जीवन कभी भी खुशी से और तनाव मुक्त नहीं जी सकेंगे। इसलिए सभी लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर के दिन मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने को या फिर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहते हैं, बल्कि हम अपने संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग अपना जीवन तनाव मुक्त करने के लिए और अपने समाज के विकास के लिए करते हैं, उसे मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं से कोई भी पीड़ित हो सकता है, जबकि कुछ व्यक्ति या समूह अधिक संवेदनशील होने से कोई भी व्यक्ति खराब मानसिक स्वास्थ्य से अछूत नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त लोगों को अक्सर कलंक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे मदद लेने से कतराते लगते हैं तथा उनके सुधार में बाधा उत्पन्न होती है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ। एक व्यक्ति अनेक प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त हो सकता है, जिसमें शामिल है चिंता, दोद्रव्य विकार, अवसाद, जुनूनी बाध्यकारी विकार, OCD। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने वाले प्रमुख कारण शैक्षिक दबाव, यानी कि पढ़ाई लिखाई का दबाव, अच्छे अंक प्राप्त करने और करियर से सफल होने की चिंता युवाओं में तनाव और अवसाद उत्पन्न कर सकती है। सामाजिक मीडिया। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग आत्मसम्मान को कम कर सकता है, क्योंकि युवा अन्य लोगों की जीवन शैली और सफलता तुलना करने लगते हैं। रिश्तों की जटिलताएं, प्रेम संबंध, दोस्ती और परिवार में अनबन मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। बेरोजगारी या करियर। सही करियर चुनने या रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई के कारण आत्मसंदेह और चिंता उत्पन्न हो सकती है। मानसिक विकार। अवसाद, चिंता विकार और अन्य मानसिक बीमारियां युवा अवस्था में अधिक देखी जा रही है। स्वास्थ्य धन है। हमारे जीवन में हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। बीमार धनी होने की अपेक्षा गरीब व स्वस्थ होना अधिक अच्छा है। एक बीमार व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकता है, एवं एक स्वस्थ व्यक्ति अपने सभी कार्य पूरे उत्साह के साथ कर सकता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, असल में वही धनी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम भी बहुत आवश्यक है, अर्थात हमें स्वास्थ्य रूपी धन की हर कीमत में रक्षा करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज में संवाद की आवश्यकता है। थेरेपी और काउंसलिंग जैसी सेवाएं युवाओं को भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकती है। स्वास्थ्य जीवन शैली। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सहयोगी वातावरण। परिवार और दोस्तों का समर्थन युवाओं को मानसिक तनाव से लड़ने में सहायक हो सकता है। समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण। सही समय प्रबंधन और यथावधि लक्ष्य तय करके तनाव को कम किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक रोगों के कारण हृदय रोग और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मानसिक रोगों के कारण पुराने शारीरिक रोग गंभीर रोगों का रूप ले लेते हैं। अगर सही समय पर मानसिक रोगों की पहचान कर उनका उपचार ना किया जाए तो वे मनुष्य को पतन की ओर ही लेकर जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने के कारण। दुनिया में ऐसे कई सारे कारण हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, जिनसे व्यक्ति हमेशा तनाव भरी जिंदगी जीता है, जिसमें कई सारे कारण शामिल हैं, जैसे कि पारिवारिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, सांस्कृतिक मतभेद, अपने किसी मुश्किल काम का तनाव और ऐसे ही कई सारे कारण हैं जो अपने मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने में योगदान देते हैं। अपना तनाव मुक्त और निरोगी जीवन के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसलिए जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है वह व्यक्ति बाकी व्यक्तियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनती और आत्मविश्वास होता है। इसलिए वो हमेशा किसी भी मुसीबतों का सामना पूरी हिम्मत से करता है, ना कि मुसीबतों से डरकर भागता है। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, वार्ताकार थे विमल साहू। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं संगीत की दुनिया में।
4: दोस्तों, हमारी अगली फरमाइश करता है महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू श्रेयांश ठाकुर, ग्राम बूढ़गहन छत्तीसगढ़ से, राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांत प्रजापति की, तिरुपति नगर लातूर से, संगीता जैन, सूरज जैन की। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म हेलो ब्रदर का ये गीत, जिसे लिखा है जली शेरवानी ने, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने, इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक की जोड़ी ने। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: दोस्तों, अब अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म भुलैया से, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है प्रीतम ने और इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार ने, और इस गीत की फरमाइश करता है देवी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर शाहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, साथ ही है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, हडोद बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत फिल्म भूलैया से।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, हमारी अगली गीत है फिल्म दिल है तुम्हारा का, जिसे लिखा है शमीर ने, संगीत से पिरोया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को गाया है अलका याग्निक कुमार सानू ने और इस गीत की फरमाइश आई है दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मी यदु की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनमिंदर सिंह पांधा की। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, आज के युवाड़ी में बस इतना ही। चलते हैं इसी वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपने रेडियो दो शंभा जोशी
1: और मुझे इंदु कश्यप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में हम अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण सूचना।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। कुछ ही समय में हम संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के हो ही मतगणना, यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कुंडापल्ली गांव पहुंचिन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करिन। औ धमतरीहा देश के पहली ऐसा जिला बन गया है जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा दिवाए जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हां कहिन है कि शिक्षा सशक्तिकरण के एक ठन शक्तिशाली साधन है। शिक्षा लोगन ला आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बन

थे। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी मनला संबोधित करत राष्ट्रपति हा कहिन कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सबो वर्ग सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप ले प्रगति करें। राष्ट्रपति हा कहिन कि युवा मन हा राष्ट्र के शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतिनिधित्व करते। ओमन हा युवा मन ले विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवा मन ले आग्रह करिन कि ओमन हा अपन जड़ ला सुरता रखें।

0: सूचना नहीं मिले हे। नगरीय निकाय के मत के गिनती 4 जून के करे जाही। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत भर हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल में ही कराएगी, जिकर परिणाम की घोषणा 4 जून के करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कोंडापल्ली गांव पहुंचीन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन के समस्या सुनिन। मुख्यमंत्री हा अधिकारी मनला निर्देश दिन कि जन चौपाल मा मिले सबो आवेदन और समस्या के समय सीमा मा निपटारा करे जाए। श्री साय हा कहिन कि सुशासन तिहार सिर्फ एक ठन प्रशासनिक अभियान नहीं है, फिर यह सरकार और जनता के बीच विश्वास ला और ज्यादा मजबूत करे के माध्यम है। मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मनला भरोसा देवाइन की उनकर समस्या के निपटारा बर सरकार हा पूरा जिम्मेदारी ले काम करत है। जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री हा आने आने विभाग मंडहा ले लगाए गए स्टॉल के अवलोकन करिन। उन्हें हितग्राही मनला वन अधिकार मान्यता पत्र, जातीय निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजना संग्रह, दूसर योजना मन के बारे में जानकारी दीन। मुख्यमंत्री हा आत्मसमर्पित माओवादी दंपति मंडहार ले संचालित किराना दुकान घलो पहुंचिन और उनकर जीवन में आए सुघर बदलाव के तारीफ करिन। एकर पहली मुख्यमंत्री श्री साय काली नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ क्षेत्र के गारपा और कोंडा गांव जिला के बड़े कनेरा पहुंचिन। गारपा में राखे गए जन चौपाल में मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मन ले सोझे गोठ बात करके उनखर मन के समस्या सुनिन और क्षेत्र भर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा ले जुड़े कतकोन विकास काम के घोषणा करिन। उन्हें बड़े कनेरा में राखे गए समाधान शिविर में उमनहा कोंडा गांव जिला भर 152 करोड़ रुपया ले ज्यादा के 43 ठन विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करिन। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारी मनला आर्थिक रूप ले मजबूत बनाए बर 1-30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला के आयोजन करे जावत थे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग दहार ले राखे गए ये अभियान में स्ट्रीट वेंडर्स मनला ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसन डिजिटल सेवा देवाए जाही। संगे संग उमनला जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और दूसर जन कल्याणकारी योजना मन ले घलो जोड़े जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। धमतरी जिला हा देश के पहली ऐसन जिला बन गया हावे जिहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी पैक्स के माध्यम ले किसान मनला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाए जाही। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अगुवाई में जिला के 10 ठन पैक्स समिति में ये सुविधा शुरू करेगी है। लोहरसी में राखे गए कार्यक्रम में ये पहल के शुरुआत करेगी और प्रशिक्षित ड्रोन पायलट मनहा ड्रोन स्प्रेयर के प्रदर्शन करिन। अधिकारी मन के अनुसार ड्रोन तकनीक ले उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव कमती बेरा और कमती लागत में करे जा सकी। राज्य में यात्री बस के किराया में बढ़ोतरी लाले के परिवहन विभाग हा बस संचालक मन संघरा बैठका करके उनकर समस्या और मांग के बारे में गोठ बात करिन। बस संचालक मन हा बतायें कि बच्छर 2021 के बाद ले किराया में बढ़ोतरी नहीं हुए है, फिर डीजल के कीमत में सरलग बढ़ोतरी हुए है। उमन हा डीजल के दाम के अनुसार किराया तय करे बर स्थायी व्यवस्था बनाए के मांग करिन। परिवहन विभाग हा कहे है कि दूसर राज्य के किराया दर के अध्ययन करके जल्दी फैसला करे जाही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में देहरादून में राखे गए कार्यक्रम में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ला पर्यावरण चैंपियन अवार्ड ले सम्मानित करेगे है। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र डहरले पाछू बछर में जैविक खेती ला बढ़ावा देबर वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधि, नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम, किसान और विद्यार्थी मन बर प्रशिक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सुघर काम करेगे है। उन्हें गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के सेमरा के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय ला घलो

0: राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण चैंपियन अवार्ड दे जाही। ये विद्यालय के चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता ले जुड़े काम में सुघर प्रदर्शन भर करेगे हे। उहे विश्व पर्यावरण दिवस में 5 जून के रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहले पोस्ट प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें विषय में हुवैया ये प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी मनहा भाग ले सकें। रेलवे प्रशासन हा यात्री मन के सुविधा पर रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस ला 1 अगस्त ले हर दिन चलाए के फैसला ले है। उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून ले 2 जुलाई तक 5-5 चक्कर भर समर स्पेशल ट्रेन घलो चलाए जाही। अब पेशे मौसम के हाल। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में 1-2 जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश और ओखर लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। उन्हें एक ठन दूसर द्रोणिका मध्य पाकिस्तान ले तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होवत बने है। एकर असर ले प्रदेश में काली 1-2 जगह में अंधर चले के अवकाशीय बिजली गिरे के आशंका है। अब थोरकुन समाचार सार मा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा बताया है कि उत्तर पुस्तिका में पाए गए गलती के सत्यापन और ओखर पुनर्मूल्यांकन पर पोर्टल आज ले शुरू हो गए है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रही। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में काली मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हुई। बैठक में पाछू खरीफ विपणन बछर में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान के निष्पादन और कस्टम मिलिंग और अवैया खरीफ सीजन में धान खरीदी के तैयारी के बारे में चर्चा करेगी। रायपुर जिला के दिव्यांग युवा मंडला रोजगार ले जोड़े पर रोजगार कार्यालय रायपुर डहरले 5 जून के बैरन बाजार के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। और कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल तीर पाछू संझा होए एक ठन सड़क हादसा में फटफटी में बैठे एक जन युवक के मौत हो गई। उन्हें एक जन दूसर युवक गंभीर रूप ले घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के हो ही मतगणना। यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कोंडापल्ली गांव पहुंचीन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करीन। और धमतरीहा देश के पहले ऐसा जिला बन गया है जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा दिवाए जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्र दत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते, अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरब रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्र सर्वकारेण आवृजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारम् अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवास समयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आवृजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 संजाता। अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपति च मारियो वोक्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति। अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
2: युवा हमारी राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्य उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुदरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्ति कृतवान्। अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+ दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्य आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। इतः पूर्वम् 80+ दिनानाम् अवधे समाप्त्यानन्तरं 14 दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकमासीत्। गृहमन्त्रालयेन आव्रजन विदेशी नियमः इत्येषा अधिसूचना निर्गतास्ति, यस्याम् आव्रजन विदेशी नियमः इत्यस्यान्तर्गतं पञ्जीकरणसीमायां समयसीमा अध्यर्थनातन्त्रे च महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि कृतानि सन्ति। यद्यपि निर्धारितावधेः अनन्तरं पञ्जीकरणं केवलम् आपत्काल परिस्थितिषु एव स्वीकार्यं भविष्यति, प्रथमवारं नियमेषु अन्तर्जालमाध्यमेन अध्यर्थनाप्रणालिः योजितास्ति। केनापि आदेशेन प्रभावितः जनः अधुना आव्रजन विभागायुक्तम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रार्थयितुं शक्नोति। अध्यर्थना आदेश प्राप्तिसमयात् 30 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। आयुक्तः सम्बन्धित पक्षं संश्रुत्य निर्णयं दास्यति, अपि च विषयस्य समाधानं 60 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिः शीलनागू, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालये कॉलेजियम इत्यस्य अनुशंसां पालयता यः एव एतेषां नियुक्ति विषयकी स्वीकृति प्रदत्ता। एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया सर्वोच्चन्यायालय संशोधन अध्यादेशः इत्यस्य प्रतिष्ठापनानन्तरं कृताः सन्ति। अधुना भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन सह सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशां स्वीकृता संख्या 34 तः समेध्य 38 यावत् कृतास्ति। विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपतिः मेरियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेत्र

0: महत्त्वभूतस्य डीप्टेक् सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अस्मिन्नवसरे भाषमाणः डॉक्टर सिंहवर्यः अकथयत् यत् अद्य देशः विश्वस्य तृतीयस्य सर्वोच्च स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यस्य अध्यक्षतां करोति। अपि च जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्यसेवा, जल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रयच्छति। डॉक्टर सिंह अकथयत् यत् भारत जर्मनी देशौ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जनसंबंध चेत्यादिषु विषयेषु एकस्य सुदृढ़ सहयोगस्य आदान प्रदाने कुरुतः। राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कार समारोहः श्वः नवदिल्ल्यां आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्वाचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावधौ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सकल विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। प्राप्त पुरस्काराः पंचायत प्रमुखाः स्वकीयाः सर्वोत्तम कार्य प्रणालीः उपलब्धीं चाधिकृत्य प्रस्तुतिं दास्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग इत्यनेन राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तटवर्ति क्षेत्रेषु दिन समये गर्जनेन विद्युत तरंग चमत्कृतेन च सह झंझावातस्य संचेतना प्रवर्तितास्ति। कर्णाटकस्य आंतरिक क्षेत्राणि केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु श्वः यावत् तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामिषु दिवसत्रयेषु हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभृतिषु क्षेत्रेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य विद्युत तरंग चमत्कृतस्य च संभावना वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधार रूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् अष्टादशाधिकैकशतं सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुम् आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ये महत्वपूर्ण सूचना।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: GST काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस, इंजे 18% की सिक्ता। टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे। लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीत, जिसमें आप सुनेंगे ध्रुवी लोकगीत। कलाकार हैं पार्वती और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे पार्वती और साथी। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है, ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
13: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
12: राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनचौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनचौपाल में प्राप्त सभी आवेदनों और समस्याओं का समय सीमा में निराकरण किया जाए। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम है।
14: कोई प्रमाण पत्र होगा, आय, जाति, निवास, ये सब, कोई आप लोगों का जमीन बारी का दस्तावेज चाहिए तो सब देने का काम करेंगे और आगे खेती बाड़ी को भी बढ़ाएंगे। इधर इमली महुआ सब बहुत है, उसका वैल्यू एडिशन करा के हमारे बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का काम, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये बकरी पालन, ये सबको बढ़ावा देंगे।
12: मुख्यमंत्री आत्मसमर्पित माओवादी दंपत्ति द्वारा संचालित किराना दुकान भी पहुंचे और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की सराहना की। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल पर ही कराई गई। इसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में 10 पैक्स समितियों में ये सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन तकनीक से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय और कम लागत में किया जा सकेगा। इससे किसानों को आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित समारोह में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र को पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र द्वारा बीते वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधियों, नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रमों, किसानों और विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को देहरादून में होने वाले समारोह में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरा में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण चैंपियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इस विद्यालय का चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें विषय पर होने वाली इस प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। रायपुर के पास मंदिर हसौद स्थित मिवान स्टील लिमिटेड संयंत्र में आज सुबह भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही रायपुर तथा आसपास के क्षेत्रों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होते हुए बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।
15: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेज हवा का गतिविधि लगभग 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है 4 जून से बढ़ने की संभावना है और अधिकतम तापमान में आज और कल में लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री का हल्की वृद्धि होने की संभावना है और तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है।
12: इस बीच आज दोपहर बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हें विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में अस्थि बाधित, बौने, कम सुनने और देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल के पास बीती शाम हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अभी शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ राम राम कुल्लर राम राम।
1: हाँ राम राम लूला दादा राम राम।
0: और द केची संग संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संगवारी मन के मैं लूला।
1: हाँ मैं कुल्लर
0: हम दोनों करूँ से
1: राम राम। और दकना नानी नानी पीला मन बोल नहीं भूल को नहीं अलाम चे दोनों चे बाटले नानी नानी पीला मन के कुब्बे कुब्बे मयारू चुमा नहीं।
0: हाँ दक हम उनके काय की गीत असन काय असन सुनाल पर और हरी खुआ
1: हरी खुआ था। हाँ
0: और गीत बोलो ना आजकल आमी दखूं से कि जुगे करुण भाती हूँ मोबाइल के धर ला की है गीत हूँ गीत सुन तो काजे मन मन जाए तेरे से ने। और पीला ची मन नहीं असियान मन बल जुगे करुण भाती मोबाइल चो गीत काय काय मन सुनते रुआ उताबल का है कि हम देखूं से कि बरन बरन चो दुनिया भर चो गीत मने ऐसे उसने बाजा मोहरी बोले ऐसे
1: ये ऐसे। हाँ हाँ
0: मात्र देख आम चो जो न पुरकती बेरा चो गांव बाटे जो गांव समाज ने बाजे से जसन बाजा हो मोहरी होली माल पर गीत होली तो हुन गीत मन के सुन लन के निकाय कि मन के बलाम के और अच्छा ले हरिक
1: लागे से। और असन गीत मन के सुनुन बारी आम चे अब पिला मन के बोल खिंड के गीत मन के सोता संगात रहा है सीख तो रहा है। कसन बोले ना आम चो याले पूर्व पूर्वानी बेराज गीत मन है। बिया गीत होली तुझो आगे चो सियानीन मन काय मजा सोकार घर मन ने बुती जाओ तार लोन बारी गीत गाओ तुसन गीत मन के बल बुलक तोर नो आए। जगार गीत होली चेरता गीत होली यार तू चो बरन बरन चु गीत मन आसे ने। तो सन गीत मन के बोले आम चो दादा दीदी मन पिला जिला मन लग बोले कोनी कोनी जानो जाले गाव तो रोत ने पिला मन सुनन बाती सीखते तो बोल रहे दे ने।
0: और तक आम जन ये भी आम दुखूं से कि कोनी कोनी हो ना डीजे बाजा बोलुआ ने उता डग आते रहे सब मात्र रही तेलो कान हीर हीरा लागे से ने
1: हीरा लागे से।
0: और उसने आम चुदक ये गोची बाजा भी थी मोहरिक सुन लेन कसम लागे रस रसा ने
1: रस रसा। हाँ
0: सियान मन बोल खिंडिका और सियान इन मन बोल कान के डेरुन बाती सुन सो
1: सुन सो था
0: मात्र तक ये बीच पिला मन हूँ डीजे बाजान
1: जा
0: कान गिर गिर बल लागे सर पुनाए बल सांगलू की मोबाइल ले नियर रहे सर तो उन भी तीन बल का है कि आम चवाई बल खराब होता रहे से और पीला मन के बोलू बात की चिड़चिड़ा आसन काय काय आसन बेमार से मार बल होए से
1: होए से। हाँ हाँ उन मन चो जो न ये बोलू आज ये जो नाम चो सोच तो विचार बीती काय तो रही से नहीं पावर बन बली आए तो उसन बीती मन हुन मन के कुपे प्रभाव पड़े से ने। तो उसन बीती मन के पिला मन उलखंडिक दिया नहीं देव तो लुला दादा नगद बीती मन के सीख तो काज कोशिश करो तो ने।
0: अर्धक उन जो न मोबाइल लेवल जो न अच्छा बीती मन आसुन के तो आम के सीख तो बोले आए मंत्र तक आम चो जो न पुरकती बेरा चो जैसा नाच तो बीती आए और उसने बाजा मोहरी पहाड़ आए तो ये मन के आम के भूलक तो नो आए बिया घर हो ना कहाँ है बोलो आम के जवान जो ये बेचो पीला मनासत नहीं बाबू मनासत उन मन बुलखिंडी के आम के नाच तो बुताक बोल और गाँव तो बुताक बुलखिंडी सीख तो रहा है
1: सीख तो रहा है। कसन बोले नाम चु बस्तर चु रीति के निसीख लेने भुलकते जाए दे नहीं तो आम चु बस्तर चु रीति के बुलखिंडी बचा उन संगा तो रहा है की बस्तरिया नाचा बस्तरिया गीत ने। ये भी तक कहाँ कहाँ खूब जगह मन ने सुन कोई जन कोई से बस्तरिया नाचा बस्तरिया गीत बोलते ने तो सन गीत मन के बोले आम चु भाई बहन मन बोल सुनो सीखोत ने। उन संग संगे पढ़ाई लिखाई बोल जाता ध्यान देत रहे जानु गीत किस नहीं ने। तो ये हम चो काय गीत बोले न गोटो काम चो संस्कृत चो गीत की बचा तो काजे हम भाई बहन मन के सलाह सुतुर देतो बीती हो।
0: अर्धक आगे चो किथे ठा ना ये नाच तो पाड़ होली गीत मन होली ये भी खिंडी काय कि हाजते जाए
1: हाजते जाए
0: उन जुगे उन मोबाइल और शहर बाट चो नाच तो और बाजा मन के दुकुन भाती लोग भूलकते जाए सो तो असन आम के भूलक तो नो आए। और आम चो जनपुर दिन जो जो कला मनाए नहीं उन कला मन के दखा ये भी बोले आम चो बड़े बड़े जगह ने उनके नाचुन बाती दखाए सो
1: दखा सो था।
0: और दख तो का जो लोग बोल हरी को सो तो आमचो ये आम चो राज चो लोग नहीं आम चो ये जिला चो लोग नहीं आम चो विदेश लेवल उनके का है दख सो
1: दख सो था। और ये आम चो जो नाचा डगा का आम चो गोटो का समाज आरु गोटो का ती त्योहार चो नीति हिसाब ने बोले गोटो गीत हो इसे नाचा डगा हो इसे इन्हें बोल का आया कि आम चो लोग मन खूब दख तो लोग बोल हरी खोस होत ना। तो दख लूला दादा उसने कहीं भाषा चो बोले आम चो बस्तरिया मन दादा मन लगे गीत मन बला से ने जैसन कि गुंडी बीता होला धुरी बीता होला हेल भी बीता होला बतरी बीता होला ने तो वसन गीत मन के आम छो बस्त्रिया भाई मन सिकोत और बचाउन संगावत गीत गोगन के ने
0: तक आम छो जन बस्तर बुलुआ देता छ गोटक अलग रीति रिवाज आसे अलग एता छ बुलुआ संस्कृति कला ए सब आया आसे उसने तक विदेश मन ले बला आसे उताज बल गोटक कोनी कोनी आदिवासी भाई मनास उताज बल संस्कृति अलग आसे
1: अलग आसे
0: उन बाट छो बाजा मोहरी बल अलग आसे तो हुन मन बल आम छ लगी ए सतर दुकुन भर जाय सत ने आम ही बले आम छ बाट जो नी आए हुन मन बाट अमल दुकुन यो से तो असनी आए आम छ काय कि आम छ बाट छ भूल कुन देव हुन मन छ बाट छ बोल राम छ कला के हाजुन जाय दे तो एक दिन आम के सिख तो बड़े मुश्किल
1: होय मुश्किल होय दे हां तो वाले आम छ दादा दीदी भाई मन के गोट बात के सांगलू तो आम छ मोडरान बल और नगद गोट मन आसले गोट मन गुल सुनो
0: आले सुनो
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: टुलुला दादा
0: हाले
1: गोड बात के सुन लू ने आरु दादा दीदी मन बोल सुन ला
0: हाँ,
1: आज दिन बोल ले मंगलवार दिन है ना ने काय सुंदर गीत गोविंद जो दिन आए ने आप पक्की गीत गोविंद जो गोड मन बोल सांगलू ने तुसने आम शो आज शो कार्यक्रम आए
0: मन कर लो गीत मन ने
1: हाँ हाँ लोग लहरी परमाईसी लोग गीत ने तो ना लूला दादा तो मन कर लो भाई मन चो चिट्ठी पत्री बला से ने
0: पासे चिट्ठी पत्री जोन मन कर लो लोग चो भाई मन चो पूर्ण बात सांग वा मांसर अले गीत कुरिया जोन गीता अले के सुनु था
1: अरे गीत कुरिया भाई मन चो नाव बल सांग रूं ने
0: अले
1: गीत के गावला सोत लकिसर कुद्रा मारून चो संगवारी
0: हाँ अले ते सुनु
1: सुनु

0: दक कितलो नंगत गीत रेली ने
1: हाँ।
0: और ये गीत के मन करतो का जी आमचे लग चिट्ठी मना से
1: हाँ।
0: ये भाई मना तो कुमार साडराले एक तवारी डेंगा पेदा अनिल मंगलदई अरुण मंच घर चो सब पायलो मन
1: हाँ तो मतलब बोले सने आसे चिट्ठी ये मनात ग्राम कुमली ले राम राम मोरे समलवती मोरे पल्लवी मोरे छोटी मोरे भगवती मोरे मंचो गीत के मन कर रला।
0: हाँ ये मनात लाला गुड़ाले
1: हाँ
0: गोकुल सुबती राजमनी फूल सिंह और भले मंच संगवारी मन
1: हाँ हाँ तो ये मनात कोंडा गाँव ले लचिन कश्यप दीपक कश्यप ज्योति कश्यप रेशमा मंडा भी मन
0: हाँ
1: आले।
0: दक इतलो लोग मन मन कर रहा नहीं
1: हाँ
0: हाँ आले आम चले लगे फिर गोट गीता से और एक
1: आओ
0: गाओ बीता भाई या दीप किशोर भटनागर अरुण मंजे संगवारी मन आले तेवे गीत के सुनू था
1: सुनो।

0: अदक कितलो नगद गीत रे ने
1: हाओ
0: और ये गीत के मन कर तो काजी मचल गासे
1: हाओ
0: ये मनात साले पाले
1: हाँ।
0: हीरावती छोटू जयराम भगत हाँ। सनत अरुण मंच खूब जान संगवारी मन
1: हाँ तो मतलब बला से मनात ग्राम भाग मौली ले लकेश्वर कश्यप बल्ली कश्यप पगनु कश्यप लकीराम कश्यप सुखदास मोरे हाँ रामू राम मोहरे यमन ये दखनी यमन का सुंदर गीत के मन कर रला और चिट्ठी पत्र पटाऊ रला ने
0: हाँ हाँ तो मच लगा और बोल चिट्ठी आसे
1: हाँ
0: तो ये मना तो मधु ताले समान यादव सोनारी यादव पद्मा यादव सुक्री यादव अरुण मंजे खूबे जन संगवरी मन
1: हाँ तो मचलग बुला से ग्राम अल्लार लियाद बुधराम नाग आयती नाग रघुनाथ नाग कामेश्वर नाग और चैतु नाग
0: गीत के गाओ भी था भाई यार बलदेव अरुण मंजे संगवारी मन अरे सुनू था
1: सुनो

0: दक कुल्लर
1: हाँ
0: दक कितलो नंग ते गोंडी गीतरे ने
1: हाँ
0: तो एक तो आम्ही सुना दिलु ने
1: हाँ
0: मंत्र के मन कर लो भाई म्हणजे चिट्ठी असे राजूर स्वर रासले
1: हाँ
0: गंगुराम ठाकुर कमलवती ठाकुर
1: हाँ
0: सुद्रु सिरदर इतलो लोग मन
1: हाँ तो मछलक बुला से मनात गांव अबुजमाड़ विकास खंड ओरछा जिला नारायणपुर ले श्रीमती दसरी पोड़ियाम सांबती पोड़ियाम रजबती पोड़ियाम ललित पोड़ियाम काव्या पोड़ियाम और गांव पकनार ब्लाक दरबार जिला बस्तर ले लक्ष्मण मंडावी अर्जुन मंडावी दुर्जन मंडावी जोगा मंडावी सांबती मंडावी पालो मंडावी रीता मरकाम और मासे बेटी आले मन इतरो लोग ये गोंडी गीत के मन कर रहा ने हाँ तो हाँ
0: समझे
1: आले
0: है कि आम चो लगे का है
1: हाँ
0: कि कसन लागे से हुनके चिट्ठी बल पठाउन बाती हुन मनाम के सागु ले सकत ने
1: हाँ
0: और ए चुका जे जो न पता है उन पता के बला ले एक आराम सांगुन दे उन्हें
1: हाँ
0: तो ए आए मन कर लो गीत कार्यक्रम का जे पता है द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जगदलपुर पिन कोड नंबर है 4940001
1: एक और मोबाइल नंबर है 9425591544।
0: हाँ तो ये पता नहीं चिट्ठी पता नहीं बात ही उन मन कर लो गीत के सांगु सको
1: हाँ
0: तो आले दें जा तो बेरा बोले होली नहीं
1: हाँ ले जा तो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव करी दादा दीदी भाई बहन मन के माई कुलदर
0: और मैं लूला
1: आमी दोनों करों से
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अभी शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी।

0: हाँ जुहार कुल्लर जुहार।
1: हाँ जुआर ना लूला दादा जुआर।
0: और दक
1: हाँ
0: किसानवाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सी आंसर जनावर संगवारी मन के मैं लूला
1: हमें कुलदर
0: आम दोनों करूं से
1: जुआर। हाँ तो
0: जुहार।
1: वाले हम छो खेतियार दादा दीदी मन के जुआर बैठ कर लू ना।
0: हाँ
1: और
0: अब
1: हम
0: तक उन
1: हाँ
0: मन का है कि आजकल हम देखूं से कि कितने
1: हाँ
0: जान पलाह मन बल पकाए सतने
1: हाँ
0: और कोनी कोनी का है कि बुन तो बुतक बल कर
1: कर
0: सकता
1: तो था।
0: और आगे जोन मन साग सब्जी के लगा ला से ना हाल कोनी कोनी जोंदरा बल रूपरूला उन मन के आजकल मिडाई बल कर सोची
1: कर सो
0: ने।
1: था हो आरु कोनी कोनी देख जब जाप करुन काय मंजा साग सब्जी बल लगा तू वाट करला से तारु कर सो कोनी कोनी खोड़ का कुसला बल कर सो था।
0: हाँ और दक आमी गोटो गोट मकसूर था ऐसे ने
1: हाँ
0: दक ये भी कहा है कि आमी आजकल जोंदरा बल रूपन रहो तो
1: हाँ
0: भाई बहन मन
1: हाँ

0: যুগে কারণে আমি দেখুছে কি বলল নে রাসায়নিক খাত তো বোরা বিতি খত মন হয়েছে হুনকে যুগে কারণ লাগাইছে তো আগের লে আগের হুন মন কায় উপজন তো ধর সচ্ছি তো হুন তো উপজন হয়েছে চি মান্তর আমচো খোজাকারী ভাই মন সাংসদ কি এ নে কায় কি আমচো দে হাত পায়ে কাজ বল নোকসান হয়েছে ফসল উনকে খাদ লো নে আর দেখ সঙ্গে সঙ্গে আমচো জমিন কে বলে নসাইছে বল
1: নসাইছে
0: হ্যাঁ উনি কারণে কায় কি আমকে জন জৈবিক খেতি বলসত জৈবিক খেতি আর জৈবিক খত হয়েছে যে গোবর খত হলি আর সুচি আর বলে কেচুয়া খত বলসত এই চিজ মানকে কায় কি আমকে বেড়ানে লাগালন কায় কি ভূমি বলে আচ্ছা রয়েছে আর উন মানলে যে না ফসল আয় হোনা আচ্ছা বললো না আমকে খাদ লেবল খেটিক স্বাদ লাগে
1: স্বাদ লাগে সে
0: তো হুনি কারণে কায় কি আমকে খেটিক ধ্যান দিত রায় আর আজকালি কায় কি আসন জন গোটক তো হয়েছে জৈবিক ওয়ার্ড নে আর গোটক বলে সত আজকাল খোজাকারী ভাই মান কি প্রাকৃতিক খেতি তো হুনে বলে কায় কি আমচে দুই চার ঠান গায় বয়লালে আমকে আগর লে আগর খত বনাউন ভাতি বেড়ানে দেউকলে
1: সকু আর আসান খেতি করলে নে দক আমচে বেড়ানে জন বল ফসল লাগাউ সে শাক হো নাল ধান হো নাহলে কইছ বলে আমচু খাতু বিতি ফসল লাগাউ সে আমি গোবর খত আর জৈবিক খত কে আমি লাগালে নেই আমচু ফসল রোগ রাইল বলে কুবে কম হয় দে রোগ রাই আর আম জোনে রাসায়নিক খত লাগাউস নাই এ খত নাই আমচো জোন্দরা হো দান হো নাল টমাটর হো নাল মিরি হো সেমি হো চাই গোবি হো চাই তুচো ভাজি ডারা বলি হো আসন বিতি মনে কায় কীড়া আসন বিমারি আসন খুবে হতে যায় সে
0: হ্যাঁ
1: তো হুম উনি কাজে আমচো খেতে দাদা দিদি মনকে বলতে রয়েছে হুন কত কে খুবই কম লাগাও তার আমচো গোবর খত কে আগর লে আগর লাগাত কাজে ওয়াট বানাওত না
0: হ্যাঁ হ্যাঁ আর দেখ আমি দেখু সে কি আজকাল বড়ে বড়ে শাক সবজি বড়ে বড়ে লাহু মন বল কোন কোন আসত না তো উন মন কে কায় কি আম জানু সে কি কোন কে কিসম চ দোয়াই দারু বল লাগু রহে সে যে কি আমি খাউন বল দেউ সে তো বরন বরন চ বেমার সে মার বল হয় সে যে কি ক্যান্সার কায় কায় বল সব তো হুনি কায় কি আমকে দে হাত পায় তো নসায় সার সঙ্গ সঙ্গ জমিন কে বল নসায়
1: নসায় সে
0: আর আম যে খোজাকারী ভাই মন সাংসদ কি যুগে যুগে রাসায়নিক খাদ খত মন কে আমি দেতে চরুয়া তো পচাশ সাল নাহাল পের উঞ্চ হুন পাঠলি বললে হুন জন ভুঁই হয়েছে হুন বিলকুল বলল নে বঞ্জর যে কে বল পকনা আসন পকনা আসন হ্যাঁ উঞ্চ বাদ নে সাংসদ কি আমচে জমিন কে ফের উতালে গুছাউন ভাতি ফের কাহা এর মাটি পকান ভাতি ফের নোয়া মাটি কুতা ডালু লাগে তেবে ফসল হয় নাহাল পের আমচে জমিন উতা ফসল উপজাস বিতি জন তাকত আয় হুন নসুক বলে
1: সকে দেখ উঞ্চ কাজে আমকে ফের কিত্র খরচা লাগু তো উনি ওয়াট নেই আমচো খেতিয়ার দাদা দিদি মান আমচো গোবর খত আর জৈবিক খাত বানাত ওয়াট বানাওত না এবার দেখ লুলা দাদা এ গোড তো সতে আয় না আমচো সময় রতলে তো আম রাসায়নিক খত কে খুবই লাগাওয়া তো আমচো পিলা জেলা মান এ তো বেরা খুবই দিক্কত হয় দে তো উন মান কাই কমাউন খা দে নে তো উনি সাব নে আমচো জোন বলি আয় খেতি বাড়ি মরান বাড়ি সব কে আমকে আমচো এ তো সময় পিলা জেলা এ তো পিড়ি কাজে খেন্ডিক বচাউন সঙ্গাউ আর গোবর কে খত কে আগর লে আগর লাগাউ লাই শিখু আর খত জৈবিক খত জোন হয়েছে নি একে বলে বনাতো ওয়াট করু
0: হ্যাঁ হ্যাঁ আর খত বনাত রে আমকে পশুপালন বাট বল যাও পড়ে দি না
1: পড়ে দি হ্যাঁ
0: এক কথা নাম কে পশু বল পোষল না কায় কি আজ খেতি বাড়ি কাজ বল হয়ে দি আর ঘরে কায় কি গোবর দুয়ারে সাপাই কাজ কাম হে দি না
1: এই দি হ্যাঁ আর দেখ না লুলা দাদা গোটক পশু জানাবর গায় হো নালে আমকে কী চেরিও বোকড়িও গোটক রলে নে লোক ঘর নে খিন্ডি কুবার লাগে সে নেই না কাঁই বলে আমচো ঘরে গোটক আসে চিনা আসন বলতো আসন মন লাগে সে নে তো উনি সাহ নে জন দাদা দিদি মন লগ্নি আয় যাল গোটক গাই গাই বল ধরুন পোষ পাস করুন আপলো ঘর কাজে গোবর বলে হয় দে আর বেড়া কাজ খত বলে হয় দে না আলে তো এ গোট বাত কে আমচো দাদা দিদি মন লগ আমরালু সাঙ্গলু নে আমচো মোটরানি আউর গোট মন বল রয়েছে আলে গোট মন কে বলে শুনু
0: আলে শুনু তো
2: बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस, इंजे 18% की सित्ता। टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे। लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से घटे मास 5% की सित्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला 12% से कम मास 5% की सितोड़।
0: ये तो रेली नगद गोट मन्ने हाँ मंत्र दक्का मी काय की किसान वाणी कार्यक्रम हितरे नोवा जुक्चु नोवा गोट के अमिरोजी धरुन बाते तरु हमने
1: हाँ
0: और उसने ची आजी वाले नोवा जुक्चु नोवा गोट के धरुन बाते अमर लुसने
1: हाँ
0: और दक ये गोट बात भीतरे बल्लो ने जो नेबे कई किस्म चो ये जो खेती बाड़ी चो सामान मन हुए ने तो ये मन के कसन द काम ने आंतर है कसन नाम के घेंद्र है सपाई गोट के आज धरू नीलू साले के सुनू था ते
1: सुनू था ने आओ तो ये नुआ जुग से नुआ गोट भीतर रेली भेट वार्ता ने अले भेट वार्ता की सुनू और खेतियार दादा दीदी मन बोल सुनो
0: था
6: रहे हमारे सभी किसान भाई बहनों को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से हम अपने फसल की उपज दुगनी कर सकते हैं और साथ ही अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे बाजार में कई कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है और इस जानकारी के अभाव में हम पारंपरिक कृषि यंत्रों का ही उपयोग करते हैं और काफी मेहनत मशक्कत के बाद भी कम उपज होती है और हमारी आय भी कम होती है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि अभी वर्तमान में कौन कौन से आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करके आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं और वो किस तरह से आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इंजीनियर हरि लाल देवांगन जी को। आप कृषि अभियांत्रिकी बस्तर संभाग में संभागीय कृषि अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। तो देवांगन जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
6: जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि भारत के कृषकों को जो पारंपरिक कृषि यंत्र थे उन्हें छोड़कर आधुनिक कृषि यंत्रों की तरफ आने की?
7: मैम, समय के हिसाब से जरूरत तो होना ही है और आप भी देख रहे होंगे क्या है, लेबर के किसान भाइयों को पता ही है जब सीजन आता है खेती का बहुत कम समय के लिए रहता है, अगर हम पूरे लेबर पे डिपेंड रहे तो हमारी खेती बहुत पिछड़ जाती है। इसलिए जो उन्नत कृषि यंत्र अपनाना समय की हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है।
6: अगर हम भारतीय कृषि की बात करें तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी उन्नत तकनीकें हैं जो अभी मौजूद हैं बाजार में और जिसका उपयोग हमारे कृषक भाई बहन कर सकते हैं?
7: जी मैडम, आपने बहुत सही कहा, अभी हमारी खेती बाड़ी चालू होने वाली है, मानसून भी आ रहा है, सबसे पहला काम तो अभी जो सूखी बोनी वाली है, जो किसान भाई अभी हाथ से छिड़क देते हैं उसमें उत्पादन बहुत कम होता है, उसके लिए नए कृषि यंत्र अभी बाजार में भी उपलब्ध है, हमारे कृषि अभियांत्रिकी बस्तर संभाग में भी है जो हम लोग किराए से देते हैं और संभाग के अधीन एक कांकेर में यूनिट यूनिट है और एक हमारा दंतेवाड़ा में है, एक कोंडागांव में है। वहां भी किसान भाइयों को किराए में जो सीड ड्रिल मशीन है जिसके माध्यम से जो कतार बुनी कर सकते हैं धान का, मतलब कम धान से ज्यादा क्षेत्र में उसका बुआई भी हो जाता है और बराबर मात्रा में खाद के साथ में बीज की बोनी भी होती है तो उसका जो पैदावार होता है वो भी अच्छा होता है ना। एक तो हो गई जो अपनी सूखी बोनी वाली जो चीजें है अभी जो किसान भाई लोग कर रहे हैं क्योंकि बारिश चालू हुई नहीं है, बारिश होने के बाद फिर किसान लग जाते हैं रोपा लगाने में और रोपा के समय में हमारे बस्तर के भी किसान भाई लोग, क्योंकि मैं यही लोकल का हूँ मुझे पता है, हम लोग उड़ीसा से भी लेबर बुलाते हैं रोपाई के लिए क्योंकि रोपाई के लिए लेबर मिलते नहीं है लोकल में, सबके घर का रोपा करना होता है। तो इसके लिए मैम एक अच्छी मशीन आई हुई है पेडी ट्रांसप्लांटर मशीन, है ना, किसान भाइयों को भी पता होगा। तो इस मशीन के माध्यम से जो रोपा लगाने में स्टार्टिंग में मेहनत थोड़ा ज्यादा इसलिए है कि इसकी नर्सरी बनाने की विधि थोड़ी सी आधुनिक है, वो भी किसान भाइयों को जिस भी कंपनी से अगर इन लोग मशीन लेते उसमें अनुदान तो हम लोग 40% विभागी मिल रहा है बीज निगम चेमसे के माध्यम से, है ना, उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि इसका नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है, है ना। और जैसे 15 दिन की नर्सरी होती है उसका बोनी बहुत आसान है, मतलब जो रोपाई होता है वो हम लोग पेडी ट्रांसप्लांटर के माध्यम से 2-3 लेबर के सहारे ही हम पूरे खेत की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो खेती बाड़ी है बहुत आसान हो जाती है और जो खर्चे हैं मैम परंपरागत तरीके से यदि रोपा लगाने जाते हैं तो लगभग 7-8 हजार रुपए एकड़ का खर्चा आता है और यही हम मशीन पे लगाना चाहेंगे तो लगभग 2-3 हजार रुपए एकड़ में हमारा काम हो जा रहा है और वो तो समय पे हो रहा है।
6: तो ये तो आपने बुवाई की बात बताई, तो इसके अलावा जैसे कभी खाद का छिड़काव कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है फिर हार्वेस्टिंग का भी समय आता है, इनके लिए कौन कौन से कृषि
7: जैसे इसके बाद हो गए जैसे निंदाई गुड़ाई भी करना पड़ता है, उसके लिए भी अगर हम लोग लाइन से बुवाई करेंगे ना तो उसके लिए भी हमको निंदा करने की जरूरत नहीं है, वीडर्स आते हैं, है ना, तो उसके माध्यम से हम वीडर्स चला के जो खरपतवार होता है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जैसे बात आई कि जब बीमारी लग गए कीड़े लग गए उसके लिए एक बहुत आधुनिक मशीन आ रही है, एक हेलीकॉप्टर ही कहना चाहिए जिसको ड्रोन कहते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन अभी बहुत फेमस हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए नमो ड्रोन दीदी नाम की योजना है अभी संचालित हो रही है। इसके माध्यम से हमारी जो स्व सहायता की समूह की जो दीदियां हैं वो भी इसमें ट्रेनिंग लेके ड्रोन चला सकते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट बहुत अच्छी लेवल की सहायता कर रही है। तो इसमें ना मैम 10 मिनट में ही पूरे एक एकड़ की दवाई छिड़काने का काम हो जाता है ना। और जैसे किसान भाई भी जो व्यक्तिगत लेना चाहे उसके लिए हमारे विभाग में लगभग 40% अनुदान है, जैसे 10 लाख की ड्रोन आती है उस पे लगभग 4 लाख रुपए की अनुदान की पात्रता है, बाकी जो 6 लाख रुपए वो बैंक लोन वगैरह से किसान ले सकता है, जिससे खेती बाड़ी में जो दवाई छिड़काने का काम आप भी देखते होंगे काफी परेशानी वाला होता है, कभी दवाई मुंह पे लग गया चेहरे में तो बीमारी का भी डर बने रहता है। तो इस टाइप का जो चीजें हैं हाईटेक मशीन के आने से हमारा जो खेती बाड़ी है बहुत आसान होने वाला है। ये जो ड्रोन है अभी बस्तर संभाग में अभी उतना ज्यादा तो नहीं हुआ है, फिर भी कांकेर में 2-3 जो लैम्स है उनके पास रखा हुआ है, वो किसान भाई लोग आजू बाजू किसानों के यहाँ करते हैं तो अच्छा सफलता है उसपे।
6: जी जैसे कि आपने कुछ तकनीकों के नाम बताया जैसे कि छिड़काव के लिए ड्रोन का और फिर रोपा लगाने के लिए भी बताया आपने, तो ये ज्यादातर अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पे छोटे किसान है जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है और इतने महंगे महंगे मशीनरीज जो है इतने महंगे महंगे कृषि यंत्र जो है वो खरीद नहीं सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा सरकार की तरफ से या
7: उनके
6: फिर
7: लिए बहुत अच्छी सुविधा है। मैं हमारे यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर्स चलते हैं, जो बड़े किसान है वो मशीन लेता है ना, जैसे हमारे यहाँ स्कीम्स है एक 15 लाख की योजना है।
6: आप किराए पे देते हैं?
7: नहीं नहीं नहीं, हमारे जो उद्यमी लेंगे जो बड़े किसान लेंगे 15 लाख पे 6 लाख रुपए की अनुदान है, है ना। वैसी एक स्कीम आती है 35 लाख की उस पे लगभग 14 लाख की अनुदान है। तो इसके माध्यम से किसान हमारे लगभग आपको बताना चाहूंगा 2011-12 से अब तक लगभग 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर पूरे संभाग में, जिनके माध्यम से आप जो बोल रहे थे छोटे किसान है वो खेती करते हैं, वो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पे मशीन ले जाते हैं फिर वो अपनी खेती किसानी करते हैं। तो इससे क्या है खेती किसानी छोटे किसानों के लिए भी बहुत आसान होते जा रहे। आजकल मैं भी कभी बैला नांगर से खेती करते नहीं देखा हूं, है ना, जो पहले होता नहीं था नांगर से करते थे वो लगभग बंद हो जा रहा है, मतलब ट्रैक्टर ज्यादा से ज्यादा 80-90% एरिया में तो पूरा कवर हो ही गया अंदर का क्षेत्र छोड़ के। तो मैम कस्टम हायरिंग का बहुत बड़ा योगदान है और जो किसान बड़े किसान गांव में भी जो ट्रैक्टर लेके रखे हैं वो भी अपने खेतों में करते ही है किराए में, जो छोटे किसान है उनके यहाँ भी करते है ना। तो कस्टम हायरिंग बहुत बड़ा रूप ले रहा है और आजकल एक नई मशीन आ रही है हार्वेस्टर के लिए जो आता है चैन माउंटेड टाइप की, इसमें तो मैम धान कटाई बहुत आसान हो गया है ना। तो किसान भाई लोग भी इसका उपयोग खास करके जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 300 के लगभग चैन टाइप का हार्वेस्टर मौजूद है, इससे किसानों का जो है धान कटाई का जो चीजें है कस्टम हायरिंग पे बहुत आसान हो गया। कोई भी किसान वहाँ हसिया से मिनिमम 10-20% लोग ही कटाई करते होंगे, पूरे के पूरे हार्वेस्टर से धान की कटाई होती है, मिंजाई होती है और सब ऑपरेशन सिंगल ऑपरेशन में कटाई मिंजाई है ना, सब हो जाता है। मतलब किसानों का समय बहुत बचता है और लागत भी कम आती है। किसान भाई बताते हैं कि जब हमको धान कटाई करना रहता है हसिया से, लेबर नहीं मिलते उस समय हमको 5-6 हजार लगता है और वही मशीन से कटाई करते हैं तो 2-3 हजार में उनका काम हो जा रहा है। एक तो समय भी बच रहा है और एक तो उनके पैसे भी बच रहे हैं, मतलब लागत में कमी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैम जैसे बड़े किसानों के पास मशीन जा रही है तो छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, छोटे किसान जो है ना किराए से लेके उसका लाभ ले रहे हैं ना। तो इस टाइप का हम कवर कर रहे हैं। और बस्तर संभाग में मैकेनाइजेशन जो है 10 सालों में काफी अच्छा बढ़ा है। यहाँ के जो किसान है मतलब इवन तक खेती किसानी में जो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर्स का ही यूज करने लग गए हैं और जो पेडी ट्रांसप्लांटर है ये सबका अब समय है ना। पेडी ट्रांसप्लांटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, फिर अपनी हार्वेस्टर का तो आ रहा है समय, किसान भाई लोग ले जा रहे हैं। जो हमारी 35 लाख की सब्सिडी है उसमें भी किसान भाई एक ट्रैक्टर एक हार्वेस्टर करके ले जाता है तो उसको 14 लाख रुपए की छूट मिल रही है
8: जी। तो बड़े किसान जो है वो ये सारे आधुनिक जो कृषि तकनीकें हैं जो इक्विपमेंट्स हैं उसे खरीद सकते हैं और जो छोटे किसान हैं वो उनसे किराए पर ले सकते हैं।
7: किराए पर लेते हैं। और मैम जैसे छोटे किसान भी जिनके पास 2-2.5 एकड़ की जमीन है वो भी क्या है लोन मिलना बहुत आसान हो गया है ना। तो जैसे हमने पहले स्कीम चलती थी 10 लाख पे 4 लाख अनुदान, तो 4 लाख हमारी सब्सिडी, फिर किसान भाई 2 लाख दे दिया और 4 लाख की लोन हो जाती है। तो इस टाइप के छोटे किसानों के पास भी बहुत सारे ट्रैक्टर्स आ गए हैं
8: जी जी।
7: जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनके पास भी आज के डेट में बहुत मतलब एक एक गांव में आप देखेंगे 40-50 ट्रैक्टर्स है छोटे छोटे गांव, मतलब मैकेनाइजेशन अच्छा बढ़ रहा है। अब समय वही है कि जो आधुनिक कृषि यंत्र है उसकी ओर आना पड़ेगा, खास करके जो रोपाई की मशीनें हैं, धान कटाई की जो हार्वेस्टिंग की बात है उसके लिए, और फिर उस हार्वेस्टिंग होने के बाद जो प्रोसेसिंग की मशीनरी है मैम उस पर अपने को अब ध्यान देना होगा
8: जी ना। और अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कृषि में आ रहा है तो इसकी क्या भूमिका है आप बताएं?
7: नहीं, इसकी तो बहुत बड़ी भूमिका इसलिए होगी कि मैम जो AI होगा वो पूरी तरह से खेत को कंट्रोल करेगा। एक एक तरह से देखा जाए तो वो 24 घंटे खेत पे निगरानी करेगा है ना, कि कब इस पे पानी डालना है, कब इस पे दवाई स्प्रे होना है, कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। टोटल कंप्लीट मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही हो जाएगा, AIC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पूरा काम करने लग जाएगा। जैसे रोबोटिंग खेती बोलते हैं, कभी आप वीडियो देखे होंगे तो है ना, रोबोट टमाटर तोड़ रहा है, इस टाइप की चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगी है ना। अभी उसके लिए नई स्कीम्स लॉन्च नहीं हुई लेकिन आने वाले समय में जरूर इस पे भी काम होगा।
8: कितना समय लग सकता है वैसे?
7: मैम मुझे लग रहा है जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाह रही है, ज्यादा तो कुछ नहीं, 2-4 सालों में हमारे पास जरूर आ जाएगी ये सब टेक्नोलॉजी
8: जी। तो आप एक बात बताइए, ये जो आधुनिक कृषि यंत्र है क्या उनसे मिट्टी की उपज या फिर फसल की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है?
7: जी मैम, मिट्टी की उपज तो बढ़ाना अलग चीज है, बाकी फसल की पैदावार इसलिए बढ़ जाती है अगर हम लोग किसी भी चीज को सिस्टमेटिक करें। तो पौधे को ग्रोथ के लिए हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए है ना, पानी चाहिए, वो सब बराबर मात्रा में मिलेगा है ना। जैसे क्या होता है ट्रेडिशनली में आप देखेंगे कहीं पे जमीन ज्यादा ऊंचा है कहीं नीचा है तो एक साइड पानी भर रहा है तो दूसरे साइड ऐसे होता है कि उधर पानी ही नहीं रहता, इसलिए आधा धान पक जाता है आधा तो उसमें पक भी नहीं पाता। तो जो नए मशीन यूज होने से एक तो खेत की लेवलिंग अच्छे से हो जाती है ना, और एक एक जैसे सब जगह फसल लगते हैं तो उसकी पैदावार स्वभाव से 10-15% लगभग मैकेनाइजेशन से कृषि की उपज में बढ़ोतरी होती है, ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव किया गया है मैम
8: जी जी। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सभी किसान जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें कई आधुनिक कृषि तकनीकें भी दिखाया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स जिसे कहते हैं, या फिर कंट्रोल्ड कृषि या फिर कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर मतलब नियंत्रित कृषि का भी आजकल चलन ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें छोटे क्षेत्र में भी आप कृषि कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें।
7: मैम जैसे पाली हाउस है, ग्रीन हाउस है, इसके माध्यम से क्या है हम लोग जो टेम्परेचर है और बाकी क्लाइमेट्स के जो है ना फैक्टर उसको कंट्रोल करते हुए हम कम एरिया में, और जैसे सब्जी बोलते हैं बरसात में सड़ जाता है, यदि वही हम पाली हाउस ग्रीन हाउस में खेती करने लग जाए तो हम 12-मासी सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे गुलाब की खेती है, इस सब अभी हो ही रहा है बस्तर पे है ना, गुलाब की खेती के लिए तो बहुत सारे आपके कोंडागांव एरिया में भी है, कांकेर में भी है, इवन तक जगदलपुर में भी होगा, तो उन लोग सब इसी टाइप की खेती करते हैं और अच्छी खासी आमदनी कम एरिया में बहुत ज्यादा ले रहे हैं।
8: तो कंट्रोल्ड फार्मिंग करने के लिए कितना लागत लग जाता है, या फिर हाइड्रोपोनिक्स अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए कितना लागत लग जाता है?
7: मैम, हाइड्रोपोनिक्स में टेक्निक्स जो है टोटली इसमें थोड़ा सा लागत तो रहता है, इसलिए कि नया टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह है कि इसमें आपका जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होगा उस पर कम एरिया में अपन कंट्रोल कर पाएंगे, तो जो इसके मार्केट वैल्यू है वो अच्छे मिलने की वजह से जो लागत है ना वो किसान 2-3 साल में तो वसूल कर ही लेगा, है ना। उतना एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हमारे लिए भी नया, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह हम लोग ज्यादा डील नहीं करते हैं।
8: बाकी ग्रीन हाउस,
7: हाँ हाँ, ग्रीन हाउस वगैरह जो है ये अपने एग्रीकल्चर में अभी अच्छा खासा चल भी रहा है,
8: इधर भी बस्तर क्षेत्र में भी चल रहा है।
7: बस्तर क्षेत्र में करते हैं मैम, जो आपकी इधर गुलाब की खेती होती है जो काफी फेमस है, है ना
8: जी। तो अगर हमारे कृषक किसी और फसल को भी ग्रीन हाउस के माध्यम से उत्पादन करना चाहे तो वो कर सकते हैं?
7: हाँ, कर सकते हैं, जो महंगी फसल है जी, ना, जिसमें उनकी जो मार्केट वैल्यू ज्यादा है, जैसे टमाटर ही है, आप सीजन में देखिएगा उसका 30-40 रुपए रेट जाता है, उन लोग कर सकते हैं, है ना
8: जी। जी, तो आपने तो बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और हमने कोशिश भी किया कि आपसे जितनी जानकारी हम ले सके उतनी जानकारियां लें, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई हो, कुछ बात आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें तो बताएं।
7: तो ये था मैम, और हमारे जो गवर्नमेंट जो कृषि अभियांत्रिकी के जो ऑफिस है, 3-4 ऑफिस है, उससे भी किराए में जो नए कृषि यंत्र है उपलब्ध है, मतलब हम ट्रैक्टर सहित किसानों को देते हैं, है ना। जैसे 485 रुपए पर आवर्स का चार्ज लिया जाता है, उस पर किसानों को जुताई से लेके जैसे सीड ड्रिल से आपने कहा कि बोने के लिए जो मशीनें वो मिलती है, है ना। तो इस टाइप की सुविधा भी जो छोटे किसानों के लिए स्पेशली है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होते हैं, वो हमारे यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर, जो गवर्नमेंट कस्टम हायरिंग सेंटर है, उसके यहाँ से आके उन लोग इसका लाभ ले सकते हैं और लेते भी है,
8: किराए पे ले सकते हैं।
7: अभी भी मैं 3-4 ऑफिस का देख रहा था, कहीं भी एक गाड़ी खाली नहीं है, सब किसानों के यहाँ एडवांस में बुकिंग है 10-10, 15-15 दिन के लिए
8: जी।
7: तो ये है, और हमारे यहाँ एक योजना है जो चलती है बीज निगम से, जिसमें ट्रैक्टर और बाकी जितने भी इम्प्लीमेंट, नए से नए जो आधुनिक इम्प्लीमेंट है, उस पर पूरे सब्सिडी है 40-50% तक, तो डायरेक्ट इन लोग इसमें भी अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते
8: हैं।
7: जैसे पेडी ट्रांसप्लांटर है, ये बहुत जरूरी चीज है, बस्तर संभाग में यदि पिछड़ा हुआ है तो हम आधुनिक रोपाई में बहुत पिछड़े हैं, इस पे हमको ध्यान देने के लिए नए नए जो मशीनें आ रही है मैम, इस पे अपने को फोकस करना पड़ेगा। किसान भाई से भी मेरा यही निवेदन है कि आप जो आपके नजदीक के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनसे आप लोग जानकारी लीजिएगा और रोपाई मशीन की टेक्निक जरूर सीखिएगा, इससे आप लोग का काफी समय का भी बचत होगा और पैसे का भी बचत होगा, और उत्पादन में 10-15% तो बढ़ोतरी होना ही है मैम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है
8: जी,
7: है ना।
8: तो आप कोई टोल फ्री नंबर वगैरह हो जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई आपसे बात कर सके या फिर आपके विभाग से कृषि के बारे में कुछ भी जानकारी ले सके, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी ले सके?
7: मैम, हमारे हर लगभग 1-2 गांव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रहते हैं
8: जी,
7: तो वो लगभग किसानों से पूरा ही संपर्क रखता है, उनको कोई भी किसी टाइप के डाउट होती है वो डायरेक्ट उनके जो मैसेज होते आ रही है उसके हमारे पास आ जाते हैं। मतलब हमारे 2-3 गांव के पीछे एक हमारा आदमी है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग दोनों अभी एक साथ ही है ना, और जो फील्ड है कि हमारे इंजीनियरिंग में ज्यादा फील्ड स्टाफ नहीं है, लेकिन जो आरईओ लोग होते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उन तक किसानों की कोई भी बात आती है, जैसे उनको सीड ड्रिल चाहिए, पेडी ट्रांसप्लांटर चाहिए, वो हमारे तक आ जाती है, फिर उस पे हम किसानों को गाइड भी करते हैं कि कहां से आपको सब्सिडी मिलेगी, क्या मिलेगी, वो सब इजी वे में हो रहा है मैम, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टोल फ्री नंबर तो अभी तक कृषि अभियांत्रिकी का जारी नहीं हुआ है।
8: चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से हमारे किसान भाई बहनों को लाभ जरूर पहुंचेगा। आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
7: धन्यवाद ठाकुर मैम।
1: तो वाले लूला दादा ने अल कितरो नंगत गोट की सुन लू ने अरे था कितरो हम चो खेती बाड़ी कमानी चो नंगत नंगत गोट बात मन के सांगला।
7: हाँ।
1: कम ले कम खर्चा ने अरु आदमी के खूबे समय बचा तो ले कमानी कर तो गोट बात मन की सुन लू ने और खेतियार दादा दीदी मन बोल सुन ला।
7: हाँ देख
0: ये मन जो हिसाब ने जो बोले खेती बाड़ी कर तो और जो मशीन मनात उनके पूछ पचारा करो तर किसान भाई मन का है कि घेनो ताव काम ने आनोत ने
1: आनोत हाँ।
0: तो ये तो होली ने मन तर आउर बोला हम चलग नगद गोट मना साले मन के बोले सुनो ता
1: सुनो
9: क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
10: पुतला बोल रहे
9: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
10: मतलब
9: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी
11: अरे पहली वाली बात कहाँ,
12: परम तो सभी डाले हैं।
11: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
12: सच है
11: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
12: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
13: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
14: मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।
15: अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है।
14: मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की वानगी पेश कर रही हैं।
16: मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1,00,000 केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं।
14: यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं।
15: सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया, इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था।
17: मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ।
14: ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए।
0: कुलदर द कितलो ये नगद गोट मन के तो हमें सुना दिलु ने अब गोट ने भूर लावर लिखा है कि हम से पीला मन बोल रही सबूत ने तो हमने ने कई बोले गीत के सुना होता फिर गाओ बिताज ना हो के सांगवा
1: सांगवा

0: हाँ द कुल्लर,
1: हाँ
0: द कितलो नगद गीत रहने,
1: हाँ
0: और ये गीत के गावर हो दिलीप कुमार पांडे और उनमें संगवारी मन।
1: हाँ तो दख ना लूला दादा वो आम चो दादा दीदी मन के ज्ञान ध्यान चो गोट बात की सांगलू हो मान तर सुनन बारी भुलक तोर नुआ आम के सुनन बारी खेती बाड़ी हो नाल कहीं चबल काम बुताओ सुन लो बीती के आम के मन लगाऊ कर तो रहा है तेबे कर लेने जानू खोई दे कितरो आमदनी होई से नी होई से ने हुनके आम के तेबे सिकुकलाई हुआ है कसन हाँ
0: और देख जन जन किसान भाई मनाते भी तो खेती बाड़ी कर सोची ने मानतर समय आई साहब ने कहा है कि
1: हाँ
0: उनके आधुनिक कृषि बल ध्यान देता रहे बोलो ने, ये भी जो जमाना जोन बोला है कल मशीन
1: हाँ
0: आए और जोन बोल खत भी चाहे तो उनके बल लेख करता रहे। और हम चक जोन गांव पारा ने जोन आगे चो बीच मन बला से जे चल रोग राई मन नहीं धरे से उन मन के बला हम के मुरझातो नो आए।
1: हाँ
0: ये तो होली ने
1: हाँ
0: मानते रहे हम जातो पेरा
1: होई
0: होली
1: से
0: तो
1: अली
0: जातो
1: मोटरा
0: पूरे।
1: गोबरा के हाँ सकल मैं विदा मांगे से जातो पूरे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सपाई खेतियार दादा दीदी मन के मैं कुलदर
0: और मैं लूला
1: हामी दोनों करूं से
0: जुहार।
1: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अभी रात के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, जिसमें आप सुनेंगे संगीत शिक्षा का महत्व। वार्ताकार हैं वीणा श्रीवास्तव।
1: हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है संगीत। आप सीखते तो हैं, तो समझिए कि आपके जीवन में शिव आ जाते हैं। जब सीखना शुरू करेंगे तो उन्हें बहुत लय के साथ ध्यान से सीखना चाहिए। केवल कॉपी बनाकर रखने से ही शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें प्रैक्टिकल करना जरूरी रहता है। तो संगीत की शिक्षा सुमधुर और सरल होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सीख सके। संगीत एक प्रैक्टिकल शब्द है, लेकिन इन्हें हमें थ्योरी के रूप में भी सीखना चाहिए। संगीत में सप्तक का अर्थ है सा। जब मूल स्वर का सार्थक शब्द एक साथ कहे जाए तो उसे हम सप्तक कहते हैं। शास्त्रीय संगीत में कुछ राग लोक गीतों के आधार पर बने हुए हैं, जैसे वृंदावनी, सारंग, मांड, आसा, पहाड़ी आदि। लोकगीत हजारों वर्षों से चली आई परंपराओं के आधार पर बने हैं। शिक्षा के आधार पर हमारे भारतवर्ष में 2 प्रकार का संगीत प्रचार में है, जिन्हें संगीत पद्धति कहते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति, दक्षिणी संगीत पद्धति। यह पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा बम्बई प्रांतों में प्रचलित है। हमारे शिक्षा पद्धति में यह सिखाया जाता है कि यहाँ गायन की संगत तबले से की जाती है और वहाँ गायन की संगत मृदंग, मृदंगम और घटम से भी की जाती है। कथक नृत्य यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। संगीत में स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे स, रे, ग, म, प, ये आरोह हुए, और प, म, ग, रे, स, ये अवरोह हुआ। इस तरह पकड़ बताया जाता है। संगीत में ऐसी शिक्षा देने से हमें राग में लगने वाले स्वरों की पहचान होती है। अब हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आलाप तान क्या है। आलाप तान ये सीखना बहुत जरूरी है। संगीत सिखाने वाले ये आलाप तान के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है उन्हें, कि राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को हम आलाप कहते हैं। आलाप का प्रयोग गीत के पहले और उसके बीच में होता है। गीत के पहले लय, ताल आदि को देखा जाता है। संगीत की शिक्षा कोई साधारण शिक्षा नहीं है। लोकगीत ग्रामीणों का गीत है। लोकगीतों में हम सैकड़ों वर्षों से चले आए रीति रिवाजों की झांकी मिलती है हमें। इसके अंतर्गत शादी के गीत, विभिन्न संस्कारों में गाए जाने वाले गीत, कजरी गीत, आल्हा गीत, बिरहा, लोरी, माहिया, मांझी इत्यादि गीत आते हैं। इनका स्वरूप सरल होता है तथा स्वरों के अंदर सीमित लय तथा प्रधान होते हैं। इन गीतों को सुनते ही साधारण व्यक्ति ताली देने लगता है, इसलिए लोक गीतों के साथ ढोलक बजाई जाती है। भजन गीत आदि में शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। जिन गीतों में ईश्वर का गुण गान या उनसे प्रार्थना की जाती है उन्हें हम भजन, और जिन्हें ताल या लय गीतों के साथ गाया जाता है स्वर के साथ उन्हें हम गीत कहते हैं। अधिकतर ये दादरा और कहरवा ताल में होते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति भी कंपन से हुई है। ग्वालियर घराने के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर प्लुस्कर थे। उनकी आंखें खराब हो गई थी। आंख के बिना कोई उचित धंधा ना मिलने के कारण उनके पिता ने उन्हें संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिए। उन्होंने सभी सुखों को छोड़कर संगीत को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए देशाटन निकल पड़े। उनका वहां बहुत भव्य स्वागत हुआ। संगीत का प्रचार और प्रसार करने के लिए दिगंबर जी ने यह अनुभव किया कि सबसे पहले गीतों से श्रृंगार रस के भद्दे स्वरों को निकाल करके भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा जाए। प्रथम संगीत विद्यालय उन्होंने गांधर्व महाविद्यालय के नाम से स्थापना की। वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत का जो प्रचार है, इसका मुख्य श्रेय श्रद्धेय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को ही है, क्योंकि संगीत की कला में अमीर खुसरो का नाम भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कुछ नए रागों और तालों की रचना की। उनके रागों में पूरियां, साचगिरी, पूर्वी, जीला, शाहाना और तालों में झुमरा, त्रिताल, आड़ा, चारताल, सुरफाक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो को संगीत की शिक्षा में कई रागों का ज्ञान था। विष्णु नारायण भातखंडे को भी संगीत से अथाह प्रेम था। स्कूली शिक्षा के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी वे ग्रहण करते थे। उन्होंने सितार वादन, गायन और बांसुरी शिक्षा प्राप्त की और तीनों का अच्छा अभ्यास किया। संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर संगीतज्ञों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय पंडित जी को ही है। उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और संगीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज की। भारत का कौन सा व्यक्ति होगा जिन्होंने तानसेन का नाम नहीं सुना? तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था। इस प्रकार तानसेन 10 वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। संगीत की शिक्षा प्राप्त करना कोई सरल नहीं है, लेकिन इनमें एकाग्रता और शांतिपूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तानसेन में अनेक रागों की रचना की। उनमें से है राग खमाज, राग बिहाग, राग कल्याण, राग अहल्या, राग आसावरी, राग देश, राग बागेश्वरी, राग काफी, राग भूपाली, राग दुर्गा, राग भीमपलाशी, राग वृंदावनी, राग सारंग और राग मुल्तानी। आज भौतिकवाद का युग है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं एकत्रित करना चाहता है और अपना अधिक समय धनोपार्जन में लगाता है, और वह प्रयत्न करता है कि प्रत्येक कार्य सरल से सरल ढंग से कम समय और खर्च में हो जाए। मनुष्य की इस प्रवृत्ति का प्रभाव संगीत पर पड़ा। संगीत की शिक्षा प्राप्त करके गायक भी थोड़े समय में कुशलता प्राप्त करना चाहता है, और दूसरी ओर श्रोता भी कम से कम समय में मनोरंजन चाहता है। ना तो गायक में इतना धैर्य रहा कि वर्षों तक कठिन साधना करे, और ना श्रोता में कि वे घंटों तक गाना बजाना सीख सके। लेकिन शास्त्रीय संगीत को समझने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ शिक्षा उसी प्रकार की है जैसे कालिदास के मेघदूत को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। केवल कुछ ही लोग संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए शास्त्रीय संगीत के श्रोता भी सीमित होते हैं। संगीत में किसी भी कविता को प्रत्येक गायक अपनी इच्छानुसार स्वर रचना में गा सकता है। शास्त्रीय संगीत में गीत की स्वर रचना पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। संगीत में छोटा से छोटा स्वर समुदाय केवल एक राग का जो बोध होता है वह राग की पकड़ कहलाता है। पकड़ शब्द का अर्थ यह है कि जिसमें किसी राग को पकड़ा जा सके या पहचाना जा सके। संगीत की शिक्षा प्राप्त करते समय यह ध्यान देना है कि गाते बजाते समय पकड़ का प्रयोग बार बार किया जाए, और प्रत्येक राग की पकड़ एक दूसरे से भिन्न होता है। संगीत में गाना बजाना तथा नृत्य तीनों आता है। तीनों में गायन को प्रमुख माना गया है। गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य माना गया है। बोलचाल की भाषा में गायन को संगीत कहा जाता है। यहाँ भी संगीत का अर्थ गायन से लिया जा रहा है। गायन में आलाप करने के बाद गीत शुरू करना ही पड़ता है। लोकगीत, भजन आदि गीत शब्द प्रधान होते हैं। लोकगीतों में जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को काव्य और स्वरबद्ध किया गया है। संगीत में काव्य का यह महत्व है कि संगीत में गाना बजाना तथा नृत्य तीनों आता है। इन तीनों में गायन को प्रमुख माना गया है। गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य माना गया है। गायन में स्वर और साहित्य का सुंदर वर्णन और संयोग है, इसलिए लोक गायन का अधिक आनंद ले पाते हैं। शिक्षा में इसका अधिक प्रचार है। गायन अथवा कंठ संगीत के मुख्य दो प्रकार हैं, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत में स्वर प्रधान माना गया है, फिर भी बिना कविता के काम नहीं चल सकता। गायन में आलाप करने के बाद गीत शुरू करना है पड़ता है। जब गीत के शब्द अच्छे और भावनाकूल रहते हैं तभी गीत अच्छे माने जाते हैं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
1: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सिप्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं कीर्ति निषाद और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कीर्ति निषाद और साथियों की आवाज़ में हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अभी रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पीलामन काजे गोट, जिसमें आप सुनेंगे राजा राम मोहन राय के विषय में। प्रस्तुति है तनुश्री मोहंती की।

पीला मन काजे गोट, ये कार्यक्रम सुनते जमाए नानी नानी और बड़े पीला मन के मोचो बाटले मया और लाड। पीला मन ये कार्यक्रम ने रोजे दिना नंगत नंगत गोट बात, नंगत ज्ञान चोगोट और बड़े बड़े महापुरुष समाज सुधारक चोगोट के आमी तून मन के संगतो काजे था एवंसी। असने आज ही में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय चो बारे ने तून मन के सांगे दे। आमचो भारत देश चो बाढ़ती काजे और नुआ बाढ़ दखातो काजे आमचो देश चो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने खूबे मेहनत करला। राजा राम मोहन राय के ए भी चो भारत देश चो निर्माता वाले बलसोत निर्माता बल्लों ने बना तो बीता। ये मन के निर्माता ये काजे बलसोत कि मोहन राय आमचो देश ने उदलदाय चो समाज चो जोन बले कुर प्रथा रली बल्लो ने असन प्रथा जोन समाज के बाढ़ती चो बाट नी ने बल्लो ने बाढ़ती चो बाट की थेवाए से इसी संगे संगे आमचो समाज ने कय कसने कु प्रथा रली जसन बड़े जात नानी जात ये चो भेद बले रहे उनके बले ये गुचातो काजे खूबे मेहनत करला। मनुख जाति चो बाढ़ती चो काम करतो कारण ने भारत हुन मंचो हमेशा कर्जदार रहे दे। राजा राम मोहन राय चो जन्म बंगाल चो राधा नगर ने 22 मई 1772 ने होन रहे। 16 बरख चो उम्र ने राजा राम मोहन राय समाज ने चलतो अंधविश्वास जे कि आमी बोलू से कि जसन बीमारी होली तो आमी बोलू से कोनी पांगुन दिला तो असन गोट जे कि आमी अंधविश्वास बोलू से ये चो बारो ने गोटो निबंध लिखुन रला। राजा राम मोहन राय बाल विवाह बल्लो ने कम उम्र ने होतो बीती ब्याह चो बले खूब विरोध करला। राजा राम मोहन राय सोजे भारत के जन्म देतो बीता नहीं रला बल्कि हुन मन नुआ भारत के बले बनाला और 100 बरख ले 16 भारत चो लोग मन के चेताला। राजा राम मोहन राय जोन रला ये ग्रीस फ्रीब्रू अंग्रेजी बंगाल संस्कृत फारसी और गुरुमुखी चो यमन के खूबे ज्ञान रली और 1802 ने हुनमन कलेक्टर चो पद ने बले काम करला। राजा राम मोहन राय 1812 ने गोटोक असन संकल्प धरला जे चो बारे ने सोचलो ने आमचो कार्जा दुखुन जाए दे हुन रहे सती प्रथा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा की गुचातो काजे संकल्प करला और क्रिया खादला और यही कारण ने हुनमन चो कोशिश के विलियम बेट्रिक्स बलून गोटोक अंग्रेज साहब रला 1829 ने सती प्रथा के थेबाउन दिला। ये आमचो भारत देशो समाज का जे खूबे बड़े काम होली नहले उदलदाय चो जोन समाज रहे नहीं पिलामन हुता ये सती प्रथा बल्लो ने खूबे समाज ने ये फैलून रहे और तुमन मन सोचे सास पिलामन कि सती प्रथा बल्लो ने काय बीती आए तो मैं तुमन मन के सांगुक चाहे से कि सती प्रथा ने उदलदाय चो समाज ने कोनी बले ब्याह होलो माने मरुन जाते रहे तो हुंचो मरलो पासे हुंचो जोन बायले रहे नी जीवता बायले हुनके मोड़ा संगे सोजे जीवता जीवता डसान देते रहला। तो इत्रो अर्नाप गोट उदलदाय चो समाज ने होते रहे जेके गुचातो काजे राजा राम मोहन राय खूबे मेहनत करला और हुंचो समाज चो ये कुप्रथा के गुचाला विलियम बेट्रिक संगे मिशन भाती असने कुप्रथा चो के गुचातो काजे राजा राम मोहन राय असने हिंदू धर्म चो एक ले आगर बिया करतोर बल्लो ने गोटोक बाले रोरोन और बिया होतोर और बाल विवाह जसन मैं पनाए तुमन मन के सांगले कि नानी उम्र ने बिहा करतोर और ढोंगा जोन बले रीति नीति रहे ए चो खूबे विरोध करला। हुनमन चाहते रहला कि बेटी मन के बले आप लो बाबा चो धन संपत्ति ने बराबर चो बाटा मिरो। राजा राम मोहन राय शिक्षा चो बाढ़ती काजे बले खूबे काम करला। हुनमन कलकत्ता ने हिंदू कॉलेज चो स्थापना 20 जनवरी 1817 ने करुन रला। हुनी हिंदू कॉलेज के एबे चो समय ने कलकत्ता ने प्रेसिडेंसी कॉलेज चो नाव ले लोग मन जाने सोत। राजा राम मोहन राय आप लो संगवारी केशव चंद्र संगी मिशुन 1828 ने ब्रह्म समाज चो स्थापना करला और असने समाज चो बाढ़ती काजे राजा राम मोहन राय कई काम करला। तो पीला मन
आमके असने महापुरुष समाज सुधारक और समाज चो बाढ़ती काजे जोन बले लोग पूरे उन काम करला से हुनमंचो जीवनाले ज्ञान धरतो राय हुनमंचो सांगलो बाटने आमके जातो राय हुनमंचो सांगलो गोट के आपलो जीवनाने उतरातो राय तेबे आमी आपलो जीवना के आगे बढ़ाऊ सकूं दे और सद्धर्म ने चलुक सकूं दे। हाँ तो पीलामन इत्रो नंगत गोट के तो तुमन मन सुने साहसी संगे संगे मैं तुमन मन काजे गोटो गीत के धरुनीले से तो सुनू ये गीत के।

हाँ तो पीलामन, आज ही मैं तुमन मन के सांगले राजा राम मोहन राय समाज सुधारक चो बारे ने, हुन मन चो सांगलो बाट ने चलुन भाती आपलो जीवन चो बाढ़ती करा, असने रोजे दिना कोनी ना कोनी समाज सुधारक महापुरुष और ज्ञान ध्यान चो गोट के धरुन तुम चो लगे आमी एते रहूं दे, तो मोके दियास बिदा, जुहार।

0: पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पिलामन काजे गोट, जिसमें आपने सुना राजा राम मोहन राय के विषय में। प्रस्तुति थी तनुश्री मोहंती की। अभी रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में हम अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
5: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
6: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
4: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
7: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से चार दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
6: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
6: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति

0: नियुक्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Thunderstorm conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh tomorrow. The weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Andaman Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Karnataka, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Saturday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE, appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 International at Taunton tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या और न्यूज 8-9, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत लिया है हमने फिल्म नजराना से, और इस गीत में आवाज दी है मुकेश ने। गीत रचना राजेंद्र कृष्णन का और सुरु से सजाया है रवि ने।

0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जाए।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लिया है हमने फिल्म नई रोशनी से। इस गीत में आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, गीत रचना राजेंद्र कृष्णन का, और संगीत दिया है रवि ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लिया है हमने फिल्म पाकीज़ा से। इस गीत में अपनी मधुर आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है कमल अमरोही ने और संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्में से। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मोचो मंचो गीत, जिसमें आप सुनेंगे लोकगीतों छत्तीसगढ़ी हल्बी गोंडी और भत्री और धुरबी भाषा में लोकगीत। कार्यक्रम का पहला लोकगीत लिया है हमने भत्री बोली में। कलाकार हैं सरादी और साथी।

0: कान के लू जैसे रे जैसे रे दीदी ए दीदी बान के लू जैसे रे दीदी
1: काचो सोंग
0: जो जुआ

बाटो।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लोकगीत लिया है हमने छत्तीसगढ़ी बोली में। कलाकार हैं धर्मूराम मरकाम और साथी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला लोक गीत लिया है हमने धुरवी बोली में। कलाकार हैं गोविंद राम और साथी।

कार्यक्रम का अगला लोकगीत लिया है हमने गोंडी बोली में। कलाकार हैं लच्छू राम और साथी।

बतिया गोट मुदी दिया चीना जानू से रोये बारी रोये मानी ना लाल बिला उजा उजा रोती लोड़ी गुड़ा चावू रंदा बती से

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोचो मंचो गीत, जो कि लोक गीतों का कार्यक्रम था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अभी रात के 10 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पाड़। लोकवाद्य धुनों पर आधारित यह कार्यक्रम। वादक कलाकार हैं सुक्रू राम बघेल और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक वाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार थे सुक्रू बघेला और साथी। अभी रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही समय में हम हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम